मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलो हर्ट्ज़ और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठवीं तिथि। तदनुसार 27 जून सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 5:57 होने वाले हैं। अब आरंभ हो रही है हमारी आज की पहली सभा।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा।

0: फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज किसान भाइयों को भिंडी की खेती के विषय में जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम भिंडी की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो इस समय बुआई कर सकते हैं। VRO 6 VRO 5 IIVR 10 परवनी क्रांति, ये सब इसकी उन्नतशील प्रजातियां हैं। इनमें से जो भी प्रजाति मिल जाए लेकर बुआई करें। भिंडी की खेती के लिए वह सभी प्रकार की मिट्टी उपयोग रहती हैं जो कि कार्बनिक खादों से भरपूर हों। चूंकि यह बरसात की फसल है अतः पानी के निकास की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। मिट्टी को 2-3 बार जोतकर खूब भुरभुरा बना लेते हैं। बुआई के 15-20 दिन पहले प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 300 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिला देना चाहिए। इसके अलावा भिंडी में 1 हेक्टेयर खेत में 100 किलोग्राम नत्रजन यानी लगभग 220 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम फास्फोरस यानी लगभग 300 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 50 किलोग्राम पोटास यानी 75 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास की आवश्यकता होती है। यूरिया की आधी मात्रा, सिंगल सुपर फास्फेट एवं म्यूरेट ऑफ पोटास की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय कुंड में मिला देते हैं। नत्रजन की शेष आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर खड़ी फसल में प्रयोग करते हैं। जब खेत तैयार हो जाए तो फिर बुआई करनी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत में बोने के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बोने से पहले बीज को थीरम नामक दवा से शोधित कर लेना चाहिए। 2.5 ग्राम दवा 1 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त होती है। इसके बाद फिर बुआई करते हैं। बुआई 60 सेंटीमीटर की लाइन से लाइन की दूरी पर करनी चाहिए तथा एक बीज से दूसरे बीज की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर रखते हैं। आइए अब कुछ चर्चा सिंचाई एवं निकाई गुड़ाई के बारे में करें। यह तो हम सब जानते ही हैं कि यह बरसात वाली फसल है। अगर समय समय पर बारिश हो रही है और खेत में नमी है तो सिंचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, यदि बारिश नहीं होती है और खेत की नमी सूख जाए तो सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। यदि भरपूर बारिश हो रही है और खेत में ज़्यादा पानी लग जाता है तो इस पानी को बाहर निकालना चाहिए ताकि पौधों में जड़ों के पास हवा का संचार हो सके और पौधे पूरी वृद्धि कर सकें। बरसात की फसल है और उसमें खरपतवार ना उगें, भला यह कहाँ हो सकता है। खरपतवारों को नियंत्रित करना बहुत ही ज़रूरी है। भिंडी के बीज 4-5 दिन में जम जाते हैं। खरीफ की वर्षा होने से पूर्व यदि 1 निकाई गुड़ाई कर दी जाती है तो इससे खरपतवारों का प्रकोप काफ़ी कम होता है। समय समय पर निकाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। बुआई के 25 दिन बाद फूल आने शुरू हो जाते हैं और बोने के लगभग 40 से 45 दिन बाद भिंडी में फल आना प्रारंभ हो जाता है। 1 एकड़ में ठीक से देखभाल करने पर लगभग 35 से 40 कुंटल तक भिंडी की पैदावार मिल सकती है। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर भिंडी की खेती करनी चाहिए।
1: भिंडी की खेती, इस विषय पर अभी किसान भाइयों को जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। खेती की बातें कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रयोजन के लिए अधिक से अधिक मात्रा में पौधरोपण करें और साथ ही अन्य लोगों को भी इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करें। हमारा पर्यावरण स्वस्थ होगा तो हम भी स्वस्थ होंगे। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

कहते हैं भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिसमें हम ईश्वर को अपनी हर सांस और हर कर्म में महसूस करते हैं। जब हम ईश्वर के प्रति प्रेम रखते हैं तो जीवन में एक अटूट शांति आती है और हर कठिनाई में हमें उच्चतम अर्थ दिखाई देता है। कह सकते हैं कि भक्ति हमें ईश्वर के सच्चे स्वरूप का अनुभव कराती है और हमें अपने जीवन के गहरे उद्देश्य को समझाती है।

जब हम ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम रखते हैं, सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तो हमारा अंतर्मन ईश्वर से गहराई से जुड़ जाता है। ये प्रेम हमें सच्चे समर्पण की ओर ले जाता है और हर कार्य में दिव्य मार्गदर्शन भी देता है। कहते हैं ईश्वर प्रेम इस संसार से परे एक शाश्वत प्रेम की ओर खींचता है।

उस परम सत्ता का, परम शक्ति का ध्यान और नाम जप हमें इस बात का एहसास कराता है कि हम एक दिव्य सत्य का हिस्सा हैं, और भक्ति हमें उस अनंत प्रेम से जुड़ने की राह दिखाती है।

0: आराधना के अंतर्गत आज आपने हरिओम शरण, चित्रा सिंह, मनहर उदास और कैलाश श्रीवास्तव की गाई भक्ति रचनाएं सुनी। हमारी आज की आराधना अब संपन्न होती है। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है विचार बिंदु। आज का विषय है मानवता की सेवा।
1: विश्वविख्यात काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने जीवन पर्यंत जिन भावनाओं व आदर्शों का पालन किया तथा सर्वजनों को जिसकी शिक्षा और व्याख्या जीवन पर्यंत करते रहे वह था सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुःख भाग् भवेत्। उसी प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन जो प्रतिदिन प्रार्थना सभा में गाया जाता था वो था वैष्णव जंतु तेणे कहिए जे पीर पराई जाने रे। इन दो महापुरुषों के अमूल्य दार्शनिक व पूर्तः व्यवहारिक विचारों में जनमानस अथवा मानवता की सेवा और उनकी पीड़ा दुख दूर करने की लालसा सर्वथा निहित है। विश्व के अनेकानेक धर्मों का जो सार है वह है मानवता की सेवा तथा दुखियों व पीड़ितों की पीड़ा का निवारण। हमारे मनुष्यों ने सहस्त्रों वर्षों से जो स्वर्णिम विचार हमें दिए हैं उसमें तो केवल मानव ही नहीं वरन पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, पहाड़ों, नदियों, यहाँ तक कि अंतरिक्ष, पर्यावरण आदि के प्रति श्रद्धा व सेवा का भाव ओम शांति शांति शांति के रूप में व्यक्त किया है। शांति का अर्थ होता है मानव समाज के ऐसे आचरण का जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे वो बिगड़ने न पाए। इस लक्ष्य की प्राप्ति में सत्यपथ, करुणा, पवित्र विचार, त्याग आदि जीवन के शाश्वत मूल्यों की नितांत आवश्यकता होती है। इन विचारों से ओत प्रोत मनुष्य ही संसार के कल्याण के विषय में सोच सकता है और उसे कार्यान्वित करने हेतु मानवता की सेवा में सतत प्रयत्नशील रह सकता है। यदि हम दृष्टि डालें तो पूरे विश्व में और विशेषकर अपने देश में ऐसे सामाजिक व धार्मिक संगठनों की न्यूनता नहीं है जिनका मुख्य ध्येय मानव समाज की सेवा ही होता है। ऐसे अनेकानेक संस्थाओं में रामकृष्ण मिशन, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, आनंदमयी आश्रम, सत्य साई संस्थान, स्वामी अवधूत राम कुष्ठ आश्रम, मदर टेरेसा संचालित संस्थाएं आदि का नाम उल्लेखनीय है। एक प्रकरण का उल्लेख करना उचित होगा। एक दिन दक्षिणेश्वर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने किसी अति दीनहीन मनुष्य के दुख को देखकर स्वामी विवेकानंद से कहा कि हमें केवल सहानुभूति व्यक्त करने से ही सांत्वना नहीं मिलेगी वरन इसकी सेवा करने से, क्योंकि जीव शिव है, अतएव हर एक दुखी प्राणी को हमें भगवान के रूप में देखना चाहिए। अब इस प्रसंग को यहाँ छोड़ते हुए अपने बाल्यकाल जीवन के अनुभव को उद्धृत करना उचित समझता हूँ। अच्छी प्रकार स्मरण है कि स्कूल में हमें स्काउटिंग के प्रशिक्षण में सिखाया जाता था कि हम अपनी डायरी में नित्य प्रतिदिन ये उल्लिखित करें कि हमने कोई सेवा कार्य या किसी को मदद करने का कार्य किया अथवा नहीं। इसके लिए हमारे स्कूल व घर के वातावरण में सत्य बोलना, दया भाव रखना, बड़ों का आदर करना, दीन दुखियों की सेवा करना आदि जीवन के आदर्श पर काफ़ी जोर दिया जाता था। दुख की बात है कि आज के युग में हमारे जीवन में जो उपभोक्ता संस्कृति का परिवेश हुआ है उससे हमारे नैतिक स्तर का ह्रास तेजी से हुआ है। हमें याद है कि वर्षों पहले हम दरिद्र नारायण सेवा के बारे में बहुधा सुना करते थे, अब ये सेवाएं लुप्त प्राय होती जा रही हैं। इससे भी क्षोभ का विषय है कि मानवाधिकार के नाम पर बहुसंपन्न और बहुबली राष्ट्र अपना विचार अपने आयुधों के बल पर अन्य देशों पर थोपने में लग गए हैं। विडंबना यह है कि यह दुष्कर्म मानवता को नरसंहारी आयुधों से बचाने के नाम पर विश्व सेवा का रूप दिया जा रहा है। पुरातन काल से चले आ रहे हमारे वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत जो सेवा भाव तथा मानवीय भावनाएं निहित हैं उसी में विश्व का कल्याण है। अतएव भारतवर्ष का संदेश अहिंसा परमो धर्म को निभाने के लिए हमें मानवता की सेवा की भावना से ओतप्रोत होना पड़ेगा।
0: मानवता की सेवा, ये विषय था आज के विचार बिंदु कार्यक्रम का।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में जन्मजात हृदय रोग, कारण और बचाव के उपाय के विषय में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर प्रतिभा राय। आज सुनिए इस कार्यक्रम का पहला भाग।
1: जब भी हार्ट डिजीज या हृदय रोग के बारे में बात करते हैं तो आप ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं वो जो पैदा होने से बच्चे के साथ है, जिसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है बोलते हैं, और दूसरा होता है एक्वायर्ड हार्ट डिजीज, जो विद टाइम बच्चे या बड़े को आती है उनकी गलत शैलियों के वजह से। सो आज का फोकस है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के डाटा के हिसाब से हर 1000 पैदा हुए बच्चे में 8 से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। इसको ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक वो डिजीज जिसमें बच्चा नीला पड़ता है और एक वो जिसमें बच्चा नीला नहीं पड़ता है। पैदा हुए एक दिन के बच्चे में भी ये नीलापन दिखता है, और नहीं तो ज्यादातर 6 महीने से 1 साल के बीच में वो नीलापन दिखने लगता है। सो अगर आपके पास कोई हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है, बच्चा आपका नीला पड़ रहा है, तो सबसे पहला काम करना है बच्चे को कंधे पे रखना है और बच्चे के दोनों घुटने को मोड़ के उसके छाती में चिपका देना है। तो इससे जो मोस्ट कॉमन डिजीज होती है जिसमें बच्चा नीला पड़ता है, उसको बोलते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो। उसका एक ब्रॉड टाइप से ये ट्रीटमेंट होता है, बट ये बोलते हैं डेफिनेट ट्रीटमेंट तो नहीं है, बट जब तक बच्चा आपका हॉस्पिटल पहुंचे उस बीच में ये काफी राहत दे सकता है आपके बच्चे को। तो इसको दो पार्ट में आप बोल सकते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना, मतलब डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप का यूज करके देखेगा, दूसरा बच्चे की इकोकार्डियोग्राफी, जो मोस्ट डेफिनेटिव टेस्ट है इन सब डिजीजेस का, वो है इकोकार्डियोग्राफी, जो एक ट्रेन बंदे से ही करवाना बेटर रहता है, नहीं तो बहुत सारी डायग्नोसिस मिस हो जाती है और बाद में पता लगती है। तो एक तो हमने आपको बताया बच्चा जिसमें नीला पड़ता है, अगर आपका बच्चा नीला नहीं पड़ रहा है और बच्चा अपनी एज के कंपेरिजन के बच्चों में आपको कमजोर दिखता है, बच्चे का वेट नहीं बढ़ता है, और छोटे बच्चे अगर हैं 1 साल के नीचे तो माँ की कंप्लेन रहती है बच्चा दूध नहीं पीता है या पी के बीच में छोड़ देता है, या तो बच्चे के माथे पे पसीना आता है दूध पीते समय, या बच्चे को निमोनिया हो रहा है, या बच्चा आपको सुस्त दिखता है। अगर ये सब कोई भी सिम्टम आपको लगते हैं तो आपको जरूर से इवेल्युएट करवा लेना चाहिए अपने पीडियाट्रिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट से। देखिए, जो हमने इकोकार्डियोग्राफी की बात की, तो आजकल एक कॉन्सेप्ट है फीटल इकोकार्डियोग्राफी, जिसमें 18 से 22 सप्ताह के बीच में मां के पेट के अंदर बच्चे के हार्ट की जांच की जाती है, बट उसके स्पेसिफिक इंडिकेशंस है, वो सारे लोगों में प्रिस्क्राइब नहीं होता है। ऑब्सगाइनी के हिसाब से अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम लगती है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास फीटल इको करने के लिए भेजते हैं, बट आप ब्रॉडली देखेंगे तो अगर मदर को डायबिटीज है या कोई फैमिली में आपकी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की हिस्ट्री रही हो, या तो आजकल आईवीएफ से जो बेबीज होते हैं वो प्रेशियस प्रेगनेंसी होती है, उन सब कंडीशन में हम ज्यादातर बोलते हैं कि हर पेरेंट को 18 to 22 वीक्स के बीच में फीटल इको करवा लेना चाहिए। फीटल इको बहुत डेफिनेटिव टेस्ट नहीं है, बट सारी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, मतलब जो इमीडिएटली डिलीवरी के बाद बच्चे की जान जाने वाली जो भी बीमारियां हैं वो ज्यादातर टाइम पता लग जाती हैं। कंजेनाइटल और एक्वायर्ड दोनों डिजीजेस ऐसी हैं जो या तो टाइम पे पता लग सकती हैं या टाइम जाने के बाद पता लगती हैं। आपका जो क्वेश्चन है, अगर उसको हम कंजेनाइटल के हिसाब से आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होंगी जो 1 या 2 साल के अंदर पता नहीं लगता है। 2 साल के बाद आप किसी वजह से पीडियाट्रिशियन के पास बच्चे को ले गए तो वो स्टेथोस्कोप से सुन के बोलता है मरमर है, बट बच्चा आपका अमूमन नॉर्मल दिखता है। उस कंडीशन में इको करने पर ज्यादातर बच्चे को होल या उसकी वैल्व की सिकुड़न पाई जाती है। और जो आप अक्वायर्ड डिजीजेस बोल रहे हैं, जिसमें लेटेस्ट स्टेज में जाके हार्ट अटैक होता है, तो बहुत सारी डाटास के हिसाब से जो उसकी सीडिंग होती है वो 4 to 5 ईयर से स्टार्ट हो जाती है। मतलब हर छोटे बच्चे को भी ये कॉन्सेप्ट रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा शुगर का इंटेक नहीं होना चाहिए, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो लिमिटेड होनी चाहिए, और आपकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी लिमिटेड हो गई और स्क्रीन टाइम बढ़ गया है वो पेरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम ये सोचे कि 60 साल के आदमी को हार्ट अटैक होता है, बचपन में हम सब कुछ कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि जो चीजें हैं वो काफी टाइम के पहले शुरू हो जाती हैं। अगर हमने शुरू से ही अपना ध्यान रखा तो लेटर स्टेज में वो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। कि अक्वायर्ड हार्ट डिजीज जनरली बचपन में नहीं पता लगेगी, आपको लेटर स्टेज में ही जाके पता लगती है, बट एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इसके बारे में हम स्पेसिफिकली बोलना चाहेंगे, जिसमें वाल्व में सिकुड़न होती है। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे एथलीट होते हैं या कोई प्लेयर है, ग्राउंड में सडन डेथ हो जाती है, तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि वो सडन डेथ हार्ट अटैक होती है। तो ये हम बोलना चाहेंगे कि ज्यादातर ऐसा नहीं है कि वो हार्ट अटैक ही होता है, उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं सडन डेथ के, हार्ट अटैक उसमें से एक कॉज है।

0: दूसरे कॉजेस कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो सकते हैं जिसमें वैल्व में सिकुड़न होती है, स्पेशली लेफ्ट साइड की वैल्व जिसको aortic stenosis बोली जाती है, अगर वो सिकुड़न बहुत सीवियर होती है तो सडन डेथ का कॉज हो सकती है। दूसरा होता है वेंट्रिकुलर अरिथमिया जिसमें आपके हार्ट के इलेक्ट्रिकल वायरिंग में गड़बड़ी होती है।
1: जन्मजात हृदय रोग कारण और बचाव के उपाय, इस विषय पर अभी जानकारी दे रही थी डॉक्टर प्रतिभा राय। आज आपने सुना इस कार्यक्रम का पहला भाग। स्वास्थ्य चर्चा का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। और अब प्रस्तुत है श्रीराम चरितमानस से संगीतमय पाठ।

राजा दशरथ के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या के राजद्वार पर पहुंचने ही वाले हैं। पूरी नगरी में मांगलिक शकुन वस्तुओं की सुगंध के साथ रानियों के मंगल गीत गूंज रहे हैं। सोने के थाल में अक्षत चंदन लेकर माताएं परिछन करने चली। धूप के धुएं से आकाश यूं आच्छादित है जैसे सावन के काले कजरारे बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों। आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा हो रही है। शुभ समय विचार कर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो राजा दशरथ ने शिव, पार्वती तथा गणेश का स्मरण करके समाज सहित नगर में प्रवेश किया। श्री राम की जयध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ मंगलवाणी दसों दिशाओं में प्रतिध्वनित हो रही है। अयोध्यावासी अपने राजकुमार पर वस्त्र और मणिमोती न्योछावर कर रहे हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देख सरस्वती को भी कोई उपयुक्त उपमा देते नहीं बनती। नव विवाहित कुमार और उनकी वधुएं जब राजद्वार पर पहुंची तो आनंदित माताओं ने उनकी परिछन की आरती उतारी।

शाम 5:10 पर दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 12:45 पर और सुबह 7:31 पर हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर शनीश कुमार ग्यावली का बांसुरी वादन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8:00 सुनिएगा आरजू बानो की गाई गजली और इसी कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे लोकेश शुक्ला के गाए भजन। हरिराम मिश्र का काव्य पाठ हम आपको सुनवाएंगे स्वरवेला कार्यक्रम में शाम 7:31 पर। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई प्रेमलाल भारती के गाए लोकगीत के साथ ही सुनेंगे विनोद कुमार यादव से दिलीप यादव की बातचीत। बातचीत का विषय होगा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं। प्रेमलाल भारती के गाए लोकगीत आप दिन में 1:45 पर और सुबह 9:50 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं।

युवावाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 5:15 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फोन इन कार्यक्रम यूथ जंक्शन। अंगनैया कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर ग्रामीण बहनी चर्चा और गीत संगीत के साथ ही सुनेंगी डॉक्टर श्रुति शाश्वत उपाध्याय की वार्ता, लोकगीतों की पोटली सहिष्ठती हमारी संस्कृति।

नन्हे मुन्ने का कार्यक्रम नन्ही दुनिया हम लेकर आएंगे शाम 5 बजे। श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश आप सुनेंगे दिन में 11 बजे, प्रस्तुति अरुण पांडे की। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम अंजुमन हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत का कंपेयर्ड प्रोग्राम गीतांजलि आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। आज की प्रस्तुति होगी शिखा श्रीवास्तव की। फिल्म संगीत के कार्यक्रमों में मधुरिमा आप सुनेंगे 8:45 पर, झंकार 10:00, रसरंग 7:45 पर, रसमाधुरी रात्रि 8:15 पर। अलावा इसके फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकते हैं 6:10 पर और 7:00। श्रोताओं आपको पुनः बता दें 5:10 पर दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, और अब से थोड़ी ही देर में यानी 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम

0: कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों का विवरण।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक दिव्यानंद झा। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिदिवसीय सेशेल्स यात्रार्थम अद्य प्रातः प्रतिष्ठते। सेशेल्स देशस्य स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय दिवस समारोहे सः विशिष्टातिथिरूपेण उपस्थितः भविष्यति। पञ्चदशोत्तर द्विसहस्रतम वर्षात् अनन्तरं इयं तस्य प्रथमा सेशेल्स देशीया यात्रा भविष्यति। विदेश मंत्रालयेन सूचितं यत् भारतीय सशस्त्र सेनायाः एकं

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: नमस्कार बनारस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट शिखा। आज तारीख है 27 जून, सुबह के 7 बज चुके हैं। गंगा की लहरों पर सूरज की किरणें बनारस को नई उम्मीदों से सराबोर कर रही हैं। गंगा

ये घाटों पर घंटियों की आवाज और ताजी हवा के साथ आज की सुबह को बनाते हैं और खास हमारे शो के माध्यम से। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं अपने शहर के आज के मौसम का मिजाज। बनारस का अधिकतम तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और उमस भी रह सकती है, तो हमारी सलाह तो यही है कि पानी की बोतल हमेशा साथ रखें और बहुत जरूरी ना हो तो दोपहर 12 से 4 के बीच बाहर ना निकलें। ट्रैफिक की बात करें तो आज शनिवार है, गोदौलिया और कैंट पर भीड़ मिल सकती है। साथ ही कुछ एरियाज में सड़कों के रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा समय लेकर ही घर से निकलें। दोस्तों आज है 27 जून और आज का दिन पूरी दुनिया में विश्व सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस यानी कि MSME डे के रूप में मनाया जाता है। हमारे बनारस के लिए तो ये दिन किसी उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि हमारा बनारस और आसपास के क्षेत्र पूरी दुनिया में सबसे अधिक GI टैग वाले क्षेत्र बन गए हैं। आज का दिन उन गुमनाम नायकों के लिए है जो अपनी छोटी छोटी दुकानों और कारखानों से देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में MSME क्षेत्र ने अब तक करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है। अगर आप भी अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन संकल्प लेने के लिए सबसे अच्छा है। याद रखिए, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है, और हमारे बनारस से बेहतर इस दिन को भला कौन महसूस कर सकता है। हमारे यहाँ की तंग गलियों में जो छोटे छोटे करघे चलते हैं ना, वो सिर्फ धागे नहीं बनारस की तकदीर बुनते हैं। तो आज का संकल्प मेहनत करेंगे, छोटे काम को बड़ा बनाएंगे और खुद का ख्याल रखेंगे। वो कहते हैं ना, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो क्यों ना आज के इस खास दिन अपने शहर की कुछ ऐसी बातें करें जिन्हें याद करके हम गर्व से भर जाएं। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं इस सॉन्ग के बाद। गुड मॉर्निंग बनारस।

वेलकम बैक बनारस। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज है वर्ल्ड एमएसएमई डे, यानी कि विश्व सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस। तो आज का मॉर्निंग मोटिवेशन उन सभी के लिए जो कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। बड़ा बनने के लिए छोटे कदमों से ही शुरुआत करनी पड़ती है। याद रखिए, दुनिया की हर बड़ी कंपनी कभी न कभी एक छोटे से कमरे या गैरेज से शुरू हुई थी, चाहे वो बनारसी साड़ी का काम हो या कोई नया स्टार्टअप। आपकी मेहनत ही उसे पहचान दिलाएगी। एमएसएमई 2026 की थीम भी यही कहती है, नवाचार और टिकाऊ औद्योगिक विकास के माध्यम से सशक्त बनाना। तो अगर आपके पास कोई हुनर है तो उसे व्यापार बनाइए। सरकार भी पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अब रियल टाइम लोन प्रोसेसिंग सुविधा दे रही है और आपको सीधे बैंक लोन और सरकारी योजनाओं से जोड़ रही है। अगर आपके मन में भी कोई छोटा सा भी बिजनेस आइडिया है तो आज उसे शुरू करने का संकल्प जरूर लेना चाहिए आपको। सफलता उन्हीं को मिलती है जो छोटे से शुरुआत करने का साहस रखते हैं। हमारा बनारस और आसपास के जिले सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक जीआई टैक्स वाले क्षेत्र बन गए हैं। बनारस के पास 34 से ज्यादा जीआई टैक्स हैं, जिनमें करीब 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं। सिर्फ बनारसी साड़ी ही नहीं, अब तो बनारस तिरंगा बर्फी, बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, बनारसी पान, लंगड़ा आम और रामनगर भंटा को भी वैश्विक पहचान मिल चुकी है। ये हमारे छोटे उद्यमियों की जीत है। बनारस तो उद्यमियों का शहर है ही, यहाँ हर गली में एक हुनरमंद हाथ है। अगर आप भी अपना काम शुरू करने की सोच रहे हैं ना, तो सरकार का चैंपियंस पोर्टल आपके लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। चैंपियंस पोर्टल सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बल्कि आपकी समस्याओं का समाधान करने वाला एक मॉडर्न कंट्रोल रूम है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और मशीन लर्निंग से लैस है, ताकि छोटे व्यवसायों को बड़ा बनने में मदद मिल सके। आज उद्यमी दिवस पर चलिए बात करते हैं एक ऐसी सफलता की कहानी की जो हमारे अपने कश्मीरी गंज इलाके से आती है। यहाँ के लकड़ी के खिलौना उद्योग की स्थिति एक समय काफी खराब थी, लेकिन प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की पहल और जीआई टैग मिलने के बाद आज ये उद्योग करीब 45 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर तक पहुँच गया है। पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी सिंह जैसे कलाकारों और रामचंद्र सिंह जैसे उद्यमियों ने कड़ी मेहनत की है। आज यहाँ के खिलौने न केवल बनारस में बल्कि कनाडा, फ्रांस और जापान तक भेजे जा रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी परंपरा को आधुनिकता और तकनीक के साथ जोड़ें, तो हम पूरी दुनिया में चैंपियंस बन सकते हैं। दोस्तों, आज बनारस गर्व से कह सकता है कि अकेले वाराणसी के पास 30 से अधिक जीआई टैक्स वाले उत्पाद हैं। बनारसी साड़ी और गुलाबी मीनाकारी से लेकर बनारस की शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा और म्यूरल पेंटिंग तक हमारी पहचान पूरी दुनिया में है। पूरे उत्तर प्रदेश में 77 जीआई उत्पाद हैं और इनमें काशी का सबसे बड़ा हाथ है। हमारे बनारस के रामनगर और खोजुआ जैसे इलाके इसका जीता जागता उदाहरण है। खोजुआ के लकड़ी के खिलौने आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों जैसे जापान, फ्रांस की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारा प्लास्टिक क्लस्टर और सिल्क उद्योग लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, एक ब्रांड है। यहाँ का एमएसएमई सेक्टर सिर्फ सामान नहीं बल्कि विरासत से विकास की कहानी बुनता है। एमएसएमई दिवस की बात हो और हम अपने खास इलाकों की बात करना भूल जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। रामनगर हमारे क्षेत्र का एक प्रमुख प्लास्टिक

क्लस्टर है जहां 3000 से अधिक उद्योग चलते हैं। यहां कागज, रसायनों और इंजीनियरिंग उपकरणों का भारी उत्पादन होता है। खोजवा और कश्मीरीगंज के इलाके अपनी प्राचीन लकड़ी के लेकरवेयर और खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी जोड़ के लकड़ी के अद्भुत खिलौने बना रहे हैं। बनारसी रेशम बुनाई का असली जादू लल्लापुरा और मदनपुरा की तंगलियों में बुनकरों के करघों पर दिखाई पड़ता है। आज MSME दिवस पर इन इलाकों के कारीगरों को हमारा विशेष सलाम। और आज का मॉर्निंग मोटिवेशन उन सभी के लिए भी जो गर्मी और चुनौतियों से घबरा रहे हैं। बड़ा वही बनता है जो छोटे से शुरुआत करने का साहस रखता है। याद रखिए, आपके घर की एक छोटी सी मशीन या दुकान कल बनारस की नई पहचान बन सकती है। तो उठिए, आज MSME दिवस पर संकल्प लीजिए कि हम अपनी मेहनत से मेक इन बनारस को ग्लोबल बनाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं शहर बनारस का हालचाल। काशी के दक्षिणी छोर पर विराजमान प्रभु जगन्नाथ की स्नान यात्रा ज्येष्ठ पूर्णिमा पर 29 जून को होगी। काशी का रथ यात्रा मेला तो विख्यात है, लेकिन स्नान यात्रा के बारे में यहीं के काफी लोगों को नहीं पता। प्रभु की वार्षिक स्नान यात्रा में सभी काशीवासी शामिल हों, इसका आमंत्रण श्री जगन्नाथ जी की ट्रस्ट की ओर से दिया जा रहा है। ये बातें ट्रस्ट के अध्यक्ष पूर्व MLC बृजेश सिंह ने कही। वो शुक्रवार को महमूरगंज स्थित होटल में पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ प्रभु की स्नान यात्रा 29 जून को भोर में 5:11 से शुरू होगी। मान्यता है कि अत्यधिक स्नान से भगवान बीमार पड़ जाते हैं। यूपी कॉलेज की छात्रा और 100 यूपी बटालियन की कैडेट संजीवनी राजेश युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2026-27 के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। रक्षा मंत्रालय के अधीन महानिदेशालय राष्ट्रीय कैडेट कोर नई दिल्ली की तरफ से जारी सूचना में उन्हें 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में स्थान दिया गया है। ये दल 25 जून से 16 जुलाई तक UK की यात्रा करेगा और विभिन्न सांस्कृतिक, शैक्षिक और नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में भाग लेगा। उनका चयन देश भर के विभिन्न चयन चरणों के बाद किया गया है, जिसमें लिखित परीक्षा, व्यक्तित्व परीक्षण, समूह चर्चा, साक्षात्कार और नेतृत्व क्षमता जैसे कई चरण शामिल थे। यूपी कॉलेज में नए सत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। प्रवेश परीक्षाएं 1 से 4 जुलाई तक 2 पालियों में आयोजित होंगी। जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, उनकी प्रवेश प्रक्रिया 6 जुलाई से संबंधित विभागों में शुरू होगी। प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड 27 जून को दोपहर 12 के बाद डाउनलोड किए जा सकेंगे। प्राचार्य प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा। बिना एडमिट कार्ड वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आवेदन पत्र में नाम, विषय, जन्मतिथि या श्रेणी संबंधी त्रुटि होने पर अभ्यर्थी परीक्षा दिवस पर आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ प्रवेश परीक्षा कार्यालय में संशोधन करा सकेंगे। इस वर्ष प्रवेश के लिए लगभग 5500 अभ्यर्थियों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदन किया है। BHU को छोटे प्रयोगात्मक पशुओं पर विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन करने वाले पोर्टेबल उपकरण का पेटेंट प्राप्त हुआ है। कम लागत के साथ आसान तरीके से आविष्कार में उपयोगी इस उपकरण की सहायता से पर्यावरणीय अध्ययन में सहूलियत होगी। ये खोज IMS BHU के शरीर क्रिया विज्ञान विभाग में डॉक्टर अनिल कुमार यादव, डॉक्टर कुमार सर्वोत्तम के मार्गदर्शन में की गई है। BHU में लंबे समय से की जा रही CGHS की मांग को लागू कर दिया गया है। गुरुवार को कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी ने कमेटी की अनुशंसाओं को स्वीकृति दे दी। देर शाम जारी अधिसूचना में BHU ने अपने हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सकीय संबल प्रदान किया है।
इसके लिए 40 से

ज्यादा अस्पतालों को चिन्हित किया गया है। तो ये था शहर बनारस का हालचाल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में और जानते हैं इतिहास में 27 जून की खासियत। सत्ताईस जून 1693 में लंदन में महिलाओं की पहली पत्रिका लेडीज मर्करी का प्रकाशन शुरू हुआ था। 1838 में राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था आज के ही दिन। 1867 में बैंक ऑफ कैलिफोर्निया का संचालन शुरू हुआ था। 1893 में सिख साम्राज्य के संस्थापक पंजाब के महाराज रणजीत सिंह का निधन हुआ था आज के ही दिन। 1914 में अमेरिका ने इथोपिया के साथ वाणिज्य संधि पर हस्ताक्षर किए थे आज के दिन। 1940 में सोवियत सेना ने रोमानिया पर हमला किया था आज के दिन। 1964 में तीन मूर्ति भवन को नेहरू संग्रहालय बनाया गया था आज के ही दिन। तो ये था 27 जून का इतिहास। श्रोताओं, इसी के साथ अब कार्यक्रम को वाइंड अप करने का समय भी हो चला है। शिखा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में यानी 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: बस कोई नाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। श्री राम मंदिर के दान और चढ़ावा मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट। नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का किया आह्वान। और प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत, कल रात से पूर्वी उत्तर

0: देश के कई जिलों में प्रवेश करेगा मानसून। और अब समाचार विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनावों में देरी तथा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिए। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में राज्य सरकार के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी गई है जिसके तहत यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान और चढ़ावा मामले में कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को कल स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। श्रीराम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपियों को जेल भेजे जाने के बाद अभियोजन अधिकारी केसी वर्मा ने बताया कि सुभाष को छोड़कर बाकी आरोपियों से कुल मिलाकर 79,85,000 रुपये से अधिक की रकम बरामद की गई है। आरोपियों को 29 जून को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान मामले में एफआईआर दर्ज होने और 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। कल देवरिया में 465 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो भुक्त भोगी होगा।
1: जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने देवरिया में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश का नौजवान जो पहले नौकरी के लिए पलायन करता था, आज वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल के चलते निवेश आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में एक निजी एस्ट्रोमेडिक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। हम आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री ने राज्य में 2017 से पहले स्वास्थ्य सुविधाओं की खराब स्थिति के लिए तत्कालीन सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने वर्तमान सरकार में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के उन्नयन का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनवा रही है। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। गृह मंत्री अमित

0: ने वर्ष 2026 से 2029 की अवधि के लिए कल मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा, सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेश ने सोलर रूफटॉप स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जून 2026 में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6,00,000 से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है। यूपी नेडा के डायरेक्टर रविन्द्र सिंह ने बताया कि देश में कुल सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17% है और यह देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशुरा के मौके पर कल प्रदेश भर में ताजिया जुलूस निकाले गए। ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। जुलूसों के बाद देर रात तक करबला में ताजियों को दफन किया गया। लखनऊ स्थित तालकटोरा की करबला में बड़ी संख्या में लोगों ने इमाम हुसैन को याद किया। 10वीं मुहर्रम पर गोरखपुर में भी कल सुबह से ही ताजिया जुलूसों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ जो रात भर चलता रहा। एक रिपोर्ट।
2: मुहर्रम की 10वीं तारीख पर महानगर के सभी इमाम चौकों पर बैठाए गए ताजिए के साथ अकीदत मंदों ने जुलूस निकाला और करबला पहुंचकर ताजियों को करबला में दफन किया। इमाम चौकों पर रखे गए बड़े ताजिए जुलूस में शामिल हुए। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: मथुरा, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर, जौनपुर, उन्नाव, हापुड़ और महाराजगंज सहित राज्य के सभी जिलों में ताजिया जुलूस निकाले गए। इस अवसर पर प्रदेश भर में ताजिया जुलूस मार्गों और करबलाओं के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून प्रवेश करेगा। इसके बाद 30 जून से 3-4 दिनों तक प्रदेश भर में गरज चमक के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी। प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। श्री राम मंदिर के दान और चढ़ावा मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट। नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का किया आह्वान। और प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत। कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रवेश करेगा मानसून। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत, जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
3: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं, उसे तो कभी भी किसी वस्तु से

0: संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शनीश कुमार ग्यावली का बांसुरी वादन, राग है ललित। तबले पर आपके साथ संगत की है पंकज राय ने।

0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शनीश कुमार ग्यावली का बांसुरी वादन। राग था ललित, तबले पर आपके साथ संगत की पंकज राय ने। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि।

0: होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है।

0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला के हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
2: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। हमारे यहाँ 2 कलेक्शन हो रहा, प्रतिदिन 50-55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत

0: यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र सिक्किम असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार छत्तीसगढ़ कोंकण गोवा तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी केरलम माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीरअर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्ता ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi Service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, 2-times champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आज इस मुल्क के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बहामी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज करेंगे। भारत ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री तैयार की है जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। भारत ने जलजले से मुतासिरा वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। उसने राहत का सामान और तिब्बी इमदाद रवाना की है। इस कुदरती आफत में मरने वालों की तादाद 920 तक जा पहुंची है। FIH मर्दों के प्रो लीग हॉकी में कल रात लंदन में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से शिकस्त दे दी। और फुटबॉल में दो बार का चैंपियन यूरोगोए स्पेन के हाथों 1-0 से हार जाने के बाद फीफा आलमी कप से बाहर हो गया है।

0: मर्दों के FIH प्रो लीग हॉकी में कल रात लंदन के ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया। पाकिस्तान के खिलाड़ी अबू बकर ने एक पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए पाकिस्तान को पहले क्वार्टर में एक गोल की सबकत दिलाई। इसके बाद भारत की तरफ से अलग अलग खिलाड़ियों ने कुल 7 गोल किए। अब कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा। फीफा आलमी कप 2026 में आज सुबह मैक्सिको के गॉडलाजारा स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एच के आखिरी मैच में यूरोगोए स्पेन से 1-0 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। इस जीत के साथ स्पेन ग्रुप एच में सरे फहरिस्त हो गया है। ग्रुप एच के एक दूसरे मैच में फीफा आलमी कप में पहली मरतबा हिस्सा लेने वाली टीम कैबो वर्डे सऊदी अरब के साथ बगैर किसी गोल के बराबरी पर मैच खत्म करने के बाद 32 राउंड में पहुंच गई है। ये मैच अमरीका के हॉस्टन स्टेडियम में खेला गया था। इससे पहले आज अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में खेले गए ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से शिकस्त दी, जबकि मैक्सिको के टोरंटो स्टेडियम में खेले गए ग्रुप आई के एक दूसरे मैच में सेनेगल ने इराक को 5-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ सेनेगल 32वें राउंड में दाखिल हो गया है। मर्दों के क्रिकेट में कल रात बेलफास्ट में खेले गए 2 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। क्रिकेट के किसी भी तरह के फॉर्मेट में आयरलैंड ने भारत पर यह पहली जीत हासिल की है। जीत के लिए मुकर्रर किए गए 183 रन के निशाने को हासिल करने में भारत की टीम नाकाम रही और एक और ओवर बाकी रहते हुए पूरी टीम 148 रन के स्कोर पर आउट हो गई। सीरीज का दूसरा और आखिरी 20 मैच आज खेला जाएगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। रोजाना प्रताप ने वजीर खारजा ए जयशंकर के जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान अपने हमनसब क्यू ह्यून के साथ दो तरफा बातचीत की खबर को अहमियत दी है। बातचीत के दौरान भारत और जनूबी कोरिया ने खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को और मजबूत करने के अज़्म का इरादा किया। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए मरकजी और दाखिला अमित शाह ने मुंशियात के कंट्रोल पर विजन दस्तावेज 2026-29 और NCB की सालाना रिपोर्ट 2025 का इजरा किया। इस खबर को आज के बेशतर अखबारों ने खसूसी तौर पर शाया किया है। रोजाना प्रताप ने 16वें भारत जापान सरबरा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए 1 जुलाई को जापानी वजीर आजम के भारत दौरे की खबर पर तवज्जो दी है।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आज इस मुल्क के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बहामी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज करेंगे। भारत ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री तैयार की है, जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। भारत ने जलजले से मुतासर वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। उसने राहत सामान और तिब्बी इमदाद रवाना की है। इस कुदरती आफत में मरने वालों की तादाद 920 तक जा पहुंची है। और FIH मर्दों के प्रो लीग हॉकी में कल रात लंदन में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 हो चुके हैं। बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मधुरिमा। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
6: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
7: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
6: बुकिंग है तो संपर्क करें
8: 0542227658
9: 0542227658 आकाशवाणी वाराणसी।

മധുരിമാ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് മെലഡി മധുരിമാ मधुरिमा प्रोग्राम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज इस प्रोग्राम को आपके लिए पेश कर रही है आपकी रेडियो दोस्त अंजू तिवारी। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार और हम बता दें आपको कि आज हम आपको इस प्रोग्राम में क्या सुनवा रहे हैं। थोड़ा तो सस्पेंस बनता है। फिलहाल जब हम बात करते हैं दोस्तों कि फैशन की दुनिया के बारे में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं फैशन की दुनिया में जो ज़रूरी भी हैं और कुछ ऐसी हैं जो ज़रूरी नहीं भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी पुरानी नहीं पड़ती, हमारे साथ चलती रहती हैं, अपनी जगह बना लेती हैं और उन्हीं में से एक है चश्मा। और जब बात काले चश्मे की हो, यानी धूप के चश्मे की, तो फिर तो बात ही निराली हो जाती है। और आपको बता दें आज है 27 जून और आज का दिन खास तौर पर नेशनल सनग्लास डे के रूप में मनाया जाता है, यानी धूप के चश्मे का दिन। और धूप के चश्मे का तो मेरे ख्याल से सभी लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम जब धूप में निकलते हैं तो जो सूर्य की किरणें सीधे आँख पर पड़ती हैं, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि देखने में दिक्कत होती है, आँखें सिकुड़ जाती हैं, तो धूप का चश्मा हमारे लिए कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये धूप से आँखों की हिफाजत तो करता ही है, लेकिन कभी कभी ये स्टाइल स्टेटमेंट भी बन जाता है। कभी किसी की झिझक छुपा लेता है तो कभी किसी की शरारती नजरें। और हमारा बॉलीवुड तो इतना समृद्ध है कि बॉलीवुड ने भी काले चश्मे को कभी रोमांस का हिस्सा बनाया, तो कभी कॉमेडी का, और कभी कभी तो फैशन स्टेटस भी बना दिया। आज इस प्रोग्राम में काले चश्मे को ही लेकर हम बातें करेंगे और कुछ गीत भी आपको सुनवाएंगे जो बॉलीवुड की देन है।

सनग्लासेस की अगर बात करें तो बहुत पहले ही सनग्लासेस को कूल स्टाइल के रूप में हमने अपना लिया था, लेकिन नेशनल सनग्लास डे मनाने की शुरुआत हुई थी सन 2009 में, जब इसे ऑप्टिकल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए एक गैर लाभकारी व्यापार संघ द विजन काउंसिल द्वारा शुरू किया गया था। इस संगठन ने लोगों को अपनी आंखों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की याद दिलाने के लिए इस दिन को मनाने का सुझाव दिया था। और चूंकि साल के सबसे लंबे दिन जून के महीने के अंत में होते हैं, इसलिए ये स्वाभाविक ही था कि राष्ट्रीय धूप चश्मा दिवस यानी नेशनल सनग्लास डे ऐसे समय पर निर्धारित किया जाए जब आंखों को लंबे समय तक धूप में रहने से नुकसान होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। और सच्ची तो है, कभी कभी काला चश्मा चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। और वो कहते हैं ना, आंखें दिल का आईना होती हैं, और जब उन्हीं आंखों पर काला चश्मा आ जाए तो सामने वाला सोचता ही रह जाता है कि आखिर इन आंखों में क्या रहस्य छुपा है। और शायद यही रहस्य बॉलीवुड को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। और कहते हैं ना कि हर गीत अपने आप में एक खास होता है, और जब काले चश्मे को लेकर नई पीढ़ी का फैशन शुरू हुआ तब एक और गीत सबके जहन में बस गया और छा गया।

ये धूप का चश्मा सिर्फ हमारा फैशन स्टेटस नहीं है या एक फैशन एसेसरी नहीं है, बल्कि ये आँखों की स्वास्थ्य की सुरक्षा का भी खास ध्यान रखता है। और कई बार धूप में हम निकलते हैं तो हमारी आँखें सिकुड़ जाती हैं, तो फायदेमंद तो है। और लंबे समय तक जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं ए और बी, उनके संपर्क में आने से हमारी आँखें बचती हैं अगर हम सनग्लासेस लगाते हैं। और कई बार इन रेस से कैटरेक्ट की समस्या होती है या मैकुलर डीजेनरेशन की समस्याएं होती हैं। तो कह सकते हैं कि काला चश्मा धूप से हमारी आँखों को आराम देने के साथ साथ हमारी आँखों के स्वास्थ्य से भी संबंधित है। और इसलिए जब हम सनग्लास लेते हैं ना, तो उसमें ध्यान ये रखना चाहिए कि वो बढ़िया क्वालिटी का हो और यूवी रेस से प्रोटेक्टेड हो। तो अभी जो गीत आप सुन रहे थे, आपने भी नोटिस किया होगा कि ये गीत हर पार्टी, हर एक महफिल की जान बन गया है जब से ये गीत रिलीज हुआ है और हमारे यूथ की नई पसंद बन गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये धुन मूल रूप से एक पंजाबी लोक पॉप गाने से प्रेरित है, जिसे बाद में फिल्मी अंदाज में पेश किया गया था और इसे हमारी नई पीढ़ी ने जबरदस्त लोकप्रियता दिला दी। फैशन बदला, समय बदला, लेकिन काला चश्मा आज भी उतना ही स्टाइलिश है। कहते हैं काला चश्मा सिर्फ धूप से नहीं बचाता, कई बार दिल की बातें भी छुपा लेता है। कई बार लोग मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कहानी कह रही होती हैं। और शायद इसीलिए फिल्मों में काला चश्मा एक किरदार के रूप में भी आ गया। बहुत सारे गीत इस पर बन पड़े हैं, लेकिन कुछ खास गीत आपके लिए।

दोस्तों, हम धूप के चश्मे की जब बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ये फैशन के रूप में तो हम अपनाते ही हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हमारे पूरे चेहरे पर अगर सुंदरता की बात की जाए तो आंखों का बहुत महत्व होता है, और आंखें जितनी सुंदर होती हैं चेहरा और खूबसूरत लगता है, और बहुत सारी आंखें इतनी गहरी होती हैं कि उनसे कुछ ना कुछ बातें निकल कर आती हैं, और कई बार अपने अपने इमोशंस को, अपने आंखों के एक्सप्रेशन को छुपाने के लिए भी हम काले चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। और हर किसी को जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे चश्मे की जरूरत पड़ती है जो धूप से नहीं बल्कि नकारात्मक सोच से बचा सके, और अगर नजर सकारात्मक है तो दुनिया भी खूबसूरत लगने लगती है। कहा जाता है ना कि कभी कभी चश्मा नजर भी बदल देता है और नजरिया भी बदल देता है, और खूबसूरती को जब नजर लगने की बात कही जाती है तो हम काले टीके का इस्तेमाल करते हैं। तो कह सकते हैं कि ये हमारा जो काला चश्मा है हमारी खूबसूरती को भी बचाता है, नजर लगने से बचाता है।

बिल्कुल, नज़र तो लगनी ही नहीं चाहिए। हमारी खूबसूरती अपने आप में हमारे जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाती है। और कहते हैं ना कि खूबसूरती आपकी आंखों में होती है, खूबसूरती आपके नज़रिए में होती है, आपकी सोच में होती है, और वो चेहरे पे रिफ्लेक्ट करती है। ये अलग बात है कि ये काला चश्मा उसमें एक और सितारा जोड़ देता है। बॉलीवुड की बात करें या नॉर्मल आज की जो जेनरेशन है उसकी बात करें, तो इनके लिए काला चश्मा यानी सनग्लास एक ज़रूरी चीज़ नहीं है, बल्कि एक एहसास है। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो राज कपूर का जो मासूम सा अंदाज है, देवानंद का स्टाइल है, अमिताभ बच्चन का रॉब है, और आज के भी जितने सितारे हैं उन सब के लिए एक फैशन का जरिया है काला चश्मा। और इस काले चश्मे ने हर दौर में अपनी पहचान बनाई है। सनग्लास सिर्फ धूप से बचने का साधन नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा भी है। हालांकि ये भी हम जानते हैं कि ये सबके लिए, सभी लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि हमारी आंखों की सेहत के लिए ये एक अच्छी चीज़ है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम फैशन एसेसरी ना माने तो भी। तो आंखों को बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए, आंखों की सेहत के लिए हम आज का दिन भी मना रहे हैं, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो धूप में काला चश्मा लगाकर जरूर निकलिए, कहीं आपकी आंखें मुश्किल में ना पड़ जाएं।

दोस्तों, चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा जरूरी होती है नजर की खूबसूरती। और जब नजर अच्छी हो तो बिना चश्मे के भी दुनिया खूबसूरत नजर आती है। तो काले चश्मे के साथ हमारा आपका ये सफर यहीं तक। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और अब इजाजत दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की अपने रेडियो दोस्त अंजू तिवारी को। नमस्कार।

Madhurima, the sound of melody. Madhurima. अभी आप सुन रही थी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मधुरिमा, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए सुल्तानपुर और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन कुमार साहू का।
2: सुल्तानपुर जिले में पिछले एक माह से सूर्य की तपिश का सामना कर रहे जिलेवासी मानसून के आने की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माह भर से जिले में पारा लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहा। सप्ताह भर से पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण गर्मी के चलते राहगीरों के लिए जिला प्रशासन ने राजीव गांधी पार्क परिसर में अस्थायी कूल होम भी बनाया है, जहाँ पर पानी पीने, बैठने व आराम करने की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। भीषण गर्मी के चलते जिले की सामाजिक संस्थाओं ने राहगीरों के लिए अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर, मिट्टी के घड़ों में निर्मल जल एवं गुड़ रखकर निःशुल्क प्याऊ सेंटर भी खोल रखे हैं। इस वर्ष ज्येष्ठ माह के मंगलवार को जिले भर में बृहद स्तर पर भंडारों का आयोजन किया जाता रहा। इस सप्ताह अंतिम मंगलवार को नगर में विशेष कर चौक क्षेत्र में आयोजित भंडारों में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन श्रद्धालुओं को वितरित किए गए। सुल्तानपुर जिले में जनगणना 2027 का प्रथम चरण पूर्ण कर लिया गया है। 7,10,223 मकानों की गणना हुई है। इसके अनुसार 947 परिवार अंकित किए गए हैं। मकान सूचीकरण के आधार पर अनुमानित जनसंख्या 31,07,493 हो गई है। पहले चरण में 5,600 कार्मिकों ने डाटा एकत्र करने का काम किया। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। यह 2027 में फरवरी में शुरू होगा। इसमें जातिगत जनगणना भी की जाएगी। जनगणना कार्यक्रम के संबंध में जिला

0: जनगणना अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि
1: जनगणना 2027 का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में जनपद सुल्तानपुर में जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान हमारे जनपद सुल्तानपुर में 5 तहसीलों और 5 स्थानीय निकायों को मिलाकर कुल 10 चार्ज गठित किए गए थे और इन 10 चार्जों में टोटल हमारी 4390 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक गठित किए गए। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारी पूरी टीम ने बड़ी तल्लीनता से कार्य किया और इसे समय रहते हुए पूरा किया।
0: जनपद सुल्तानपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम वृहद स्तर पर आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम पर्यावरण पार्क में आयोजित किया गया, जहां पर उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया था। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने ऋषि परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक मान्यता दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्र के एक ऐसे नेतृत्वकर्ता जो निरंतर 12 वर्षों से निरंतर अपने राष्ट्र के नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए महाअभियान चलाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे नेतृत्वकर्ता का सानिध्य पाना हम सबके लिए सौभाग्य है। उन्होंने पीएम के आह्वान को दोहराते हुए प्रत्येक दिन नियमित योग को अपनाने का नागरिकों को संकल्प दिलाया। योग प्रशिक्षिका मोनालिसा ने बताया कि गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों ने योग को अपनाकर अपने जीवन को सहाल बना लिया है। योग प्रशिक्षिका मोनालिसा ने बताया कि
2: जो मेडिसिन भी जो काम नहीं कर पाती, अगर हम नियमित रूप से योगा करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें जड़ से खत्म हो गई है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे आजकल इतना बिजी रूटीन हो गया है, मोबाइल फोन, इधर टाइम नहीं मिलता है लोगों को कुछ भी करने का। अगर हाफ एन आवर या 1 आवर डेली निकाल लें अपने शरीर के लिए तो शरीर जो है नियमित रूप से बहुत ही अच्छा रहेगा।
0: जनपद में सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी गति मिली है। अयोध्या प्रयागराज हाईवे को टांडा बांधा हाईवे से जोड़ने वाली पकड़ी बनकेपुर मार्ग का चौड़ीकरण लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाएगा। वहीं गोमती नदी के निरसहिया घाट पर लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। पुल बनने से तराई क्षेत्र के 5 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिले की 35 ग्राम पंचायतों में नए उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए शासन ने 15वें वित्त आयोग के तहत 14 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। प्रथम चरण में चयनित ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इधर 28 जून से जिले में पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। स्वास्थ्य विभाग ने 0 से 5 वर्ष तक के 3,56,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए बूथों के साथ साथ घर घर जाकर भी बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाने की अपील की है।
3: सुल्तानपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख है श्रीपाल सिंह का।
4: गंगा दशहरा पर्व पर बुलंदशहर जिले में लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। जिले के अनुपशहर आहार, नरोरा, कर्णवास, राजघाट, रामघाट सहित सभी गंगा घाटों पर भारी पुलिस बल तैनात रही। स्नान को लेकर सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर घाटों पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। लखनऊ में एक निजी कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक घटना के बाद बुलंदशहर में भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। जिले के अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में पुलिस प्रशासन के अफसरों के द्वारा अग्निशमन की टीम के साथ निरीक्षण किया जा रहा है। कोचिंग सेंटर्स में आपात स्थिति में बचाव के लिए क्या इंतजाम है उन्हें भी गंभीरता से परखा जा रहा है। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले भर में अलग अलग टीम बनाकर तमाम व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है, साथ ही इमरजेंसी में कैसे खुद को सुरक्षित करें ये भी बताया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने नए सत्र में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन कराने के उद्देश्य से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए 1 जुलाई से जिले भर में स्कूल चलो अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत घर घर संपर्क कर बच्चों का नामांकन कराया जाएगा। इस बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले में कुल 1862 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें अब तक करीब 2 लाख बच्चों ने नए सत्र में प्रवेश लिया है। शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य इस बार ऐसे बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने पर रहेगा जो किसी कारणवश पढ़ाई से दूर हैं या बीच में स्कूल छोड़ चुके हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक भव्य योग शिविर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन यमुनापुरम स्टेडियम बुलंदशहर में भी किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को दैनिक जीवन में योग को अपनाने और शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री

0: सुरेंद्र दिलेर ने की। इस अवसर पर सांसद भोला सिंह, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी मंडलायुक्त मेरठ भानु चंद गोस्वामी और जिलाधिकारी बुलंदशहर कुमार हर्ष ने पौधारोपण भी किया। बीते दिनों कृषि विभाग द्वारा बुलंदशहर में विशेष दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के दूसरे और अंतिम दिन कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र दिलेर द्वारा की गई। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और भारी संख्या में प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में जहां कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तृत और तकनीकी जानकारी दी गई, वहीं राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह दिलेर ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं गिनाई। उन्होंने बताया कि सरकारें जनहित में कार्य कर रही हैं, बड़ा बदलाव देश में इन 12 वर्षों में हुआ है।
1: देखिए, पिछले 12 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, देश का विकास, देश का विश्वास और देशवासियों के लिए जन कल्याण, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम, जो काम 2014 से पहले 67 सालों में पुरानी सरकार नहीं किए थे, उससे दोगुना काम, दोगुनी योजनाएं, दोगुनी संख्या सभी क्षेत्र में हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बढ़ाई।
0: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS को देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ATS टीम ने बुलंदशहर से दो संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक ATS को पिछले काफी समय से इन संदिग्धों की गतिविधियों के बारे में खुफिया इनपुट मिल रहे थे। पुख्ता जानकारी और सर्विलांस के आधार पर ATS की टीम ने बुलंदशहर में छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया। पकड़े गए संदिग्धों की पहचान मोहम्मद उमर पुत्र जुल्फिकार और फैजान पुत्र समीमुद्दीन के रूप में हुई। इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की पुष्टि कानून व्यवस्था और ATS के आला अधिकारी ADG अमिताभ यश ने की है।
2: दिनांक 17 जून 2026 को ATS उत्तर प्रदेश द्वारा दो अभियुक्तगण मोहम्मद उमर व फैजान को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के निर्देश पर आबिद जट के फोटो विभिन्न स्थानों पर चस्पा कर भय एवं आतंक का माहौल पैदा करना चाहते थे। इनके पास से आबिद जट के पोस्टर लगाते हुए वीडियोज, आबिद जट के पोस्टर्स व अन्य डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
0: ओमान खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकन हमले से सकुशल बुलंदशहर जिले के रहने वाले सनी चौधरी ने गृह वापसी की, जो कि मर्चेंट नेवी में पिछले एक वर्ष से तैनात हैं। उनकी ड्यूटी पानी के जहाज पर गल्फ ऑफ ओशियन में चल रही थी। 11 जून को अमेरिकन नेवी ने गल्फ ऑफ ओशियन ओमान की खाड़ी में खड़े जहाज पर हमला कर दिया था। ओमान की इंडियन एम्बेसी के कहने पर रेस्क्यू किया था। ओमान की इंडियन एम्बेसी की मदद से उन्हें भारत पहुंचाया गया है। 20 भारतीयों को सकुशल भारत भेजने की ओमान की इंडियन एम्बेसी ने एक्स पर फोटो सहित सूचना की पोस्ट भी डाली है। घर पहुंचने पर सनी चौधरी ने भारत सरकार का आभार जताया।
3: ओमान वॉरशिप द्वारा रेस्क्यू किया गया। उसके बाद जब हम सिनाज पोर्ट पहुंचे, वहाँ इंडियन एम्बेसी ने हमारी जो भी सहायता हो सकती थी वो हमारी की और हमको ओमान से इंडिया के लिए भेजा गया। मैं हमारी भारत सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ।
4: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम चांदपुर थाना मंडुआडीह जनपद वाराणसी निवासी शुभम पटेल ने सूचित किया है कि उनके भाई आकाश पटेल दिनांक 21 जून 2025 से लापता हैं। इनकी उम्र है 26 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ, एक गहरा बदन और चेहरा लंबा है। आखिरी बार इन्हें सफेद लोअर और नीले टी शर्ट में देखा गया था। कमिश्नरेट वाराणसी से ही प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार वाराणसी जनपद निवासी मुस्कान बारी लहरतारा भिठारी पोस्ट लोहता वाराणसी की निवासी

हैं, ये दिनांक 20 जून 2025 से लापता हैं। इनकी उम्र है 22 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ, ये हिंदी भाषा बोलती हैं। इनके बारे में जिस किसी को भी जानकारी मिले तो कृपया निकटतम थाने पर शीघ्र सूचित करें। ग्राम बेलवरिया, थाना शिवपुर, जनपद वाराणसी निवासी अमित कुमार पटेल ने सूचित किया है कि उनकी पत्नी काजल देवी, ये दिनांक 16 जून 2025 से शिवपुर से लापता है। इनकी उम्र है 27 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा और कद काठी सामान्य है। ये हिंदी भाषा बोलती हैं। आखिरी बार इन्हें लाल रंग की साड़ी में देखा गया था। ग्राम खुज्जा, पोस्ट संडी, थाना पन्नूगंज, जनपद सोनभद्र निवासी संजीत ने सूचित किया है कि उनके पिता डंगर दिनांक 8 फरवरी 2025 से लापता हैं। इनकी उम्र है 70 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, इकहरा बदन और कदकाठी सामान्य है। आखिरी बार इन्हें सफेद रंग के कुर्ते पजामे में और साथ ही पीले रंग के गमछे में देखा गया था। इन सभी के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी मिले तो कृपया निकटतम थाने पर शीघ्र सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। श्रोताओं, आपको पुनः बता दें, आज शाम 5:10 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, सुनिएगा जरूर। और अब स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से उर्दू कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
1: आप सबके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आकाशवाणी रामपुर के मरकज से आपका मेज़बान फरीदुल्ला खान हाजिर है। सलाम खलूस कबूल कीजिए। आप सबका तह दिल से खैर मकदम करते हैं। इस्लामी साल की शुरुआत मुहर्रम और हराम के पाक महीने से होती है। मुहर्रम हुरमत वाला महीना चार पाक महीनों में से एक है। मुहर्रम के महीने में बहुत ही वाकयात पेश आए हैं। इस महीने की 10 तारीख को आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहाई मिली। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौन से निजात मिली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठाया गया। और इसी दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत हुई। इसी तारीख को क़यामत क़ायम होगी। मुहर्रमुल हराम के इस पाक महीने में हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं ये अपने आर्काइव्स में मौजूद फ़ीचर, क़ुरबानी जो तारीख बन गई। तहरीर शहज़ादा गुलरेज़ की है।
2: शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीपनाहस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद

0: फैला हुआ बुझती हुई शमओं का धुआं है, आता हुआ हर लम्हा एक अंदेशे जां है, अनफास पे चलती हुई तेगों का गुमां है, सीनों में मगर जश्न चरावां का समां है, होठों पे मुनाजात है, आंखों में सहर है, तारीकी ये इमरोज में फरदा पे नजर है।
1: आवाज की एक शम्मा है परवाने 72, उन्वान है एक और है अफसाने 72, है दिल की कशीद और है पैमाने 72, लैलाए शहादत के हैं दीवाने 72। थे गम की मदारात में मसरूफ खुशतवार, बेदार थे इंसान की किस्मत के निगहदार, जागी हुई आंखों में भी थे सुबह के आसार, 18 जवां हाशमियों

0: अभी आप ये आकाशवाणी रामपुर के आर्काइव में मौजूद फीचर समाप्त कर रहे थे, कुर्बानी जो तारीख बन गई। सदाकार थे सैयद हामिद मियाँ, रईस रामपुरी, जी आर सैयद, जुल्फ़िकार आदिल, शहजादा गुलरेज, अख्तर रिजवी और विनोद आनंद दयाल। तरतीबो पेशकश थी विक्रांत चौधरी की। और अब अपने मेज़बान फरीदुल्ला खान को आकाशवाणी रामपुर के मरकज़ से दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।
1: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। इसमें मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
1: श्रोतों, इस वक्त अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को और हम लेकर हाजिर हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं प्रेम लाल भारती। इनके स्वर में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं देवी गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम, कलाकार थे प्रेमलाल भारती। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। श्रोताओं, अब हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार।

आज जी इस झंकार कार्यक्रम में बहुत प्यारे प्यारे गीतों को लेकर आपके साथ पूरे 1 घंटे का सफर करेगी आपकी रेडियो दोस्त अंजू तिवारी। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की तारीख तो आपको याद ही है, आज है 27 जून। क्या खास है इस तारीख में वो हम आपको बाद में बताएंगे या आप अंदाजा भी लगा लेंगे। आज 27 जून है और आज हम याद कर रहे हैं भारतीय फिल्म संगीत के उस जादूगर को जिसने सुरों को एक नई उड़ान दी, जिसने संगीत को आधुनिकता का रंग दिया और जिसकी धुनें आज भी उतनी ही मुकम्मल हैं, उतनी ही ताजा लगती हैं जितनी उनके अपने समय में थी। कुछ तो अंदाजा आपने लगा ही लिया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार राहुल देव बर्मन की।

जिन्हें हम पंचमदा के नाम से भी जानते हैं। आज होंगी उनके बारे में कुछ बातें और फिर आपको सुनवाएंगे उनके संगीतबद्ध किए हुए कुछ खास गीत, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं इस प्यारे से गीत के साथ, यानी छोटे नवाब का ये गीत।

छोटे नवाब, इस फिल्म का गीत आपने सुना और यही वो फिल्म थी जिससे राहुल देव बर्मन ने स्वतंत्र संगीतकार के रूप में अपने सफर की शुरुआत की। आर डी बर्मन का जन्म 27 जून 1939 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता थे महान संगीतकार सचिन देव बर्मन और माता थी प्रसिद्ध गायिका और गीतकार मीरा देव बर्मन। इसीलिए कहते हैं ना कि संगीत उन्हें विरासत में मिला था। बचपन से ही वो हारमोनियम, तबला और माउथ ऑर्गन जैसे वाद्य यंत्र बजाने लगी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बचपन में जब वो रोते थे तो उनकी आवाज में पा की ध्वनि आती थी, यानी संगीत के पांचवें सुर की। यही कारण था कि अभिनेता अशोक कुमार ने कहा कि ये तो पंचम सुर में रोता है और उन्होंने उसका नाम रख दिया पंचम, और उसके बाद पूरी दुनिया उन्हें पंचम के नाम से जानती थी। आर डी बर्मन ने अपना पहला गीत ए मेरी टोपी पलट के आ तब रचा था जब वो 9 वर्ष के थे, जिसका उपयोग उनके पिता ने 1956 में फिल्म फंटूस में किया था और इसके

0: ఇది టోపి పలటకే.
1: फंटूस फिल्म का ये जो संगीत था उन्होंने तैयार किया था बचपन में, और ये देख के लग गया था कि कुछ तो बात है आर डी बर्मन में, और सभी को ये एहसास हो गया था कि ये लड़का आगे चलकर भारतीय संगीत की दिशा ज़रूर बदल देगा. पंचम दा ने संगीत की शुरुआती शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की थी. उस्ताद अली अकबर खान से इन्होंने सरोद सीखा था, और सामता प्रसाद से तबले का प्रशिक्षण लेने वाले आर डी बर्मन हारमोनिका भी बजाते थे. शुरुआत में उन्होंने अपने पिता के सहायक के रूप में काम किया, और चलती का नाम गाड़ी, कागज के फूल, तेरे घर के सामने, बंदिनी, गाइड, तीन देवियां, ऐसी कई फिल्मों के लिए संगीत तैयार करने में अपने पिता का सहयोग किया. उन्होंने है अपना दिल तो आवारा इस गीत के लिए, इस फिल्म में उन्होंने माउथ ऑर्गन भी बजाया था जिसका संगीत उनके पिता ने तैयार किया था. और इस तरह से अगर देखें तो संगीत बचपन से ही उनके रग रग में समाया था. उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत का भी गहराई से अध्ययन किया था. लैटिन अमेरिकन बीट्स, जैज, रॉक, अरबी संगीत, गोवा के लोक संगीत और बंगाल के लोकगीत, इन सभी को उन्होंने भारतीय फिल्म संगीत में इस तरह से पिरोया जैसे एक नई संगीत शैली बन जाए, और इस तरह से जन्म हुआ एक नई संगीत शैली का.
2: अरे पहले तालियां तो बजाओ. आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं, और गाने में ये कहना चाहता हूं के दुनिया में कुछ रहना हो तो मानो मेरी बात. आओ ट्विट करे का उठा मौसम ले आ.

0: लोग रोना चाहते हो?
1: नहीं।
0: तुम लोग उदास रहना चाहते हो?
1: नहीं।
0: तुम लोग हंसना चाहते हो?

1965 में आई इस फिल्म में आर डी बर्मन ने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, और इसके अलावा उन्होंने एक और फिल्म गुमनाम में भी एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। फिल्म जगत में अगर संगीत की हम बात करते हैं तो इनके आर डी बर्मन की जितनी भी धुनें तैयार हैं उसमें हर तरह की धुनें शामिल थीं, वो चाहे स्लो गाने हों, चाहे सैड सॉन्ग हो, और या फिर मस्ती भरे गाने हों। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने इस तरह के गीतों को रंग दिया। 60 के दशक भारत में पश्चिमी संगीत के बढ़ते प्रभाव का था। उस समय वो दौर था जब पश्चिमी संगीत का लोगों के दिमाग पर असर पड़ा था। पंचमदा ने युवाओं की नब्ज पकड़ी और भारतीय फिल्म संगीत में पहली बार आधुनिक बीट्स को लोकप्रिय बनाया। सन 1966 में निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन ने फिल्म तीसरी मंजिल का संगीत राहुल देव वर्मन को सौंपा। फिल्म रिलीज हुई और इसके साथ ही हिंदी फिल्म संगीत को एक नया सुपरस्टार संगीतकार मिल गया, और इस फिल्म के हर एक गीत ने इतिहास रचा। वो गीत चाहे ओ हसीना जुल्फों वाली हो और या फिर ओ मेरे सोना रे सोना, या और भी जितने भी गीत इस फिल्म में थे, वो सब लोगों की जुबान पर चढ़कर बोलने लगे।

गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान पंचमदा ने लगभग हर वाद्य यंत्र को अलग अलग ट्रैक पर रिकॉर्ड कराया, जो उस दौर में बहुत नया प्रयोग माना जाता था। इसी फिल्म का गीत था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। इस गीत को रिकॉर्ड करने से पहले मोहम्मद रफी साहब ने कई दिनों तक इसकी रिहर्सल की थी और रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद पंचमदा इतने खुश हुए कि उन्होंने रफी साहब के पैर छू लिए और रफी साहब ने मुस्कुराते हुए उन्हें गले से लगा लिया। जीवन में पंचमदा की जितनी भी फिल्में उन्होंने

गीतकार के तौर पे की, हर फिल्म के गीत में उन्होंने कुछ ना कुछ प्रयोग किया था। और ऐसे ही ये जो गीत था अभी आप सुन रही थी, इसी फिल्म में एक गीत था, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। इस फिल्म के गीत को भी रिकॉर्ड करते समय उनको इतना आनंद आया था कि कहते हैं ना कि तीसरी मंजिल उनके दिल के करीब की फिल्म बन गई थी, और ऐसे में लोग उनकी धुनों से प्यार करने लगे थे। फिल्म वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपर्ट की तरह से काम करते थे, हमेशा कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। और इसी तरह खुशबू फिल्म के गीत ओ मेरे ओ माझी रे में फूक की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उन्होंने अलग अलग स्तरों पर भरी सोडा की बोतलों में फूक मार कर उनका इस्तेमाल किया। फिल्म के जो गीत थे उनमें अलग अलग तरह की ध्वनि उन्होंने उत्पन्न की थी। सत्ते पे सत्ता फिल्म की पृष्ठभूमि ध्वनि तैयार करने के लिए, जो प्लेबैक म्यूजिक था उसको तैयार करने के लिए उन्होंने जो एक सिंगर थी एनेट पिंटो, उनसे गरारे करने को कहा था। कई बार लोग परेशानी में आ जाते थे कि ये क्या है, लेकिन फिर भी जब रिजल्ट आता था तो लोगों को बहुत ही अच्छा लगता था। इसी तरह चुरा लिया है तुमने जो दिल को, इस गाने के समय झंझनाहट की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उन्होंने कप और तश्तरियों का उपयोग किया। शोले फिल्म के गीत महबूबा महबूबा की शुरुआती धुन के लिए उन्होंने बियर की बोतलों में फूंक मारी। वो इस तरह से उन्होंने संगीत में हमेशा हर कदम पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया, और जो रिजल्ट आया वो हम सब जानते हैं, हम सब देखते हैं, और तभी तो इतने सारे लोग पंचम दा के फैन हैं।

पंचमदा के संगीत की बात करें तो उसमें भारतीयता भी थी और आधुनिकता भी। शास्त्रीय संगीत की गहराई भी थी और पश्चिमी संगीत की ऊर्जा भी थी। यही कारण था कि उनके गीत हर उम्र के लोगों के दिलों में बस गए। ये गीत जो अभी आप सुन रही थी, इसमें आवाज दी थी किशोर कुमार ने और इसे पर्दे पर जीवंत किया था राजेश खन्ना ने। किशोर कुमार और पंचमदा की जोड़ी हिंदी फिल्म संगीत की सबसे सफल जोड़ियों में गिनी जाती है। दोनों के बीच केवल पेशेवर रिश्ता ही नहीं बल्कि गहरी दोस्ती भी थी। कहा जाता है कि पंचमदा किशोर कुमार की आवाज को ध्यान में रखकर कई गीत तैयार करती थी और साल 1970 का दशक पंचमदा के लिए स्वर्णिम दौर था, जब उन्होंने कटी पतंग, अमर प्रेम, सीता और गीता, कारवां, यादों की बारात, आपकी कसम, शोले, हम किसी से कम नहीं जैसी बहुत सारी सफल फिल्मों में संगीत दिया और उसका संगीत लोगों के सर चढ़कर बोला। उनकी हर धुन में कुछ न कुछ नया सुनाई देता था।

पंचमदा रोजमर्रा की चीजों से भी संगीत निकाल लेते थे। कभी कांच के गिलास, कभी बोतलों की आवाज, कभी कंघी और कभी सांसों की ध्वनि। इन सब का प्रयोग उन्होंने अपने गीतों में बड़ी खूबसूरती से किया और इसी प्रयोग धर्मिता ने उन्हें अपने समय से बहुत आगे का संगीतकार बना दिया। आज भी संगीत प्रेमी उनके गीतों को सुनते हैं, सराहते हैं और कई बार हम देखते हैं कि वो इस तरह का संगीत निकालते हैं जिसके बारे में हम

सोच भी नहीं सकते। देवानंद की फिल्म थी डार्लिंग डार्लिंग, और इस गाने में तीसरे मिनट में खास थाप सुनाई देती थी। और वो आवाज क्या थी पता है? वो आवाज थी, उन्होंने अपने असिस्टेंट को पीठ के बल लिटा दिया था, पेट के बल लिटा दिया था, और बिना शर्ट के, और उनकी पीठ पर अपने हाथों से बजाया था। और वो ध्वनि, हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे किसी गाने में इस तरह की ध्वनि का उपयोग कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन की फिल्म महान थी, उसके एक गाने के अंतरे के बाद उन्होंने एक स्कूल बेल से निकली आवाज का प्रयोग किया, और इसके लिए उन्होंने भरी पानी की एक बाल्टी ली और स्कूल बेल को बजाते हुए उस पर भारी पानी की बाल्टी में डाल दिया, बजती हुई घंटी को। और इसके बाद जो कंपन के साथ आवाज निकली वो इस गाने में साफ पता चलती है। तो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने वाली इस महान जादूगर के हम कितने गाने सुनते हैं जिनको आज भी हमारे युवा, हमारे आज की पीढ़ी के जो बच्चे हैं, उसको एंजॉय करते हैं।

यादों की बारात फिल्म का ये गीत, जिसका ये गाना जबरदस्त हिट हुआ था, और इस गीत की शुरुआत में सुनाई देने वाली गिटार और ग्लास की आवाज आज भी संगीत प्रेमियों को अपनी ओर खींचती है। पंचम दा की अगर बात हम करते हैं और आशा भोसले जी का जिक्र ना हो तो बात शायद कुछ अधूरी रह जाती है। पंचम दा ने आशा जी की आवाज में ऐसे ऐसे गीत रिकॉर्ड किए थे जो आज भी संगीत प्रेमियों की पहली पसंद हैं, और उनके बीच का धीरे धीरे ये पेशेवर रिश्ता जीवन साथी के रिश्ते में बदल गया और वर्ष 1980 में दोनों ने विवाह कर लिया। और दोनों की जोड़ी ने हिंदी फिल्म संगीत को, बॉलीवुड म्यूजिक को ऐसे अनगिनत यादगार गीत दिए जो आज भी हमारी जुबान पर रहते हैं। हर बार उनके गीतों में कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट होता था। एक गीत था कारवां फिल्म का, पिया तू अब तो आ जा। ये अपने समय का एकदम अलग तरीके का गीत था जिसमें शुरू में मोनिका के नाम का जिक्र था, और इस तरह से कई बार उन्होंने अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हुए फिल्मों में गाने बनाए, और ये उनका सौभाग्य था, उनकी हिम्मत थी, उनका जज्बा था कि वो जितने भी एक्सपेरिमेंट करते थे वो सभी एक्सपेरिमेंट हिट हो जाते थे।

पंचम दा ने राजेश खन्ना के लिए 70 के दशक में उनकी बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया था। राजेश खन्ना, किशोर कुमार और आरडी बर्मन, ये तिकड़ी फिल्मों के संगीत की सफलता की गारंटी बन गई थी। आरडी बर्मन ने अपने करियर में बहुत सारे लोकप्रिय गीत दिए, उन्हें कई बार फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हालांकि उनके प्रशंसकों का मानना था कि जितना बड़ा उनका योगदान था उसके मुकाबले उन्हें उतनी शोहरत या उतनी फिल्मी जगत से शायद नहीं उतना मिला, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा पुरस्कार था उनके श्रोताओं का प्रेम, वो तब भी था और वो आज भी है और आगे भी वो इसी तरह से उनके साथ रहेगा।

पंचम दा के संगीत की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने कभी खुद को दोहराया नहीं। हर फिल्म, हर गीत, हर धुन कुछ नया लेकर आती थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत हो, बंगाल का लोक संगीत हो, लैटिन अमेरिकन रिदम हो, जैज, रॉक या फिर इलेक्ट्रॉनिक साउंड, हर शैली को उन्होंने अपने संगीत में पिरोया।

0: ¡Bonito!
1: ¿Cómo va a quedar?

कई फिल्मों में बहुत सारे प्रयोग के साथ साथ ऐसे सैड सॉन्ग भी बनाए जो लोगों के दिलों में आज भी बसे हुए हैं। हालांकि उनके गीतों की श्रृंखला इतनी लंबी है कि उन्हें एक प्रोग्राम में समेट पाना हम सब के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। फिर भी कोशिश ये होती है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा गीतों को हम अपने प्रोग्राम में समाहित कर सकें। गुलजार के शब्दों को उन्होंने इतने अच्छे से अपने संगीत में पिरोया इजाज़त फिल्म के लिए मेरा कुछ सामान, इसी तरह से शोले फिल्म के गीत को उन्होंने इतने अच्छे से संगीतबद्ध किया था कि शोले फिल्म आज भी लोगों के जहन में बसी हुई है। उसका एक गाना था महबूबा महबूबा, इसमें उन्होंने अपनी आवाज़ दी थी।

0: గారే గారే
1: గరబడే
0: గారే గారే
1: ఏ సూర బదల
0: గారే గారే
1: ఏ అమ్మక పట్ల
0: గారే గారే
1: ఏ సూర కిదరది ఏ సూర ఇన్నాయా ఇదు
2: శాస్త్రీయతా కి సాథ్ హీ యే జో ఫన్ కా तड़का था ये इस गीत में पूरा दिखाई देता है, सुनाई देता है। जब सबको लगने लगा था कि पंचमदा का दौर अब समाप्त हो चुका है, तभी उनके जीवन में एक फिल्म आई, 1942 अ लव स्टोरी। इस फिल्म का संगीत उन्होंने पूरे मन से तैयार किया था। दुर्भाग्य से इस फिल्म की सफलता को देखने के लिए वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो हर गीत सुपरहिट साबित हुआ। लोगों ने यहां ही कहा कि पंचमदा आखिरी दम तक पंचमदा ही रहे। इस गीत ने हिंदी सिनेमा जगत पर एक अलग ही छाप छोड़ी। फिल्म कुछ ना कहो के गीत में उन्होंने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया अपने गीतों के माध्यम से। लंबे समय तक हृदय संबंधी समस्याओं से जूझने के बाद 4 जनवरी 1994 को मुंबई में पंचमदा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वे सिर्फ 54 वर्ष के थे। उनके जाने से भारतीय संगीत में एक ऐसा खालीपन आया जिसे आज तक कोई पूरी तरह नहीं भर पाया। लेकिन कलाकार कभी भी अपने शरीर से नहीं रहता, वो जीवित रहता है अपनी कला से, और इस तरह से पंचमदा आज भी जीवित है। हर रेडियो, हर महफिल, हर संगीत प्रेमी के दिल में वो जिंदा है। उनके निधन के बाद 1942 अ लव स्टोरी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मरणोपांत मिला। ये सम्मान केवल एक पुरस्कार नहीं था, बल्कि भारतीय संगीत जगत की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि थी। कहते हैं ना, संगीत कभी भी नहीं मरता, संगीत की कोई उम्र नहीं होती, और कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो अनमोल होती हैं और लोगों के दिल में बस जाती हैं, कभी पुरानी नहीं होती। राहुल देव बर्मन यानी हमारे पंचमदा एक ऐसे ही संगीतकार थे। उन्होंने केवल गीत नहीं बनाए, उन्होंने भावनाओं को सुर दिए, खामोशियों को आवाज दी और भारतीय फिल्म संगीत को एक नई पहचान दी। आज उनके जन्मदिवस पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके अमूल्य संगीत को नमन करते हैं। और आज के प्रोग्राम का ये आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं, और इसके साथ ही अपनी रेडियो दोस्त अंजू तिवारी को प्रोग्राम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रही थी फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश अब नए अवतार में, यानी फिर एक बार मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। जी हाँ, डीडी फ्री डिश में अब हैं 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, 51 एजुकेशनल यानी शैक्षिक चैनल्स, साथ ही 48 रेडियो चैनल्स भी। बस एक बार सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई मासिक या अतिरिक्त खर्च नहीं। डिजिटल क्रांति की दिशा में एक और कदम बढ़ाइए, डीडी फ्री डिश घर लाइए। जी हाँ, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर डीडी फ्री डिश का नया अवतार, यानी मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार।
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम। आज की प्रस्तुति है अरुण पांडे की।

0: इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का।
1: एक्सक्यूज मी,
2: हाँ बोलना।
3: क्यूट है ना?
0: और श्रोताओ, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार।
4: सलाम।
5: आपकी कॉल होल्ड पर है।
0: आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-10-52 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
6: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, स्वागत है प्रोग्राम में आपका।
6: मैं चंदूपुरा वाला राहुल कुमार बोल रहा
0: हूँ। राहुल कुमार जी, आपसे ही प्रोग्राम का आगाज हो रहा है तो बहुत बधाई मुबारकबाद कि आज आपका फोन लग गया।
6: जी सर।
0: और अब किस चीज जी जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रयास करते रहते हैं। आपके साथ साथ बहुत सारे श्रोता प्रयास करते रहते हैं।
6: जी
0: सर। ये इस प्रोग्राम की मकबूलियत है। कितने वर्षों से हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम से जुड़े हैं आप?
6: जी सर, 1985 से।
0: क्या बात है, तब तो आप

0: अच्छा, 1985 में आकाशवाणी तो था, लेकिन ये फोन इन प्रोग्राम शुरू नहीं हुए थे।
1: हाँ जी, मतलब कि प्रोग्राम और भी सुन रहे थे ना सर।
0: बचपन से सुन रहे हैं यानी कि। जी जी, और अब हमारे दरअसल जितने भी पुराने हमारे श्रोता हैं आपकी तरह के, वो सभी जैसे हम सब भी घर में परिवार में रेडियो हुआ करता था और उसे सुनते सुनते हम लोग बड़े हुए हैं।
1: जी सर।
0: कौन सा गाना सुनवा दे राहुल जी आज आपको?
1: मुझे गाना सुना दीजिए कयामत फिल्म का।
0: जी,
1: तो लड़की बड़ी याद आती है।
0: क्या कहने, हालांकि गर्मियों का मौसम है और इस समय आदमी गर्मी से इतना परेशान रहता है कि बहुत सारी बातें याद नहीं आती हैं, अब सिर्फ याद आता है कि बारिश आ जाए।
1: जी सर, रात में भी थोड़ा बहुत हुआ था।
0: हाँ, बूंदाबांदी तो हो रही है रह रह करके, लेकिन मुकम्मल बारिश का इंतजार है, वक्त तो होने ही वाला है बरसात आने का। वो लड़की बहुत याद आती है, गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो भैया जी को प्रणाम।
0: जी प्रणाम, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार।
1: नमस्कार अरुण भैया जी, प्रणाम।
0: प्रणाम, नाम क्या है आपका?
1: मैं कोदवा सागर छत्तीसगढ़ से राम गुप्ता बोलूँ भैया।
0: स्वागत है, और आज शुरुआत में ही आपका फोन लग गया, तो आज मेहनत बहुत ज्यादा नहीं हुई।
1: छह सात महीने बाद लगा फोन मेरा।
0: जी जी, तो स्वागत है। हम ये कह रहे हैं कि आज शुरुआत में ही कॉल लग गया, तो इससे ये राहत ये है कि बहुत देर तक आपको प्रयास नहीं करना पड़ा। मौसम कैसा है आपके इलाके में?
1: मौसम थोड़ा धूप निकला हुआ, अभी सुबह शाम को हल्का बदली रहता है, पानी पर गिरा नहीं है।
0: हाँ, बारिश का इंतजार है। तो आपका कारोबार काम काज किस चीज का है अभी?
1: मैं तीर्थ यात्रा काम करता हूँ, वही अभी बनाया हूँ फिर प्रोग्राम।
0: जी जी,
1: अभी 3 तारीख को आया हूँ मथुरा वृंदावन और अपना बनारस।
0: अच्छा, आपसे हमारी एक बार बात हुई थी, आप तीर्थ यात्राएं कराते हैं?
1: हाँ भैया, कम से कम करीब सात आठ महीना पहले बात हुई थी।
0: बहुत बढ़िया, हमें याद है। देखिए, श्रोताओं की भी बहुत सारी बातें हमें याद रहती हैं, और आप तो बड़ा पुण्य का काम करते हैं।
1: आप परिवार बन गए भैया, तो याद तो रहता ही ना।
0: जी जी बिल्कुल। तो इधर कहाँ कहाँ गए आप?
1: अभी तो ऊपर केदारनाथ बद्रीनाथ और नेपाल मनोकामना था, सीतामढ़ी था और अपना जनकपुर भी था।
0: जी बिल्कुल, ये जो गर्मी का मौसम, गर्मी इतनी तेज है कि थोड़ा सा ठंडे इलाकों वाली तीर्थ यात्राएं इस समय सहूलियत वाली होती हैं।
1: हाँ भैया।
0: और जैसे ही मौसम ठीक होगा फिर आप उत्तर भारत के काशी अयोध्या इन जगहों पर भी आप आएंगे जाएंगे।
1: हाँ भैया, अभी सितम्बर फिर है ना मेरा गया जी प्रोग्राम के साथ बनारस भी है।
0: तो कितने वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं आप?
1: मैं भैया करीब मेरे को तो 15-20 साल हो गए करते।
0: बहुत बढ़िया, आप तो आपकी प्रसिद्धि हो गई होगी इस क्षेत्र में।
1: हाँ, बहुत परिचय तो हो गया, अभी बहुत लोग जानते भी हैं, कुछ
0: जी,
1: कुछ नया भी चालू हो गया।
0: ये सब काम काज ऐसा है कि इसमें भरोसे से अगर आप 2-4 यात्राएं करा लीजिए और किसी पे लोगों का विश्वास आप पर जमा रहे तो ठीक ठाक चल रहा है ये। हाँ, सब ईश्वर की कृपा है।
1: हाँ भैया,
0: कौन सा गीत आज सुनवा दें आपको?
1: आज प्रोफेसर का सुना दो भैया। तेरे सिवा न किसी का बनूंगा रफी, और आशा जी की आवाज में है
0: जी।
1: गीत को लिखा है राजन कृष्ण, संगीत को दिया प्रोफेसर प्यारे लाल।
0: हाँ ये है, क्योंकि प्रोफेसर अलग है, उसमें शंकर जयकिशन का संगीत है, और ये हाँ, प्रोफेसर प्यारे लाल अलग है।
1: इसमें कल्याण जी आनंद जी की संगीत है और धर्मेंद्र जीना तमान का।

0: मैं।
1: बिल्कुल, बोल आपने बताया तेरे सिवा, ये वादा वाला आपको गीत सुनना है। और
0: क्या भी है शुरुआत में ये बोल शब्द ना, तेरे सिवा ना किसी का बनूंगा।
1: जी जी बिल्कुल, तो ये गीत आप तक पहुंच रहा है, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, नाम बताइए अपना।
1: अवधेश यादव सर जी नमस्ते।
0: नमस्ते, फोन लग गया आपका, बधाई आपको।
1: नमस्ते सर, बहुत दिन 25 साल से मैं आज ट्राई कर रहा था।
0: तो इस 25 साल में बीच में भी तो लगा होगा ना
1: सर? नहीं लगा था, एक बार लगा था सर, चल गया था।
0: ओह, यानी 25 वर्षों में आपका पहली बार लगा है।
1: जी जी सर।
0: चलिए, सिल्वर जुबली की प्रतीक्षा रही आपकी। तो बहुत सारी, तब तो 25 वर्षों की तपस्या एक तरह से आपकी हो गई।
1: जी जी
0: जी जी, मेहरबानी हम लोग की नहीं है, हम लोग तो चाहते हैं कि नए नए श्रोता जुड़े और इतना ज्यादा इंतजार न करना पड़े, बड़ा तवील इंतजार हो गया।
1: आपके फेसबुक पर सर मैंने कमेंट भी किया, आप जो कि आप रिप्लाई भी दिए।
0: जी जी बिल्कुल,
1: मुझे बहुत सारा अच्छा लगा जो आप कहानी कहते हैं, सबसे बात कर बहुत अच्छा लगता था।
0: जी जी, हमारी कोशिश होती है कि श्रोताओं से नजदीकी जितना हो, क्योंकि हम सब और हमारे प्रोग्राम आप सभी श्रोताओं के लिए हैं और आपके ही द्वारा हैं।
1: नहीं नहीं सर।
0: तो अपने बारे में कुछ बताइए
1: सर। क्या बताऊं, 50 से बात करके तो बहुत खुशी मिल रही है।
0: हाँ, और कौन सी जगह से आप बात कर रहे हैं आपने बताया?
1: सर आजमगढ़ जिला से।
0: आजमगढ़ में हैं, तब तो मौसम वैसा ही होगा जैसा हमारे वाराणसी में है।
1: जी जी सर, जी सर।
0: और कारोबार किस चीज का है, काम काज आपका?
1: सर 11 मासिक हम लोग काम करते हैं सर।
0: जी जी, और प्रोग्राम हमारे सुनते हैं, अच्छे लगते हैं आपको?
1: हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है, आप कार्यक्रम में रहते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम।
0: बहुत शुक्रिया। कौन सा गीत आज सुनवा दें आपको
1: सर, अपने पसंद का गीत सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा।
0: नहीं नहीं, देखिए 25 वर्षों में आपने इतनी मेहनत की और फोन आज लगा है, तो गीत कोई आप बता दीजिए।
1: नहीं सर, आप तो हमने सुनता आप सर, हेलो फरमाइश कार्यक्रम जो समय तो सुनता, जो सर आप सुनाते बहुत अच्छा लगता है, आज से 25 वर्ष सर आपकी सुनेंगे, बहुत अच्छा सुनाएंगे सर।
0: जी जी, तो जैसे कोई गीत आप बता देते तो हमारे लिए भी बड़ी पशुपेश है कि आपको कौन सा गीत सुनवाया जाए।
1: सर आप क्या बताएं सर, सोच के रखा था तो बात हो गई, सारा कुछ भूल गए।
0: तो किस तरह की फिल्में या गाने पसंद हैं आपको?
1: सर हिंदी गाना पुराना जो है मुझे पसंद है।
0: जी जी, तो आइए गीत आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी पसंद पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: नमस्ते सर।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फोन इन फरमाइश सर जी को नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद सर। केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सर, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: जी जी, हम लोग भी चाहते हैं जैसी हम लोग के स्टूडियो से आवाज़ आती है ना केसरी जी, वैसी आवाज़ हमारे श्रोताओं की भी आए, लेकिन कई जगह नेटवर्क वगैरह की दिक्कत होती है तो आवाज़ वैसी अच्छी नहीं आ पाती।
1: हाँ जी
0: सर। और अब जब से ये मोबाइल आ गया थोड़ा सा आवाज नेटवर्क वाइज एरिया वाइज फर्क हो जाता है। तो
1: हाँ,
0: कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। आपके यहाँ बारिश वगैरह का कुछ इम्कान है या शुरुआत हुई कि नहीं?
1: हाँ सर, शुरुआत तो हो गई है, अब सोयाबीन की बोनी चल रही है।
0: जी जी,
1: और बढ़िया मौसम है, गर्मी से निजात भी मिल गई है।
0: आपके यहाँ सोयाबीन वगैरह की ये जो नकदी फसलें हैं वो होती हैं? क्योंकि हम लोग के इलाके में इधर तो जैसे गेहूं, धान, चना, अरहर, ये चीजें ज्यादा हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से खेती बाड़ी होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, धान तो सर हमारे इधर भी बुआई होती है अभी।
0: अब तो प्रायः जैसे सिंचाई की व्यवस्था हर जगह हो गई है तो खेती भी वर्ष भर बहुत सारी चीजों की, खासतौर से सब्जियों की, तो होते रहती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: और कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं, कौन सा गीत आज सुनवाए आपको?
1: आज सर सुनवा दीजिएगा आप, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: आप तो ऐसे न थे।
1: जी सर, जी सर। और बताना चाहेंगे सर, एक आध महीने पहले आपके इधर आना हुआ था।
0: जी जी,
1: विद फैमिली से, तो बहुत अच्छा लगा था सर। वाराणसी की जो गलियां हैं वो आज भी दिमाग में झूलती हैं।
0: जी जी, हमारा शहर ही है बनारस, गलियों, मंदिरों, घाटों के लिए प्रसिद्ध है।
1: जी जी जी, वहाँ स्नान भी किए, बहुत अच्छा लगा सर, और भोले बाबा के दर्शन हुए, तो यूँ समझ लीजिए जीवन धन्य हो गया।
0: बिल्कुल, तो आप आए, अत्यंत हर्ष का विषय है ये। ये गीत रफी साहब और मनहर दोनों की आवाजों में, कौन सी आवाज में सुनना है आपको?
1: रफी जी की आवाज में सुनवा दीजिए।
0: जी, गीत आपको सुनवा रहे हैं, उषा खन्ना का संगीत है और निदा फाजली मशहूर शायर हुए, उन्होंने इसे लिखा है। नमस्कार, शुक्रिया।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश
1: जी। चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से राम सकल चौधरी बोल रहा हूं।
0: स्वागत है राम सकल जी, अब हमारे आप हर तरह से नियमित श्रोता हो गए हैं
1: जी। बहुत ही भाग्यशाली
0: हो गए। हाँ तो खुशी की बात है, गर्मी बहुत तेज है और हर साल जैसे इस समय तक जब ये 20-25 तारीख के लगभग है जून का, अब तक मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाता है, इस बार गर्मी देर से आई और देर तक बनी हुई है
1: जी। बहुत उमस है गर्मी, तो पछुआ हवा बह रहा है सर इधर
0: जी जी,
1: बिल्कुल ठंडा सा हल्का है सर।
0: हाँ हालांकि आप थोड़ा सा नदी के किनारे भी हैं ना, और हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग शहर में हैं तो शहरों में तो इतने मकान और सड़कें हैं कि हरियाली थोड़ी सी कम हो गई है पहले के बनिस्बत
1: जी। सर और बताइए आप लोग कैसे, आकाशवाणी परिवार के लोग कैसे?
0: जी सभी लोग अच्छे से हैं और आपका वर्षों का साथ और शुभकामनाएं हैं तो अच्छे से होना भी चाहिए
1: जी सर। और जो अगले बार जो योग के बारे में जो बात कर हम नहीं ध्यान दे पाए सर जी, योग तो माला तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है
0: जी जी
1: जी। हम तो माला सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और कम से कम एक घंटा योगा करते हैं सर।
0: बहुत बढ़िया, देखिए योग दिवस तो हम मनाते हैं जरूर 21 जून को, लेकिन योग का जीवन में तो अनवरत महत्व है और प्रतिदिन हमें योग करना चाहिए। और गीत कौन सा सुनेंगे आप
1: जी सर? ऐसा है कि आकाश रेडियो पर मीडियम में तो जो बजता है ना आपका प्रोग्राम
0: जी,
1: सनसनाहट ज्यादा आ रही है और कट कर कर आवाज कभी कभी आ रही है सर
0: जी जी। हम लोग भी देख रहे हैं कि ऐसी दिक्कत ना आए, कुछ इलाकों में या मौसम के कारण भी ऐसा होता है। तो कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: बारिश तो नहीं हो रही है, आज तालका फिल्म का सुना दिए सर
0: जी।
1: तो गाना है ना मेरे छतरी के नीचे आ जा, गाने के बोल सर।
0: बिल्कुल, और बारिश आएगी तो छतरी यानी छाते का महत्व तो बढ़ जाएगा। मोहम्मद अजीज, अनु मलिक और सुदेश भोसले की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है, अनु मलिक का संगीत है। गीत सुनते हैं राम सकल जी, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

சலமா.

0: ए बाबा सुबह का वक्त है, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा।
1: भैया दो पैसे हमको दे दे, पांच पैसे हमसे ले ले।
2: अरे ये लेने देने का चक्कर है बाबा, बीवी तू भी कुछ हमको दे दे।

0: भाग्या छल्ले दिखाए बिना लल्ला भाग्या रे।
1: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
2: जी सर नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: कोटवा बनारस से मोती मंसारी बात कर रहा हूँ।
1: बिल्कुल, आपका भी अंदाजे बयां, हम लोग भी वर्षों से देख रहे हैं, अब बिल्कुल तय हो गया है कि ये मोहसिन जी की आवाज है।
2: और बावन वाले में कब से रिंग जा रहा है, उठ नहीं रहा है।
1: नहीं उठा रहे हैं तो उसमें आवाज नहीं आ रही है,
2: इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना पचास वाले
1: में। बिल्कुल उसमें ट्राई करना चाहिए, दोनों ही नंबर हमारे हैं और जब प्राथमिकता हम लोग बावन को ही देते हैं, लेकिन जब उस पे अगर कभी तकनीकी वजह से आवाज नहीं आती या कोई और दिक्कत होती है तो इस पर रिकॉर्डिंग हो जाती है।
2: क्योंकि हम लोगों को जानकारी है ना कि जब वो काम नहीं करता तो इससे होती है।
1: बिल्कुल, कोई न कोई हो जिसके चलते काम हमारा पूरा हो जाए, वक्त पर हो जाए, क्योंकि आकाशवाणी में हम लोग की रिकॉर्डिंग और कामकाज में समय का तो बड़ा महत्व है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और बताएं कैसे हैं आप?
1: हम लोग अच्छे से हैं, आप बताइए, सुनना तो आपसे हमें है।
2: हम तो बहुत ही मस्त है, जगह जगह गर्मी का आनंद ले रहे हैं।
1: अच्छा, ये जो गर्मी की चीज आइसक्रीम वगैरह आप पसंद करते हैं?
2: जी आइसक्रीम वगैरह तो बहुत, स्प्रिंग वगैरह बहुत पीते हैं।
1: हाँ मतलब कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम ये सब।
2: हाँ, गर्मी का अपना ही मजा है।
1: हाँ हाँ हाँ, क्योंकि एक समय के साथ थोड़ा सा उम्र बढ़ती है तो सेहत को लेकर थोड़ी सी चीजें हो जाती हैं और हम लोग को तो सर्द गर्म का ख्याल रखना पड़ता है। भरसक हो कि सर्दी जुकाम से आदमी बचे, इसलिए ठंड वाली चीजों से थोड़ा सा परहेज से आदमी ठीक ठाक रहता है।
2: नहीं हम

0: भी हैं कि जब धूप से आते हैं तो तुरंत ठंडा पानी या कुछ भी नहीं पीते, पहले हवा का प्रयोग करते हैं
1: जी जी,
0: थोड़ा सा हवा लेने के बाद उसके बाद कुछ खाते पीते हैं।
1: जी जी बिल्कुल। अब कौन सा, आप लोग तो हमारे इतने पुराने आरजे हो गए हैं बिल्कुल रेडियो पर बात करते करते।
0: जी जी, आरजे तो नहीं है, अभी फिलहाल सोता ही है।
1: और बहुत से जो आरजे आए हैं उनके प्रोग्राम आप देख रहे हैं?
0: देखिए बहुत ही अच्छा लगता है मुझे
1: देख करके
0: और सुन करके और मैसेज अपना सुन करके।
1: ये तो है कि सोशल मीडिया ने इंस्टेंट जो है श्रोताओं को जोड़ दिया है।
0: बिल्कुल,
1: और
0: बिल्कुल,
1: पहले एक समय था कि वर्षों श्रोता इंतजार करते थे, और हम लोग भी जब रेडियो सुनते थे तो ये मन में कल्पना करते थे कि ये जो बोल रहे हैं अनाउंसर वो आरजे तो होते ही नहीं थे, जो अनाउंसर न्यूज रीडर पढ़ रहे हैं बोल रहे हैं वो देखने में कैसे होंगे।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अब ये चीजें आसान हो गई हैं कि जो बोल रहा है या गाना गा रहा है वो देखने में कैसा है आजकल आप तुरंत देख सकते हैं।
0: कुछ दिन पहले रेडियो दिवस था तो मेरा कॉल तो उस दिन नहीं लग पाया।
1: जी जी,
0: आज मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं रेडियो कब लाया था। 2012 में मैं लाया था, FM रेडियो बोलते थे उसको।
1: जी जी,
0: 600 का लेकर आया था। उसी में आपका प्रोग्राम हेलो फरमाए SMS के बहाने के तरह यही सब सुन रहे थे।
1: जी जी जी जी,
0: मगर सुनते सुनते बीच में आइडिया आया क्यों ना मैं कॉल कर। तो उसके बाद जुड़ा, तभी तक जुड़ा।
1: बिल्कुल, हमेशा जुड़े रहिए। आज कौन सा गीत सुनेंगे ये भी हमें बता दीजिए।
0: भगवान दादा का एक गीत है, उसमें गीत तो मैं भूल रहा हूँ, आप बता दीजिए, थोड़ा मेहरबानी होगी।
1: आया प्यार का जमाना, चुग गई चिड़िया टाइप का ही गाना आप सुनेंगे लगता है।
0: आया प्यार का जमाना, यही गाना मशहूर गाना है।
1: और नहीं तो देखिए बड़ा उसमें कई अजीब तरह के गाने हैं। मुझे प्यार हो चला तो ठीक है, एक सुपर फास्ट लव है और एक तुझसे पहले।
0: बहुत अच्छी अच्छी कड़ी उसमें।
1: हाँ, भगवान दादा एक बड़ी चर्चित फिल्म थी अपने समय की।
0: मूवी भी मैंने देखा है, मूवी
1: जी
0: भी
1: जी
0: है।
1: आया आया प्यार का जमाना, मोहम्मद अजीज और आशा भोसले की आवाजें हैं, फारूक कैसर ने इसे लिखा है, राजेश रोशन का संगीत है। और आप क्या कह रहे हैं?
0: कुछ श्रोताओं को याद कर लेते हैं। आपके यहाँ जिसने वाराणसी वाइस प्रोग्राम पेश करते हैं
1: जी, उन्हें याद करिएगा।
0: निविता जी हैं, उनको याद नहीं कि उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके प्रोग्राम, उनको धन्यवाद।
1: थोड़ा पत्रोत्तर में लिखिए, पत्रोत्तर में आप किसी को भी धन्यवाद दे सकते हैं।
0: ओके, तो श्रोताओं को याद कर लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे शकील अहमद अंसारी है बजटिया से, और हमारे कुछ दोस्त है सरताज अंसारी, सद्दाम अंसारी, शाहिद अंसारी, मुश्ताक अंसारी, मुदस्सिर अंसारी, और कानपुर से पूनम कुमारी जी और आलिया खान शाहजहांपुर से।
1: बिल्कुल, आपको और आपके तमाम इन रेडियो मित्रों को हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत, फिल्म है भगवान दादा। शुक्रिया मोहसिन।

0: श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:10 से 10:50 के बीच। फोन नंबर हमारा है 2221052 यानी 222-1052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। और ये प्रोग्राम शनिवार को दिन में 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे तक प्रसारित होता है। तो आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आज इस कार्यक्रम में आपने फोन किया। अब अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। अपने दोस्त अरुण पांडे को नमस्कार।
1: रात है नशीली।

0: 4 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।
1: से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। केवल काली पुतली का दान, ज्योतिदान, नेत्रदान को परिवार की परंपरा बनाएं, नेत्रदान का संकल्प आज ही लें। ज्योति वो अमूल्य उपहार है जो आप ही दे सकते हैं। दृष्टि के आनंद को बांटिए, जीवन जीते रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान, नेत्रदान महादान। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, मृतक देह कुछ नहीं खोती, नेत्रदान से मिले ज्योति। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं कहकशां कार्यक्रम, जो होता है गैर फिल्मी गीत और गज़लों का। आज के इस कार्यक्रम के साथ उपस्थित है आपका रेडियो दोस्त सिद्धार्थ। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। आज की प्रस्तुति थी अरुण पांडे की। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, मीडियम वेव 241.5।

श्रोताओं, कार्यक्रम कहकशां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर। तलत अजीज़ की आवाज़ प्रोग्राम की पहली पेशकश आपने सुनी, उसके बाद आइए सुनते हैं अगली गज़ल।

गजल का साज उठाओ, बड़ी उदास है रात। जगजीत सिंह की आवाज़ अभी आपने सुनी, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं कहकशां कार्यक्रम की अगली पेशकश।

लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज़ ये थी। कार्यक्रम कहकशां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1,242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आपके लिए उपलब्ध हैं। DTH DRM 1,233 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT पर 12:14 और 35 सेकेंड।

श्रोताओं, मिताली सिंह की आवाज़ थी। कहकशां कार्यक्रम में इस गज़ल को आप सुन रहे थे, और अब अनु चिलोटा की आवाज़।

शो तो अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा की आवाज़ कहकशां कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश थी, और इसी रचना के साथ ही आज का कहकशां कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके रेडियो दोस्त सिद्धार्थ को यहीं दे अनुमति, नमस्कार। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

0: जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।
1: हम गवन मना ही
2: मीडियम वेव 240.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज, डीटीएच डीआरए में 1233 किलोहर्ट्ज, न्यूज़ ऑन एयर ऐप और वेव्स ओटीटी पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 12:30 और 2 सेकेंड आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं लोकेश शुक्ला, इनके स्वर में आइए सुनते हैं भजन। सबसे पहले सूरदास की ये रचना आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
0: 0542227658।

प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोकगीत व्हाट्सएप के

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का, आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। आज के कलाकार हैं लोकेश शुक्ला। आपने कार्यक्रम के आरंभ में सुना सूरदास की रचना, और अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं तुलसीदास की रचना, स्वर लोकेश शुक्ला।

श्रोतम, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार थे लोकेश शुक्ला। कार्यक्रम के अंत में आपने सुना तुलसीदास की रचना, और इसी रचना के साथ ही आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज के कलाकार लोकेश शुक्ला थे। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। हम आपके लिए उपलब्ध हैं DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT पर भी। 12:45 और 42 सेकेंड। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बांसुरी वादन। राग है वृंदावनी सारंग। कलाकार हैं डॉक्टर शनीश कुमार ग्यावली। आपके साथ तबला संगति पंकज राय की है।

0: संपन्न होता है। दिन का एक बजा चाहता है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हिंदी में, रिले किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचार की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध है, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
3: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में

श्रोताओं, भी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में बांसुरी वादन सुन रहे थे। ये कलाकार थे डॉक्टर शनीश कुमार क्यावली। राग था वृंदावनी सारंग और आपके साथ तबला संगति पंकज राय की थी। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं और आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। सबसे पहले खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं आपको हम दे दें। ये पहली सूचना हमें मिली है गजराज सोनकर गज्जन, पिता स्वर्गीय हजारी सोनकर, इनके बारे में लापता होने की सूचना। गजराज सोनकर की उम्र है 56 वर्ष और लंबाई है 4 फीट 9 इंच लगभग। रंग इनका सांवला है और पहनावा नीले रंग की चेक शर्ट, काला लोअर, पीला गमछा और साथ में चप्पल पहने हैं। इनके बारे में सूचना हमें प्राप्त हुई है सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी से। ये दिनांक 15/6/2025 सुबह 4 बजे से घर से कहीं चले गए हैं और घर वापस नहीं आए हैं। जिनको भी इनके बारे में कोई सूचना प्राप्त हो वो कृपया मोबाइल नंबर 9026361781-7893853223 इस नंबर पर कृपया संपर्क करें या आप सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एक बार फिर से नोट कर लें 9026361781 और 7839853223। एक और सूचना हमें प्राप्त हुई है

श्रोताओं, थाना लंका से ये सूचना हमें प्राप्त हुई है। सूचना अनुसार मुस्कान, उम्र 18 वर्ष, रंग सांवला, कद 5 फीट 3 इंच, पहचान नीला इनका सूट ये पहने हुए हैं। 24/6/2025 से ये लापता हैं। लंका बीएचयू वाराणसी से सुबह घर से स्कूल फाइल लेने के लिए निकली थीं और अब तक घर वापस नहीं लौटी हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना यदि आपके पास हो तो थाना लंका को सूचित किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे खोई व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब हम आपको आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। जिन कार्यक्रमों को आप सुनेंगे आज की हमारी सभा में, शाम 5:10 पर प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम आप सुनेंगे, रिले किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। साथ ही रात 10 से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये कार्यक्रम भी दिल्ली केंद्र से ही रिले किया जाएगा। अंजुमन गैर फिल्मी गीत और गज़लों का कार्यक्रम रात 9:30 पर सुना जा सकता है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 आरजू बानो कलाकार होंगी। स्वरबेला में शाम 7:31 पर आप सुनेंगे हरे राम मिश्रा का काव्य पाठ। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के विषय पर विनोद कुमार यादव से दिलीप यादव की बातचीत के अलावा प्रेमलाल भारती के स्वर में लोकगीत का भी आनंद उठा सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:30 पर युवा साथी आज की बात, यूथ जंक्शन, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत सुनेंगे। गीतांजलि कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा दिन में 2:30 का और प्रेमलाल भारती के स्वर में लोकगीत आप सुनेंगे दिन में 1:45 पर भी लोक संगीत के कार्यक्रम में। अंगनैया कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर ग्रामीण बहनें महिलाओं के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता विषय पर डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव से मनु सिंह की बातचीत के अलावा गीत संगीत का भी आनंद उठा सकती हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 1:10 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें, रिले किया जाएगा हमारे

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव मीडियम वेव 366....
1: ये आकाश है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आज़ाद भारत में हुकूमतों से अपील की थी कि इक्तसादी तरक्की के लिए सबसे नीचे पायदान पर बैठे शख्स के मफादात को जहन में रखकर पॉलिसियाँ बनाई जानी चाहिए।
2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रखकर के बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य आदर्श ये संस्कार समाहित हो सके इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
1: अयोध्या में श्रीराम मंदिर अतिया और चढ़ावा के मामले में मुबैना बेजाबतगियों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार तमाम 8 मुलजमीन को कल स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तमाम मुलजमीन को 29 जून तक जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। गिरफ्तार मुलजमीन में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर तश्कील दी गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की सिफारिश के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक रुकन कृष्ण मोहन की तरफ से श्री राम मंदिर में अतियात और चढ़ावे के मुबैना गबन के सिलसिले में FIR दर्ज कराई गई थी। मुलजमीन की गिरफ्तारी के बाद प्रोसिक्यूशन अफसर KC वर्मा ने बताया कि सुभाष को छोड़कर कुल 79,85,000 रुपये मुलजमीन से बरामद हुए हैं। मुलजमीन को 29 जून को इंसदादे बदउनवानी की अदालत में पेश किया जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने FIR के इंदराज और श्रीराम मंदिर के अतिया केस में 8 मुलजमीन की गिरफ्तारी के बाद कहा कि अकीदे के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि SIT की रिपोर्ट मौसूल होते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल देवरिया में 465 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत के 106 तरक्याती प्रोजेक्टों के अफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब के दौरान आवाम से खिताब करते हुए वजीर आला ने देवरिया में तरक्की पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रियासत के नौजवान जो पहले मुलाजमतों के लिए हिजरत करते थे अब अपनी सलाहियतों और तवानाई को अपने इलाके में दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में महफूज माहौल की वजह से सरमायाकारी आ रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में एक प्राइवेट एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर सर्विस आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को मुल्क में नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में 120 मिलियन से ज्यादा लोग मुफ्त सेहत की खिदमत हासिल कर रहे हैं।
2: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
1: तिब्बी और सेहत के शोबों में मौजूदा हुकूमत की तरक्की का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बना रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासत में पंचायत इंतखाबात में ताखीर और प्रधानों का मुद्दत कार बढ़ाने वाले हुक्म पर नाराज़गी जाहिर करते हुए रियासती हुकूमत को तफसीली हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि पंचायतों का मुद्दत कार 5 बरस के लिए होता है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले आइंदा इंतखाबात हो जाने चाहिए। ये तबसरा जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर के रिट पर समाप्त करते हुए किया। रिट में रियासती हुकूमत

के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन अहकाम को चैलेंज किया गया है जिसके तहत उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1947 की दफा 12(3)(a) का हवाला देकर इंतखाबात टाल दिए गए और प्रधानों को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम जारी रखने की इजाज़त दी गई। रियासत में शदीद गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून कल रात से मशरक़ी उत्तर प्रदेश के कई अज़ला में दाखिल हो जाएगा। इसके बाद 30 जून से 3 से 4 दिनों तक रियासत भर में गरज चमक के साथ बड़े पैमाने पर बारिश मुतवक्के है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम अंगनैया।

0: अंगने ये कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन लोग नमस्ते, असाथे में लाजो बहनी तहु की नमस्ते।
1: नमस्ते चंपा दीदी, असाथे में देखा आपन कार्यक्रम सुनने वाले भी सब बहनी लोगन के हमारे नमस्ते।
0: ये लाजो बहन।
1: हाँ दीदी,
0: देखो तुम बहरे कितना तेज घाम लगत हला हो, देखा पहन ओढ़ के तायल ही गमछू कपाले पर रख ली, जैसे तब्बो पर भी लगत ना जैसे आग फेंकत हला कपाले।
1: अरे काहे नहीं दीदी, देखा अगर 2 मिनट के लिए बहरे निकल जाना तो जैसे लगा तो शरीर एकदम से झुलस जात हो, और कपारे पे अगर गमछा न रख के चलू या दुपट्टा न बांध के निकल लू ना तो जनात हो कि संझा हो तो कपार इतना तेज फटे लगत हो कि का बताई हो।
0: ये तो बात एकदम सही कहत हो, बाकी ये सब तो बात सही है, बाकी देखा एक बात कही हम ना, जौन एक ठे चलत है ना बड़का वाला मोबाइल है, देखा तू ना जितना अच्छा होला उससे ज्यादा एक लत खराबो होला
1: एकदम दीदी। और देखा दीदी, कहे के ई हो कि आप जो आजकल अपने बहनी लोगन होलिन, भैया लोगन भैलन या लइकन बचन बहन, उ लोगन अपने काम काज में इतना व्यस्त हो गए हैं, और मोबाइल का बात कर लूँ तो देखा उ लोगन मोबाइल में भी इतना व्यस्त हो गए हैं ना कि वो एक का घरे में रहियन, बाकी एक दूसरे से बोलत बतियावत ना है, मोबाइल में ही देख रहा है, उनमें कभी रील्स चलावत हैं तो कभी वीडियो बनावत हैं तो कभी गेम खेलत हैं, माने हर तरीके से मोबाइल पे निर्भर हो गए हैं,
0: एकदम
1: खुद के ओकर आदत बना दिले हैं कि ओकरे बिना वो देखा सवेरे उठत हन तो उनके मोबाइल चाहत हो, नहाए जात हन तब भी वो मोबाइल के अपने साथे लगत हन, माने छोड़त ना हन कैसे भी तरीके से।
0: बाकी देखा ना अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक होला
1: एकदम दीदी,
0: काहे से कि देखा ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कैले से भी, उपयोग कैले से भी देखा हमारे का जो आंख हो ना यहू पर भी देखा बुरा प्रभाव पड़त हो, और बाकी देखा जो मोबाइल देखत देखत ने एक ठे सर दर्द भी हो जाता
1: एकदम दीदी,
0: और घबराहट हो जाता ला, बेचैनी अलग से हो जाता ला, काहे से कि कोनो चीज के जोन लत हो जाला ना ओके अगर ओसे तैसा हट जाना तो मन घबराए लगला कि कोनो चीज जैसे मर हेरा गए वाला।
1: एकदम दीदी, आदत जब हो जाला कोनो चीज का ना तो ओकर मतलब उसे दूरी बनावल बहुत मुश्किल हो जाला, यही से कोनो भी इसे गलत आदत ना लगे थे खुद के।
0: और देखा मतारी लोग है ना अपन कोनो काम करते हैं, लेकिन बच्चन रोवत है या फिर कोनो चीज के जीत करते हैं ना तो मोबाइल

0: कमा देते हैं। तो फिर मोबाइल तो खैर खराब तो है ये हला, अच्छा तो ना हला बच्चन खातिर। बच्चन देखा उमन कुछ देखत देखत का उमन देखा गेम खेले लगत हैं, जैसे कि वो मोबाइल छोड़ ही नहीं सकत है
1: एकदम। दीदी देखा जब भी अपने लइकन बच्चन के बहनी लोगन मोबाइल देवे तो उनके पूरा ध्यान देवे कि अगर वो पढ़ाई के लिए लेते हैं तो पढ़ाई ही करे, या कोनो काम खातिर लेते हैं तो वो काम करे, दूसरे गलत चीज पे न जाए। और देखा जब आप अपने लइकन बच्चन पे ध्यान देबू, उनके संस्कार देबू तो वो सही रास्ते पे चलिए, नहीं तो आप अगर अपने ही काम में व्यस्त हो जेबू तो वो देखा गलत राह पे भी चल सकन। अब मोबाइल का बात कहलू तो देखा दीदी मोबाइल अपने स्वास्थ्य खातिर तो नुकसानदेह हबा है। मोबाइल हम लोगन के शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से कमजोर बना देला,
0: जैसे मोबाइल से देखा नींद भी पूरा नहीं हो पावला,
1: नींद का कमी हो जाला,
0: नींद का कमी हो जाला। अगर नींद नहीं हो लगी तो मोबाइल देखत रहा सवेर हो जाला नींद लगे में। कभी-कभी ऐसा होला कि मन ही रात भर नहीं सुतला, ऐसा तो होला मोबाइल।
1: और देखा मोबाइल का बात करत है हम लोग, तो देखा मोबाइल तो चरैले से आंख में कमजोरी हो जाला, पीठ में भी दर्द होए लगला, गर्दन में दर्द होए लगला। एकरे साथे साथे मोबाइल देखले से देखा जब एक रील्स देखा लन लोग सोशल मीडिया से जुड़लन तो उस पे अपन एक दूसरे से तुलना करे लगला, तो इस सबसे तनाव और चिंता बढ़ाला, एकाग्रता का कमी हो जाला।
0: है तो देखा मोबाइल जो है एक मनोरंजन का साधन है यह, मगर बच्चन के थोड़ा सा खुल के भी रहे के चाहिए, जैसे बाहर बच्चन के साथ खेल कूद, जैसे कि वो लोगों का मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य का विकास हो सके।
1: दिन भर देखा उन लोगन तो गेम खेललन मोबाइल में, ऑनलाइन गेम खेललन, बाकी उन लोगन के बाहर जाके भी खेले के हुई। तो देखा दीदी हम लोगन आगे भी अपने कार्यक्रम में बहुत निक निक का चीज लेके आली, बातचीत लेके आले, गीत गौनाई भी लेके आले, लेकिन देखा ओकरे पहले ये जरूरी संदेश हो, पहले बहनी लोगन ई सुन लेवे।
2: सुनो ना,
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ, नंबर नोट करो
4: 0542227658।
2: ओ
5: 0542227658।
2: लो अभी फोन लगाता हूँ।
5: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
0: संदेश तो हो गल
1: दीदी।
0: देखा आज हम एक निके के बात कही भी लिया है,
1: एकदम
0: महिलाओं के लिए संतुलित आहार की क्या आवश्यकता है, डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव से बतियावत है मनु बहन। तो बहन लोग ध्यान से सुना,
1: सुने बहनी लोगन।
6: स्वस्थ रहल सबके लिए जरूरी होला, स्वस्थ रहे बदे अच्छा खायल पियल भी जरूरी हो, खास करके महिला लोगन के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होला, कहे से कि घर गृहस्थी का सब जिम्मेदारी उनकरे ऊपर रहला। तो आज हमरे साथ हैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव बहनी, और बहनी लोगन के ई जानकारी दी है कि महिला लोगन के लिए संतुलित आहार का आवश्यकता का हो। डॉक्टर बहिनी आपका बहुत बहुत स्वागत हो हमारे ग्राम में।
7: धन्यवाद
6: डॉक्टर बहिनी। सबसे पहले ये बतावल जाए कि संतुलित आहार का मतलब का।
7: देखिए अपनी बहनों को मैं ये बताना चाहूंगी कि संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें भोजन के समस्त पोषक तत्व विद्यमान हो। अब पोषक तत्व का मतलब कि जो भी हम भोजन खा रहे हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा पानी, जल भी एक पोषक तत्व है, उचित मात्रा में आवश्यक है। और ये ऐसा नहीं है कि सबको एक जैसा, वो संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति के आयु, उम्र है, लिंग है और शारीरिक क्रियाशीलता, कोई काम कर रहा है, कोई बैठा हुआ है, उसके अनुसार उपस्थित हो, तब उसको हम संतुलित आहार कहेंगे।
6: अच्छा, माने कि रोज का हमारा जो खाना होला
7: ओमे
6: ऐसा पोषक तत्व शामिल करे के चाहिए, ओमे रखे के चाहिए, ओसे जो पोषक तत्व मिला तो हमारे शरीर के ऊर्जा देवे और शक्ति देवे। डॉक्टर बहिनी पूछ लेवल गेल कि माने संतुलित आहार का होला, तो बहिनी लोगन के ई भी बतावल जाए कि संतुलित आहार लेवे के लिए कैसन भोजन।

0: तरह के चाहिए।
1: हाँ देखिए, जैसे तो हम लोग रोज भोजन करते हैं वो उससे भी हमको मिलता है, लेकिन हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसा भोजन लें जिसको खाने से शरीर को ऊर्जा मिले, जैसे आप भी अभी पहले बताई है, और हमें काम करने की शक्ति मिले, और इसके साथ साथ हमें रोगों से लड़ने की क्षमता हो। कई लोग को आप देखते होंगे कि बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं,
0: हाँ
1: तो कहीं ना कहीं हमारे खान पान में कमी रहती है जिससे कि वो जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो इसका योगदान होता है संतुलित आहार का, और साथ ही साथ हमें ऐसा भोजन करें जिससे कि हमारा शारीरिक वृद्धि हो।
0: अच्छा
1: जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो हमारा 3 किलो का पैदा हुआ, ठीक, ये सामान्य है उसका वजन, और देखिए हम सभी लोग 3 किलो से हम 55 किलो के हो गए। तो कहीं ना कहीं भोजन का ही कार्य है, जो हम भोजन कर रहे हैं उसी से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ी, हमारी क्रियाशीलता बढ़ी, और हमको रोगों से लड़ने की क्षमता मिली। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जो हम भोजन करते हैं उसी में जो विद्यमान अभी हम बताए हैं कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये पोषक तत्व है,
0: हाँ
1: उसी से हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमारी बहनों को विशेष रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम स्वयं और अपने पूरे परिवार के भोजन पर ध्यान दें। और हम लोग
0: अच्छा
1: देखते हैं कि ज्यादातर हम ही बहनें, महिलाएं ही अपने खान पान के प्रति लापरवाही बरतती हैं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: जैसे देखल जाला घरे में कि सब लोगन के पहले खिया देवल
1: खिया
0: जाए,
1: ले,
0: लइकन बच्चन हाँ घर का और परानी के खिया देवल जाए, और
1: हाँ,
0: बहनी लोगन अपन ध्यान सबसे बाद में
1: बाद में
0: दईहन,
1: दे,
0: जौन बचल रही उहे खा के
1: वो
0: रह
1: खाई,
0: जईहन।
1: तो वो संतुलित नहीं होता है। जो बचा रहेगा वो कुछ तो हम घट गया तो हम चलो अपना पेट भर ले, तो पेट भरना संतुलित आहार में नहीं आता है।
0: अच्छा, माने कि जैसे सबकर ध्यान रखल जाए तो वैसे बहनी लोगन अपन
1: हाँ
0: भी
1: हाँ
0: ध्यान
1: हाँ
0: रखे।
1: हाँ
0: डॉक्टर बहनी, देखा समाज में हर तरह का लोग रहेलन, भाई
1: हाँ
0: जेकरे पास हो वो तो खाए लेते हो, और जेकरे पास ना हो वो या तो ना खा पावत हो या तो फिर जैसे तैसे अपन काम चला लेते
1: नहीं,
0: हो।
1: इसके लिए एकदम ना सोचे कि हमारे पास नहीं है तो हम संतुलित आहार नहीं ले पाए। ऐसा बहुत चीज, जो भी हम पोषक तत्व तो बताए हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे महंगे महंगे चीजों ही मिलता है
0: हाँ
1: और सस्ते में भी मिलता है। तो
0: अच्छा
1: जहां पे हमारी बहनें अब नहीं खरीद पा रही हैं, अब जैसे गुड़ है, गुड़ तो गांव या जो भी हम लोग हैं सभी लोग ले लेते हैं,
0: हाँ
1: लेकिन अगर जिसके पास पैसा ज्यादा है तो वो कार्बोहाइड्रेट लेने के लिए अपना ले, जूस पिए, अच्छे से पिए। तो ऐसा
0: अच्छा
1: नहीं, एकदम अफसोस की जरूरत नहीं है कि हम संतुलित आहार नहीं ले रहे। बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं, खाद्य पदार्थ हैं जिसमें सब पोषक तत्व होते हैं, इसलिए बहन लोग अपनी रुचि के अनुसार सब तरह के भोजन को ले सकती हैं।
0: अच्छा माने कि जौन पोषक तत्व तो हमें महंगा चीज में मिला था, वही पोषक
1: वही,
0: तत्व तो हमारे आसपास
1: हाँ
0: घरेलू चीज में भी मिल
1: मिलता
0: रहा
1: है,
0: था।
1: मिलता है, बस जानकारी ले ले, और अगल
0: अच्छा
1: बगल या जो आपके घर में है उनसे जानकारी ले ले। अब जैसे दूध है, दूध तो हमारे गांव में आराम से सबको मिलता है,
0: हाँ
1: सिर्फ अगर हमारी बहनें लोग यही नियम में डाल ले कि 1 कप दूध हम रोज पिए, दूध नहीं तो दूध से बने पदार्थ, इसमें दही है, मट्ठा है, लस्सी है, कोई भी चीज। अब वही बाहर देखिए, शहरों में देखिए आइसक्रीम खा रहे हैं लोग, तो हम दूध ही ले और दूध का पदार्थ ले, वो भी वही पोषक तत्व देगा जो कि बाहर अगर हम लस्सी पी रहे हैं या आइसक्रीम खा रहे हैं। ठीक है,
0: अच्छा
1: तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो,
0: माने कि बहनी लोगन के परेशान होए का जरूरत ना हो, अपने घर में कुछ चीज
1: जो
0: ऐसा
1: उपलब्ध
0: हो
1: है।
0: हाँ
1: हाँ
0: जोन मिला था वो खावे,
1: हाँ
0: लेकिन ओकरे पे तनी ध्यान देवे कि ऐसे कौन सा तत्व तो मिला था।
1: हाँ
0: एक बात और पूछल चाहत है कि सब उम्र के महिला लोगन का आहार संतुलित होए, एकरे लिए का करे के चाहिए, का ध्यान रखे के चाहिए।
1: देखिए, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना होगा कि जो भी हम खाते हैं, जो भी हम खाते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है, और अगर हम संतुलित आहार नहीं लेंगे तो हम जल्दी से बीमार पड़ने लगते हैं जल्दी। आप अक्सर देखती होंगी कि बहुत सारी महिलाएं थोड़ा सा काम करती हैं, हांफने लगती हैं, थकान लगता है। तो हांफने लगना, थकान लगना, ये हमारा जो पोषक तत्व है वो शरीर में कहीं ना कहीं कम जा रहा है। जैसे बहने लोग का होता है ना कि चलो जो बचा है, चलो दाल दाल रोटी ही बचा है तो दाल रोटी खा ली, सब्जी छोड़ दिए। और ये हम बताना चाहते हैं कि सब्जी और फल, हम जरूरी नहीं है कि हम फल महंगा ले, कोई एक जो हमारा थाली है, जो हमारा भोजन खाने का सभी बहनें एक थाली में खाती हैं, चावल दाल रोटी सब्जी, तो हमारा जो भारतीय थाली है ये संतुलित आहार का एक मानक है।
0: अच्छा
1: ये नहीं।

0: हम खाली बहुत सारे जगह पहनी लोग दाल, बच्चे लोग को, लड़कियां ही ज्यादातर दाल नहीं पसंद है, दाल दे, दाल राजमा, क्योंकि प्रोटीन, प्रोटीन हमको बहुत जरूरी है शारीरिक वृद्धि के लिए। तो चावल दाल रोटी सब्जी, अब रसेदार सब्जी आ जाती है तो दाल हम किनारे कर देते हैं, तो पेट तो भर जाता है लेकिन हमें वो पोषक तत्व तो नहीं मिलता, और इसी कारण हमारा बीमारी का होता है और इस तरह की चीजें आती हैं। इसलिए अपनी रोज की दिनचर्या, ऐसा नहीं है कि एक दिन खा लें तो हमें और खाना, हमें प्रतिदिन संतुलित आहार पे ध्यान दें। मतलब कहने का मतलब कि रोज सवेरे उठ के हम लोग जो भी दैनिक दिनचर्या करते हैं काम, वो तो प्रतिदिन करते हैं ना, तो हमें खाने में भी जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है आज हम सब्जी, आज देखिए चावल दाल रोटी तो हमारा लगभग रोज रहता है, हम सब्जी में ही परिवर्तन करते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि मन उब जाता है। तो ठीक है आज हम आलू खा लिए तो हम हरी सब्जी, हरी सब्जी को जरूर कहीं ना कहीं हमको शामिल करना चाहिए। अच्छा। ये हमें जरूर रखना चाहिए। और एक बात और बताएं, कह रही है उम्र की महिलाएं, ये जो महिलाएं हैं उसकी उम्र का दायरा बहुत बड़ा है। गर्भवती महिला आप कह दी, तो गर्भवती महिलाएं मान लीजिए पहले जब गर्भावस्था नहीं था तो रोटी खाती थी तो उसके लिए वो संतुलित था, कि गर्भ में एक बच्चा पल रहा है ना, 9 महीने तक रहेगा, तो हमें खुराकी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और ऐसे पोषक तत्वों को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसको प्रोटीन चाहिए शारीरिक वृद्धि।
1: अच्छा।
0: तभी ना वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 3 किलो का होता है, तो भोजन में हमको प्रोटीन युक्त भोजन लेना पड़ेगा। और ऐसे स्तनपान कराने वाली तो वहां भी हमें इसका ध्यान रखना चाहिए खाने पे, कि हम बहुत सारे खाना नहीं खाती हैं, बच्चा अगर माँ का दूध पी रहा है तो कमजोर हो ही जाएंगी, तो जो अगर हम माँ का दूध बच्चे को मिल रहा है तो माँ को भी अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। और काम अगर ज्यादा है, मजदूर देखिए बाहर देखिए कभी कभी जो मजदूर वो ढो के काम करती है तो वो शारीरिक श्रम करती है, तो उनको ऊर्जा वाली चीजों को ज्यादा लेना चाहिए। तो इस तरह से अपने आहार का ध्यान रखेंगी महिलाएं तभी वो स्वस्थ रह पाएंगी।
1: माने कि हर आयु वर्ग हो, चाहे कि गर्भवती महिला हो या स्तनपान कराए वाली महिला हो, सब लोगन के अपने खाए पिए पे ध्यान देवे के चाही। पहले जो कम खात रहीन मान ला तो उसमें तई इतना बढ़ा के खाए,
0: बढ़ाना चाहिए।
1: डॉक्टर बहनी एक बात और पूछल चाहब कि अगर केहू बहिनी संतुलित आहार ना लेते हैं तो ऐसे में उनके कौन समस्या का सामना करे के?
0: हाँ ये बहुत सही प्रश्न आप बताई, क्योंकि आए दिन सभी महिलाएं, हम लोग सभी उसी वर्ग में आते हैं, तो अगर हम खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, ज्यादातर महिलाओं को हड्डियों की प्रॉब्लम, घुटने की प्रॉब्लम, घुटने में दर्द होता है, पैर में दर्द, कमर में दर्द, इस तरह की समस्या आती है, और खून की कमी, एनीमिया, ये दो बीमारी जो होता है महिलाओं में ज्यादा होती है, और महिलाएं ज्यादातर कुपोषण की शिकार होती है। कुपोषण क्या होता है? कुपोषण होने से हर समय कमजोरी होता है, मतलब काम तो वो घर का टाल नहीं पाती है, क्योंकि कोई महिला ऐसी नहीं है कि वो एकदम जब गंभीर रूप से बीमार होती तभी बिस्तर पकड़ती है, तो अगर थोड़ा बहुत भी वो स्वस्थ अपने आप को महसूस करती है तो काम करती जाती है, लेकिन ऐसे में वो और कुपोषित होती जाती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी महिलाओं को अपना जो नियमित भोजन की जो दिनचर्या है उसको बनाए रखे, जिससे कि वो अपने को स्वस्थ रखेगी तभी वो परिवार की देखरेख कर पाएगी।
1: अच्छा, तो कबो कबो देखा बहनी लोगन ना समझे लिन खाना खा ले लिन, लेकिन वो ई ना समझे लिन कि ओकर भी संबंध हमरे स्वास्थ्य से है।
0: हाँ,
1: बहनी लोगन के तने ई भी बतावा कि अपने आहार का संबंध का अपने स्वास्थ्य से होला?
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि आहार का तो सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य है, और भोजन को ही हमें औषधि, दवा, औषधि में दवा के रूप में हमें लेना चाहिए। अगर हम संतुलित आहार लेंगे तो वही मेरी दवा है, हमें अलग से दवा लेने की जरूरत, दवा की तभी जरूरत पड़ती है जब हम अपने खान पान में कोई न कोई एक ऐसा आहार को हम नहीं लेते हैं। जैसे हम दूध की बात बताएं, हम सभी लोग में बहुत कम ही ऐसी महिलाएं हैं वो प्रतिदिन दूध पीती हैं, अपने बच्चों को पहुंचा दी एक गिलास दूध, पति को पहुंचा दी, सास ससुर हैं उनको पहुंचा दी, अपने लिए बचा तो पी ली, नहीं बचा तो नहीं पी। तो दूध को एक संतुलित आहार के रूप में अपने आप माना जाता है।
1: अच्छा।
0: चावल दाल रोटी तो है, अगर हमें कुछ नहीं, देखिये व्रत वगैरह हम लोग महिलाएं ज्यादातर व्रत रहती हैं, ठीक है, और आहार का संबंध हमारे स्वास्थ्य है तो हम व्रत में रहते हैं, अक्सर ही निराजल व्रत रह लेती हैं, तो निराजल व्रत तो आज रह ली, हम सवेरे दूसरे दिन सवेरे हम बीमार पड़ जाते हैं, कोई बीपी

0: का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है, तो इन सबों का ध्यान रखना चाहिए कि हम व्रत भी रहें और आहार को ध्यान में रखें, क्योंकि आहार का संबंध सही में सीधा हमारे स्वास्थ्य से होता है।
1: माने कि बहिनी लोगन व्रती रहें लेकिन ओकरे साथे साथे अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखल करें।
0: हाँ
1: तो
0: जरूरी
1: डॉक्टर
0: है।
1: बहिनी का कुछ ऐसा पदार्थ होयला जेके कि बहिनी लोगन अपने खान पान में शामिल करें तो उससे उनके फायदा मिले?
0: हाँ बहुत सारे ऐसे जो स्थानीय, जो हम ऐसा हम नहीं बोलेंगे बहने लोग ये खाना खाना खाए, जो आपके घर के आसपास या आप उसको ले सकती हैं, उसमें आप ढूंढिए कि आज अगर हम नेनुआ खाए हैं तो कल हम भिंडी खा ले, कल हम आलू खा ले, तो इससे हम बहुत सारी ऐसे हमारे मौसमी मौसमी सब्जियां हैं उसको जरूर अदल बदल के लेना चाहिए, और उसी से हमको पोषक तत्व तो मिलता है। और यहाँ पे हम एक और बात बताना चाहते हैं, अब जैसे आप बोली हैं कि ऐसा आहार बताइए जो कि हमारे बहन लोग ले सके, तो बहुत साधारण है इंद्रधनुषी आहार।
1: इंद्रधनुषी है।
0: हाँ
1: अच्छा।
0: इंद्रधनुष आप लोग आसमान में देखती होंगी कि इंद्रधनुष का जो रंग होता है लाल पीला नारंगी बैंगनी, तो ये मोटा मोटा आप कर समझिए कि लाल पीला नारंगी हरा, ये इनमें से जरूर एक एक सब्जी हो या फल हो अपने आहार में शामिल करना चाहिए। ठीक है, जैसे पीला है कद्दू है, ये कोहणा वगैरह मिल रहा है, नींबू मिल रहा है, हरा है साग सब्जी जो जितने भी साग हैं, लौकी है, नेनुआ है, भिंडी है, हरा मिल गया, बैगनी हमारा बैगन है, चुकंदर है, तो उसको हम आपको बताने के लिए इंद्रधनुषी आहार
1: माने
0: देख
1: कि हर रंग का आहार जो मिला
0: वो।
1: था ओके
0: हाँ
1: अपने भोजन में
0: जरूर,
1: शामिल रखे
0: क्योंकि
1: के
0: हर
1: चाहिए।
0: रंग में अलग अलग पोषक तत्व तो भी आपको मिल जाएंगे।
1: एक बात और कहना चाहब कि चलत चलत बहनी लोगन के और का सुझाव देना चाहत हो?
0: हाँ अब हम यही सुझाव देंगे कि देखिए अगर आप स्वस्थ रहेंगी तभी अपने परिवार को स्वस्थ रख सकती हैं, और इसलिए बहनी लोग को ये हम बताना चाहते हैं कि अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, दलिया जो आप जल्दी से बना सकती हैं उसको अवश्य शामिल करिए। शाकाहारी हैं और मांसाहारी जो भी बहने हैं तो वो मांस में मछली मांस अंडा ये आप प्रतिदिन सेवन कर सकती हैं, और अगर आप स्वस्थ रहेंगी तभी अपने परिवार को भी मस्त कर सकती हैं।
1: तो बहिनी आप अइलू और अपने बहिनी लोगन के इतना नीक नीक जानकारी देलू, एकरे लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखा दीदी, डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव बहिनी कितना नीक का फरिया के जानकारी का बात बतैली ना कि महिलाओं के लिए संतुलित आहार का क्या आवश्यकता हो। ए विषय पे मनु सिंह बहिनी बतकही कैली ना, आ देखा हर बात कितना फरिया के बतौली ना कि हर तरह का संतुलित आहार खाए के चाहिए। और जब आप बहिनी लोगन ही स्वस्थ न रहू तो अपने घर परिवार लइकन बच्चन के कैसे स्वस्थ रहू, ए लिए जब भी अपने लइकन बच्चन घर परिवार का ध्यान रखें तो आपन भी पूरा ध्यान रखें, अपने खैले पियले पर भी पूरा ध्यान देवें। देखा नीचे का बात बतकही तो हो गए दीदी, जानकारी का भी बात हो गए, लेकिन देखा अब बहनी लोगन जोहत होइन कि हम लोगन बहनी लोगन खातिर नीचे कुछ गीत गौनई लिया ली कि नहीं,
3: अरे
2: तो
3: काहे
2: का
3: ना नहीं
2: सुनवावत हो दीदी बहनी लोगन के?
3: ये विदुषी शारदा सिन्हा का गीत सुन ला तो बहन लोग भी सुनवा दा, तहु के सुनवावत है।
2: सुना बहनी लोगन।

0: देखा
1: देखा।
0: दीदी कितना निक का जानकार
1: गीत
0: गीत
1: रहा
0: रहल कि मन झूमे लगल। अब बहनी लोगन भी झूमत हुई आ साथे
1: ना
0: में देखा तहु झूमता रहलू
1: काहे
0: हो।
1: ना झूमी हो, कितना निक का गीत रहल है कि झूमे के पड़बा करल है। तो देखा जैसे मने समस्या आई ना तो घड़ी भी इशारा करल था कि हमने के समय हो गल हला, हमने के चल के चाहिए तो चला चला जाए।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

अभी ग्रामीण बहनें अपना कार्यक्रम सुन रही थीं। अंगनैया, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं प्रेमलाल भारती। आपके साथ ढोलक पर साथ दे रहे हैं विशाल शर्मा और बैंजों पर हैं संजय भारती। आप कार्यक्रम के पहले प्रस्तुत कर रहे हैं ये कहरवा।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं प्रेमलाल भारती। इनके स्वर में कहरवा के बाद आइए सुनते हैं ये निर्गुण।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं प्रेमलाल भारती। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं इनके स्वर में ये लाचारी।

श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे प्रेमलाल भारती। आपके साथ ढोलक पर साथ दे रहे थे विशाल शर्मा और बैंजो पर थे संजय भारती। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़, रिले किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचार मिड डे न्यूज़ की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध है, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में

0: सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुंचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
2: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
3: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से

0: चार दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले दो दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि एक मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट शिखा, आपके पसंदीदा शो गीतांजलि में। उम्मीद है आप जहां भी होंगे अपनी जिंदगी के इस पल को पूरी शिद्दत से जी रहे होंगे। दोस्तों, रोज की इस भागदौड़ में जहां हर कोई किसी न किसी दौड़ में शामिल है, क्या हम कभी खुद के लिए रुकते हैं? क्या कभी खुद से पूछते हैं कि हम कहां जा रहे हैं? किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, दौड़ते भागते शहर की इस चकाचौंध में जाने कहां गया वो सुकून का लम्हा, जिंदगी की तलाश में हम इतना दूर निकल आए कि भूल ही गए कि पीछे छूट गया है अपना ही साया। आज का ये सफर कोई शोर शराबा नहीं, बल्कि एक ठहराव है, एक ऐसा कोना जहां हम और आप मिलकर जिंदगी की कुछ अनकही परतों को खोलेंगे। तो बस कुछ देर के लिए बाहरी दुनिया के शोर को बंद कर दीजिए और अपने भीतर की आवाज को सुनिए। चलिए इस रूहानी सफर की शुरुआत करते हैं इस बेहद गहरे और सुकून देने वाले नगमे के साथ। सुनते रहिए गीतांजलि।

इस खूबसूरत गीत के सुरों ने दिल को एक अजीब सा सुकून दे दिया है ना। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि जो चीजें हमारे पास नहीं है वही हमारी उदासी का कारण है, लेकिन कभी ठहर कर सोचिएगा, क्या सच में ऐसा है? जापान में एक बेहद खूबसूरत कला है जिसे किंटसुगी कहते हैं। जब वहां कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंकने की बजाय उसके टुकड़ों को सोने से जोड़ा जाता है। बर्तन जोड़ने के बाद पहले से भी ज्यादा कीमती और खूबसूरत दिखने लगता है। हमारी जिंदगी भी तो कुछ ऐसी ही है ना। इस बात पर एक कविता की ये पंक्तियां मुझे याद आती हैं। ये जो बिखरे हैं टुकड़े तेरे हौसलों के, इन्हें समेटने का हुनर सीख ले। जख्म ही तो रास्ता है रोशनी का, तो इन जख्मों को ही अपना जेवर बना ले। हमारे दिल के टूटे हुए हिस्से, हमारी नाकामियां और हमारे जख्म, ये हमारी कमजोरी नहीं है। ये वो जगहें हैं जहां से हमारे भीतर का हौसला बाहर आता है। अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि मुकम्मल तो इस कायनात में कोई भी नहीं है। इसी सोच के साथ आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आप सुन रहे हैं गीतांजलि शिखा के साथ। बात जब गहराई की हो तो कुदरत हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्या आपने कभी समंदर की गहराइयों के बारे में सोचा है? समंदर की सतह पर चाहे कितनी भी बड़ी लहरें उठ रही हों, तूफान क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसके बहुत गहरे तल में जाएंगे तो वहां बिल्कुल शांति होती है। इंसान का मन भी ठीक ऐसा ही होना चाहिए। बाहर परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर आपके भीतर का समंदर शांत है तो बाहर का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। और एक और अद्भुत बात, वैज्ञानिक कहते हैं कि जंगल के सभी पेड़ जमीन के अंदर अपनी जड़ों के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर कोई एक पेड़ बीमार होता है तो बाकी पेड़ अपनी जड़ें बढ़ाकर उसे पोषण भेजते हैं। सोचिए, पौधे होकर भी वे एक दूसरे का दर्द समझते हैं, और हम इंसान होकर भी कभी कभी अपनों की खामोशी नहीं पढ़ पाते। इस पर एक छोटा सा शेर अर्ज है, हाथों में हाथ ना हो तो भी साथ निभाया जा सकता है। हाथों में हाथ ना हो तो भी साथ निभाया जा सकता है। रिश्ता दिल से हो तो खामोशी को भी सुना जा सकता है। अपनों का हाथ थामिए, क्योंकि इस दुनिया में सच्चे रिश्तों से कीमती और कुछ भी नहीं। सुनते हैं एक और खूबसूरत सा नगमा।

संगीत सुनने के बाद दिल और दिमाग दोनों तरोताजा हो जाते हैं, है ना? दोस्तों, आज जब मैं सुबह सोकर उठी तो मैंने खिड़की से बाहर देखा, एक छोटा सा परिंदा तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला बना रहा था। उसे देखकर मुझे एक बात याद आई, जिंदगी भी तो ऐसी ही है ना। हम रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनी खुशियों का आशियाना बनाते हैं। कभी कभी हम छोटी परेशानियों को देखकर उदास भी हो जाते हैं, लेकिन सच कहूं तो मुश्किलें सिर्फ हमारी काबिलियत परखने आती हैं। जैसे बिना पतझड़ के पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, वैसे ही बिना संघर्ष के इंसान के जीवन में निखार नहीं आता। इसलिए अगर आज आपका दिन थोड़ा मुश्किल भी चल रहा है तो घबराइए मत, ये वक्त भी गुजर जाएगा और आने वाला कल बेहद खूबसूरत होगा। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आप अपने आप में नायाब हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ सुनते हैं ये अगला गीत, जो यकीनन

वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल जाता है, पता ही नहीं चलता। हमारा ये सुरीला सफर भी अब अपनी आखिरी दहलीज पर आ खड़ा हुआ है। जाने से पहले बस एक आखिरी बात आपके दिल के पास छोड़ जाना चाहती हूँ कि जिंदगी में कभी कभी ना कहना, कभी कभी रुक जाना भी ठीक होता है। चलते चलते बस इतना ही कहूंगी, जिंदगी है तो शिकायतें भी होंगी और गिला भी होगा। जिंदगी है तो शिकायतें भी होंगी और गिला भी होगा। खुद को माफ कर दिया इंसान, यहाँ हर शख्स से कुछ न कुछ छूटा जरूर होगा। यहाँ हर शख्स से कुछ न कुछ छूटा जरूर होगा। अपनी अंतरात्मा को थोड़ा आराम दीजिए, किसी से गिला शिकवा हो तो उसे माफ कर दीजिए और खुद को भी माफ कर दीजिए। इसी सोच के साथ अब कार्यक्रम गीतांजलि को संपन्न करते हैं। अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। इसी के साथ

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि। आज की प्रस्तुति थी शिखा श्रीवास्तव की। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1,242 किलोहर्ट्ज़, DTH DRM 1,233 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन IR ऐप और वेव्स OTT पर दिन के 3:27 संपन्न हो रही है आज की ये सभा। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। अब हमें यहीं अनुमति दें।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन EIR ऐप, DTA DRM और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: जय हिंद नन्हे साथियों,
1: आज आपके साथ हैं आपकी सिमी दीदी
0: और सोनी दीदी।
1: नन्हे दोस्तों, अब तो आपके स्कूल खुल चुके हैं तो फिर से पढ़ाई में जुट जाए, क्योंकि थोड़े दिन बाद ही आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो अभी से अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो परीक्षा के समय ना आपको परेशानी नहीं होगी।
0: सिमी दीदी, बात तो सही कही आपने, और हमारे नन्हे साथी तो सोच रहे होंगे कि भाई अब छुट्टियां तो खत्म हो गई, अब हमें ढेर सारी किताबें पढ़नी होंगी और ढेर सारी परीक्षाएं देनी होंगी। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा और पढ़ने में अच्छा भी लगेगा।
1: पर नन्हे दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर समय सिर्फ पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई के साथ साथ खेले भी, क्योंकि जितना पढ़ाई जरूरी है उतना ही खेलना भी जरूरी है। क्योंकि जब हम खेलेंगे कूदेंगे तभी तो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास भी बहुत अच्छे से होगा।
0: और सिमी दीदी, खेल खेल में भी हम के लिए बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और हमें जानकारी भी मिले, तो कई सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम पढ़ाई भी कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं।
1: और जब हम पढ़ाई के साथ साथ खेलते भी है ना, तो हमारे जो नन्हे दोस्त है ना वो बोर भी नहीं होते और उन्हें बहुत सारी नई नई चीजों की जानकारी भी मिल जाती है। पहाड़े और गणित के फार्मूले याद करने हैं ना, तो उन्हें कविताओं के द्वारा, किसी गीत के द्वारा भी अगर हम याद करते हैं ना तो हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं और साथ ही हमेशा याद भी रहते हैं।
0: पढ़ाई को बोरिंग न समझकर थोड़ा सा खेले भी और पढ़े भी
1: जी। हम अपने नन्हे साथियों को थोड़ा सा मनोरंजन करते हुए गीत सुन लेते हैं।

0: रोचक दीदी का पिटारा भी तो हमेशा ज्ञानवर्धक और जानकारी से भरा होता है। तो सुनते हैं कि आज वो अपने पिटारे में हमारे लिए क्या नई जानकारी लेकर आई हैं।
1: बच्चों नमस्ते, आ गई है रोचक दीदी लेकर फिर एक बार जानकारियों से भरा अपना पिटारा। तो आज क्या है इस पिटारे में बताइए। अरे आप कैसे बताएंगे, वो तो मैं बताऊंगी। वैसे बच्चों, जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि ओ बैक्टीरिया तो खराब होते हैं, हमें बीमार करते हैं, है ना? लेकिन मजेदार बात बताऊं, बैक्टीरिया सिर्फ बैड नहीं होते, गुड भी होते हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली हमें बीमारियों से बचाती है, उसी तरह हमारे शरीर में गुड और बैड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैड बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमें बीमार कर सकते हैं, लेकिन बच्चों गुड बैक्टीरियाज हमें कई बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। गुड बैक्टीरिया जिन्हें हम प्रोबायोटिक्स भी कहते हैं, आपने बिल्कुल सुना होगा इसे। और ये हमारे पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। पता है बच्चों, इन गुड बैक्टीरियाज के कारण हमारा जो पाचन तंत्र है वो अच्छे से काम करता है और हम जो भी खाते हैं वो सही तरीके से पचता है और हमारे शरीर को मिलती है ताकत। साथ ही एक बात और बताऊं, ये जो गुड बैक्टीरिया हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाते हैं मजबूत, जिससे हम बीमारियों से बचे रहें। और साथ ही गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं वो शरीर में बैड बैक्टीरिया को बढ़ने से भी रोकते हैं। तो बच्चों, हम अपने शरीर में गुड बैक्टीरिया को बढ़ा सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। भाई पेट को स्वस्थ रखना है तो हमें कुछ चीजों का सेवन नियमित रूप से करना होगा, जैसे दही, पनीर, छाछ, मट्ठा या फिर कांजी। और हाँ, इडली या डोसा, ये फर्मेंटेड चीजें हैं ना, तो ये हमारे पेट को रखती हैं हेल्दी। तो अब मम्मी जब भी आपको ये चीजें खाने या पीने के लिए दें

0: भाई मुंह मत बनाइएगा, चुपचाप खाइएगा ये सोचकर कि गुड बैक्टीरियाज बढ़ेंगे और हमें रखेंगे स्ट्रांग। फिलहाल बच्चों मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है तो मैं जा रही हूँ दही खाने। साथ ही चलते चलते जल्दी से एक बात और बता दूं आपको कि ज्यादा शक्कर मीठा और फास्ट फूड खाने से बचें। रोचक दीदी अगले सप्ताह फिर आएगी अपने जानकारियों से भरा पिटारा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।
1: दीदी, रोचक दीदी के पिटारे में तो बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी थी और हमारे साथियों को भी बहुत ही ज्ञान मिला होगा इससे।
2: और इसी के साथ साथ बच्चों अपनी प्रकृति से भी जुड़ो, अपने आसपास खूब सारे पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, क्योंकि जब हमारे आसपास खूब सारे पेड़ पौधे होंगे ना तो हमारा वातावरण भी स्वच्छ होगा और स्वस्थ होगा।
1: और दीदी प्रकृति से इसलिए भी जुड़ना जरूरी, हरियाली चारों तरफ हरे भरे पौधों को देखकर भी हमारा मन खुश हो जाता है, ताजगी से भर जाता है। इसलिए नन्हे मुन्ने साथियों प्रकृति से भी जुड़िए।
2: चीज का भी ध्यान रखना है कि पौधे लगा के सिर्फ छोड़ना नहीं है बल्कि उसकी देखभाल भी करने ताकि वो अच्छे से बड़े हो जाएं। और अब हम अपने नन्हे साथियों से विदा लेते हैं और कहते हैं जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH, DRM और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5:10 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया इस वाद्य संगीत के साथ प्रतीक्षा करें।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल, गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे हैं इस विशेष पहल के पीछे काम करने वाले रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आलोक शुक्ल।
2: श्रोताओं नमस्कार। आजकल आप आम देख रहे हैं कि हर चीज में पानी की बोतल लेना हो या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं या किसी इसी प्रकार के रैपर वाले में उन्हें पैक किया जाता है। तो इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहाँ पे आए हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्लास्टिक के जो कचरे हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं प्लास्टिक के जिससे प्रदूषण फैलता है, वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और उसके बदले 1 किलो यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, 1/2 किलो लाते हैं तो उन्हें नाश्ता मिलेगा, खाने में भी क्वालिटी अच्छी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई, और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर शहर की ये जो पहल है इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो हम बात कर रहे हैं रितेश सैनी जी से। तो सैनी जी, आप ये बताइए कि नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ, तो ये क्या, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये विचार आया?
3: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे थे,

0: इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पर ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत एसएलआरएम प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। वहां पे दीदियां जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती है। कचरा को संग्रहण करने के बाद एसएलआरएम सेंटर में आता है जहां पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या हजार्डियस वेस्ट हो, तो सबका वहां सेग्रीगेशन होता है और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो एसएलआरएम सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वाशिंग होती है, वाशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन जो प्लास्टिक का ग्रेनुअल्स बनता है ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। वो प्लास्टिक रिसाइकल होने के लिए दाने का मशीन हमने लगाया, दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद हमको जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ के साथ मिक्स हो गया तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में ये होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो हमारा पृथक्करण का खर्चा बचा। जो हम लेबरों से अलग अलग प्लास्टिक को कराते वो प्लास्टिक को अच्छे से इकट्ठा करके हमारे पास ला करके दिया, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई, तो वो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट था वो हमारा खत्म हो गया। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक को एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहां पर डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया, उसकी वैल्यू लगभग 20 रुपए के आसपास हमारे पास आ जा रही है। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया। चूंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है, बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है, बस स्टैंड के जस्ट सामने में हमारा एक एसएलआरएम सेंटर है। चूंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है, तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है, जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा एसएलआरएम सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती हैं, उस टोकन को लेकर के आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है, ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है, आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहाँ जमा करिए और यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
1: ये इस योजना की गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में। उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे, उन विचारों को आपने सकारात्मक रूप में कैसे परिवर्तित किया, ये बताएंगे सैनी जी आप?
0: इसमें देखिए क्या हुआ था कि 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था, तो एक हम लोग एक आईसी एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारी गण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचरे को, अन्य सभी कचरों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहां पे एक बात आई कि क्या इस कचरे के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या? तो उस समय जो अधिकारी गण थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप इस जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में आई कि नहीं, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा, इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद किया क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको यह समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर हैं, आप प्लास्टिक को कहाँ बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर 30-40 रुपए किलो में जा रही है, सारे खर्चों को काट करके अगर 1 किलो प्लास्टिक में 20 रुपए भी मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए मैं इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सकें, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है।
1: ये माने ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए, ये सभी के लिए है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो उसके लिए भी एक रेट है,
0: उसके लिए यहाँ पे रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो, कि ऐसा ना हो कि इनको हमने दे दिया और ये केवल जो पैसा दे रहा है उसको पहले दें, टोकन वालों को बाद में दें, तो इसके लिए हम लोगों ने इनके साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि 2 सीट हमेशा, 2 टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा, क्योंकि ये संभावना है, हो सकती है ऐसी संभावना कि वेंडर ने तो कम रेट पर ले लिया इसको और उसने कहा कि 20 रुपए मेरे को आप टोकन का रिडीम आप करेंगे, बाकी कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। तो उस समय ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि केवल बाहर वाले लोगों को ही वो खिला रहे हैं, जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे, तो उनके साथ भेदभाव हो, ऐसी स्थिति ना बने। तो इनको ये कहा गया कि आपको 2 टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
1: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे?
0: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत

0: के एक दो महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे। उसके बाद फिर काफी अच्छा लोगों यहाँ आना शुरू किया, 15-20 टोकन, 30 टोकन, 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ। अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जाम्पल भी देखेंगे कि एक रैक पिकर है जो दुकानों से, मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे, जमा करता है जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर एक टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को, तो मैं अकेले खाना जाता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूं और अपने परिवार के बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊं, तो मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता है ना, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूं। तो उसके लिए फिर आयुक्त महोदय का बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा।
1: जो गरीब परिवार है, खासकर जो कचरे का जो संग्रह करते हैं, जो प्लास्टिक को बीनते हैं, जो हमें प्रदूषण मुक्त समाज की एक मुख्य अवधारणा है, जो गरीब तबके के लोग जो संग्रह करते हैं, उनके लिए देखिए कितनी अच्छी पहल है।
0: होटल वाला भी ये करता है कि आप बच्चे का यदि चाउमीन खाने का मन है, इडली खाने का मन है, तो जरूरी नहीं कि आलू बंडा समोसा ही आप खाइए, आप 2 टोकन दे दीजिए तो उसके बदले में, तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है और सम्मान से बैठ करके खा सकता है। तो ये इस तरह के भी कुछ एग्जांपल्स इसमें निकल करके आए हैं। तो ये एक अच्छा हमको हुआ कि प्लास्टिक तो आ ही रहा है, ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहां प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
1: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
0: जी
1: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं,
0: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास, इसके अलावा ये वाला बॉटल भी, मतलब कि ऐसा कोई अनहाइजीन सिचुएशन यहाँ ना क्रिएट हो, उन सब चीजों का स्पेशल ध्यान भी इनके द्वारा।
1: सनी जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव ये पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं
0: जी।
1: और आपसे सहयोग चाहते हैं,
0: बिल्कुल,
1: या ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए हैं?
0: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27-28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं। तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था तो 21 दिसंबर के आसपास दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहाँ पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहाँ तक कि जो हमारे CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा, कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो CAG ने भी इसमें विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीज़ों का कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो CAG ने भी इन सब चीज़ों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
1: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ, या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला, समाज के किस तबके को मिला?
0: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, क्योंकि 1 किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है, लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, 1 किलो लोहा और 1 किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है। 1 किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया, और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है। इसमें हम लोग एक ये भी करते हैं कि प्लास्टिक आपको कौन सी लानी है कि आप यूज करें, मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंकें ना, आप प्लास्टिक का यूज किए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, 1 किलो हो गया, गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
1: तो ये दिन पे दिन ये जो प्लास्टिक संग्रह है बढ़ रहा है?
0: नहीं,
1: क्या है,
0: प्लास्टिक संग्रहण तो बढ़ रहा है, देखिए प्लास्टिक कचरे में वृद्धि भी हो रही है, प्लास्टिक के अल्टरनेट भी अब आते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं मार्केट में हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50-55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत सारे चीज़ों में हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल आइटम जो है वो अल्टरनेटिव आना शुरू हो गए, जैसे जो कागज की प्लेट्स आती थी अब वो प्रेस मड की प्लेट आ रही है, मतलब वो गन्ने से बना हुआ प्रेस मड है जो डिस्पोजल हो सकता है, जिसका हम लोग खाद बना सकते हैं,
1: जैविक है
0: वो, ऑर्गेनिक है वो।
1: और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो प्लेटें जो पहले प्लास्टिक की रहे या थर्मोकोल की रहती थी, अब लेकिन वो जो गन्ने के छिलके से बनी प्लेटें हैं, ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा आ रही हैं, और वो क्या होती हैं कि वो नष्ट भी हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से, क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से जैविक होती हैं। क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
0: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है, तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ कुछ आइटम है तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है। उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण वो जो यहाँ अवेलेबल है उसको ऑर्डर दे करके ले सकते हैं।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
0: जी,
1: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
0: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना,

0: से बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। कुछ पहले भी चल रहा था अंबिकापुर में, लेकिन मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज
1: असर
0: कैफे
1: पड़ा,
0: बिल्कुल असर
1: वृद्धि
0: पड़ा,
1: हुई है
0: उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा, इनके प्रति सपोर्ट भी पड़ा कि एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर स्पेस अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको, ना केवल प्लास्टिक, अगर और भी कुछ इनिशिएटिव करना चाहे तो उस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं आगे चल करके।
1: मैं देख रहा हूँ कि अगल बगल भी होटल हैं, कई जो पुराने होटल हैं बड़े होटल वो स्थापित हैं, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल, तो जनता का जो भरोसा है, जो एक कई सामाजिक जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है कि या कहें कि एक ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
0: सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है ये रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को ये मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, पूरा हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज, तो यहाँ पे खाने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे समस्या आ रही हो, तो वो सब चीजें नहीं।
1: तो अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, एक आजकल इकोनॉमिक युग है, तो दिन पे दिन इससे लाभ बढ़ रहा है, उसका क्या अनुपात है आप बताएंगे पहले में और अब में?
0: इसका जो इकोनॉमिक व्यू है गार्बेज कैफे संचालन का, एक तो ये दृष्टिकोण है कि प्लास्टिक हमारे पास आ जाए और रिसाइकलिंग हो जाए और उसको व्यक्ति को भोजन मिल जाए। शुरू में तो हम इसको सब्सिडी में चलाने का हम लोग को लग रहा था कि इसमें नगर निगम को हर टोकन पे कुछ पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा, तो इसमें हमने क्या किया कि एक तो ये प्राइम लोकेशन है, यदि इसको हम लोग बिड करते, टेंडर करते, कोई बड़ा व्यापारी इसको लेता तो काफी पैसे में ये बिक्री हो सकती थी, तो इसका एक सब्सिडाइज रेट हमने रखा कि जो गार्बेज कैफे लेगा उसमें सबसे ज्यादा हमको ये लिख करके कौन देगा कि सबसे मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। अगर मान लीजिए एग्जांपल लूं कि 40 रुपए की प्लेट है तो 40 रुपए की प्लेट में मैं कितना छूट दे सकता हूं, ये बिड का आधार था, ना कि ये बिड का आधार था कि मैं 5 लाख की दुकान को 15 लाख में लूंगा। ठीक है, तो वो हम लोगों ने फिक्स किया था कि भाई यहां पे आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का ये जो प्रीमियम है वो देना होगा और जो मंथली रेंट है ना, क्योंकि आर्थिक नुकसान भी निकाय को नहीं होना चाहिए, तो जो मंथली रेंट है वो दूंगा, लेकिन प्रीमियम बिड को हम लोग फिक्स कर दिया था, उसकी जगह हम लोगों ने ये बिड रखा था कितना डिस्काउंट देंगे। तो जैसे इन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया कि यदि मेरी भोजन की प्लेट 50 रुपए की है तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। इसने मैक्सिमम लिमिट भी दिया कि एक दिन में अधिकतम 30-40 लोग तक का मैं करूंगा, उसके ऊपर होगा तो आपको फुल पे करना होगा, ये उन्होंने दे दिया। दूसरा, प्लास्टिक जो हमारे पास आ रहा है हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि अगर साफ सुथरी प्लास्टिक मेरे पास आती है जिसमें मेरा कलेक्शन का जो खर्च है, छांटने का जो खर्च है, लेबर कॉस्ट, उन सारे खर्च को काटने के बाद सीधा प्लास्टिक मेरे पास ऐसा आ रहा है कि उसको उठा करके सीधे दाना बनाने वाले सेंटर में भेजना है और वो सीधे दाना बन जाएगा, तो दाना बनाने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है प्लास्टिक की वो भी लगभग 20-22 रुपए आ जा रही है। अगर साफ सुथरी प्लास्टिक हमको मिल रही है तो 20-22 रुपए वहां से बच गया, कुछ इन्होंने सबमिट कर दिया, तो ये जो टोकन हमको जमा कर रहे हैं उसका 50% हम पे कर देते हैं, 50% ये डिस्काउंट कर दे रहे हैं।
1: तो संक्षेप में ये बताइए कि एक जो अनुपात है, लाभ का अनुपात दिन पे दिन बढ़ रहा है?
0: नहीं, लाभ और नुकसान दोनों इसमें नहीं है, मतलब ये एक अच्छी योजना चल रही है। नगर निगम को लोगों के टोकन पे कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान है, बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं हम लोग। निगम को लाभ क्या है, जो प्रति माह ये किराया दे रहे हैं क्योंकि अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो निगम को जो प्रति माह ये किराया पे कर रहे हैं वो निगम की आय है, राजस्व इस गार्बेज कैफे का।
1: और सबसे बड़ी बात है कि जो आम जन है, आम यात्री हैं, उनके बल पे ये
0: बिल्कुल चल रहा है, बस
1: चल रहा है, बस स्टैंड है। तो ये जो योजना है, ये जो एक पहल है, एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली में बता रहे हैं अनुकरण करके वहां पे 21
0: लोकेशन पे ऐसा खबर
1: लोकेशन पे गार्बेज कैफे दिल्ली में हो गए और भी जगह ये धीरे धीरे फैल रहा है।
0: बिल्कुल जानकारी।
1: छत्तीसगढ़ में कितनी जगह है?
0: छत्तीसगढ़ में तो अभी अंबिकापुर में।
1: तो आप देख रहे हैं कि जो रितेश सैनी जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, ये बता रहे हैं कि ये अंबिकापुर जो छोटे से शहर से 2019 से ये पहल शुरू हुई, आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: अभी हम लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं, तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता के कचरा को लेकर के आ रही है कि एकदम साफ सुथरा। सपोज दैट अगर अभी हम और आप एक बोतल में पानी पिए और वो बोतल इतना फ्रेश है कि हम लोग पानी पी रहे हैं मुंह लगा करके, और उसको अगर हम एक सही ढंग पे सही तरीके से रख देंगे तो उतना ही साफ स्वच्छ रहेगा जितना खाते वक्त था, तो उस स्तर का कचरा अब हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है, तो हम सिटीजन्स के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, ना केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं, कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन इशू कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें, इस तरह से हम लोग और भी इनिशिएटिव
1: टॉकीज में जाकर फिल्म दे सके हैं।
0: इस तरह की योजना कैसे से बच्चों का सपोज दैट कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक पेट बॉटल है उसकी वैल्यू अच्छी है वो 40-45 रुपए किलो तक बिकती है तो हम ये कर सकते हैं कि उनको कुछ टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं बच्चों को कि आप

0: कैसे इसको अपने घर में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बोतल है, उसमें यदि हम डेली छोटे छोटे पाउचेस हैं सॉस के, या उसको हम डालते जाएं, फिर प्रेस करते जाएं, डालते जाएं, वो एक भर के इतना कंप्रेस्ड हो जाएगा कि कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि वो एक लीटर की प्लास्टिक की बोतल में आपने 2 किलो प्लास्टिक, और वो छोटा प्लास्टिक है जो नालियों में चला जाता है जिसको सेग्रीगेशन बड़ा करना कठिन है। तो इस तरह के बच्चे का इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हम उनमें उनको कुछ इंसेंटिव बच्चों को, चाहे वो फिल्म मूवी देख सके कोई बच्चों से रिलेटेड, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहें, कंपास देना चाहें, इस तरह की चीजों पर भी कुछ।
1: तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है, जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली।
0: जो मैंने बच्चों के इनिशिएटिव की बात करी, तो मन की बात में एक एपिसोड भी आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था। अंबिकापुर में एक स्कूल है होली क्रॉस स्कूल, होली क्रॉस स्कूल के बच्चों ने क्या किया कि स्कूल में जितना भी लोग चॉकलेट या जो भी लेकर के जाते हैं
1: उसके रैपर
0: इकट्ठा करके और अलग अलग कंपनी के कोरियर बनाए और कंपनी को कोरियर कर दिया कि ये आपका कचरा आपको वापस। बच्चे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब कंपनी हमसे 10 रुपए का 15-20 रुपए का हम चिप्स खा रहे हैं तो उसके कचड़े को कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं है, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ब्रांड वाइज अलग अलग किया, स्कूल में सेग्रीगेट किया और उस ब्रांड को कोरियर कर दिया।
1: एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ने एक प्रेरणा दी और एक समाज को और देश को आईना दिखाया कि यदि आप किसी चीज में कर रहे हैं तो कचड़ा निपटान की भी जिम्मेदारी बनती है। माने कहा जाए तो अब जो देश है वो बदल रहा है और गार्बेज कैफे की जो अवधारणा है वो वास्तव में देखा जाए तो वैश्विक होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।
0: हैशटैग गार्बेज कैफे सर्च करिए तो आपको तमाम देशों के मिल जाएंगे, उसमें बांग्लादेश से लंदन इटली वगैरह सारे जगह,
1: जापान कोरिया यहां से भी
0: सभी जगह
1: प्रशंसा आई थी।
0: प्रशंसा आई थी, अंबिकापुर के ट्वीट को रिट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा इनिशिएटिव यहां पे ले रहे हैं। और ट्विटर में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है।
1: दोस्तों आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहां से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, तो इस गार्बेज कैफे की जो यात्रा के सबसे प्रमुख जो व्यक्ति हैं रितेश सैनी जी से, उनसे हमने साक्षात्कार किया, इस यात्रा वृतांत के बारे में पूछा, इस रोचक यात्रा के बारे में पूछा और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे थे इस पहल के पीछे काम कर रहे रितेश सैनी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आलोक शुक्ल। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, आइए सुने युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी।

0: दोस्तों, आप यहाँ भविष्य के पीछे चलने नहीं, बल्कि अपना भविष्य बनाने आए हैं।
1: और ये बात हम आज आपसे क्यों कह रहे हैं, आगे बातचीत में आपको पता चलेगा। फिलहाल तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपसे बातें करते हुए हम अच्छे हो ही जाते हैं। आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी लेकर हाजिर हूँ मैं शिवानी,
0: और मैं दिव्या।
1: आप सभी को हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
1: ओ
0: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
0: 0542227658।
4: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
5: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
6: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: शिवानी, अक्सर जब हम सफलता की बात करते हैं तो हमारे मन में बड़ी बड़ी कंपनी और बड़े बड़े बिजनेसमैन की तस्वीर उभरती है, लेकिन क्या ये सोचने वाली बात है ना कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी शुरुआत भी तो कभी एक छोटे से विचार से हुई होगी।
8: बिल्कुल दिव्या, ये तो तुम्हारी बात एकदम सही है। कोई भी व्यवसाय ना ऐसे एक दिन में बड़ा नहीं बनता, एक छोटा सपना, थोड़ी सी हिम्मत और लगातार मेहनत ही उसे सफलता तक पहुंचाती है। यही कारण है कि आज हम ना विश्व सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस मनाते हैं।
7: दोस्तों, MSME यानी माइक्रो

0: स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सरल शब्दों में कहें तो वे छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग जो न केवल लोगों को रोजगार देते हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज के समय में कई युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद केवल नौकरी की तलाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना भी देख रहे हैं।
0: दोस्तों, ये केवल लोगों के सपनों की उड़ान ही नहीं बल्कि उसे पूरा करने में भी काफी मदद कर रही है।
1: सही कहा। और आज सामाजिक मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने युवाओं के लिए नए अवसर खोले हैं। कोई घर से बेकरी चला रहा है, कोई हस्तनिर्मित उत्पाद बेच रहा है, तो कोई ऑनलाइन शिक्षा या तकनीक सेवाओं के माध्यम से अपना व्यवसाय बड़ा कर रहा है। दिव्या,
0: यानी दोस्तों, आज का युवा सिर्फ रोजगार पाने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला भी बन रहा है, और यही तो आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान है। लेकिन किसी भी सफलता के पीछे संघर्ष भी होता है।
1: बिल्कुल।
0: हर बिजनेस को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कभी आर्थिक कठिनाइयाँ, तो कभी संसाधनों की कमी, तो कभी असफलताओं का डर।
1: और जो दिव्या इन चुनौतियों से हार नहीं मानता ना, वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। शायद इसीलिए कहा गया है कि सपने वही सच होते हैं जिन्हें पूरा करने का साहस भी हो।
0: शिवानी, जब हम साहस और नेतृत्व की बात करते हैं तो आज का दिन हमें एक ऐसे महान व्यक्तित्व को भी याद दिलाता है जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है।
1: दोस्तों, क्या आप पहचान पाए कि दिव्या किनके बारे में बात कर रही हैं? जी हाँ, आज हम श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं शेरे पंजाब महाराणा रणजीत सिंह को।
0: महाराजा रणजीत सिंह केवल एक शासक नहीं थे बल्कि दूरदर्शी नेता भी थे। उन्होंने पंजाब को एक मजबूत और संगठित राज्य के रूप में स्थापित किया।
1: उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी दोस्तों कि वे सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान करते थे। आज जब दुनिया में एकता और सौहार्द की बात होती है, तब महाराजा रणजीत सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं।
0: वे एक ऐसे शासक थे जिन्होंने शक्ति के साथ साथ संवेदनशीलता और न्याय को भी महत्व दिया। यही कारण है दोस्तों कि आज भी लोग उन्हें सम्मान और गर्व के साथ याद करते हैं।
1: तो दोस्तों, आज के दोनों बातें कुछ न कुछ सिखाती हैं। एक ओर एमएसएमई दिवस हमें सिखाता है कि छोटे सपने भी बड़े बदलाव ला सकते हैं।
0: और दूसरी ओर महाराजा रणजीत सिंह का जीवन हमें बताता है कि सफलता तभी तक सार्थक है जब तक उसमें नेतृत्व, सेवा और मानवता का भाव शामिल हो।
1: जैसे आज स्टूडियो आते समय दिव्या, मेरे फोन में एक पुराना गाना चल रहा था, और सच बताऊं तो 2 मिनट में मैं खुद को ना 90s की हीरोइन समझने लगी।
0: अच्छा, और इधर मैं नए गाने सुन रही थी जिनका बीट शुरू होते ही मेरे पैर तो अपने आप ऐसे थिरकते हैं कि मानो मत। अब बताओ, इसमें गलती मेरी है या म्यूजिक की?
1: यही तो आज की बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि पुराने गानों में जो सुकून, मिठास और मतलब हुआ करता था, वो आज के गानों में कहाँ।
0: और कुछ लोग कहते हैं कि हर दौर का अपना अंदाज होता है। नए गाने नए जमाने की सोच, बीट्स और से सुनते ही एक अलग सी एनर्जी का आना, पुराने गानों में कहाँ। अब देखिए, पुराने गानों के शौकीन कहेंगे वो गीत नहीं फीलिंग्स थे जिन्हें सुनकर दिल खुद पे खुद गुनगुनाने लगता था।
1: और नए गानों के फैंस कहेंगे कि भाई, गाने ऐसे होने चाहिए कि सुनते ही प्लेलिस्ट में ऐड हो जाए और रील भी बन जाए।
0: तो दोस्तों, आखिर कौन बेहतर है, पुराने गाने या नए गाने?
1: यही सवाल हमने अपने श्रोताओं से पूछे अपने यूथ जंक्शन फोन इन कार्यक्रम में, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बताया। नमस्कार, आपने यू जंक्शन में कॉल किया है और आपकी बात हो रही है आरजे शिवानी से। क्या मैं जान सकती हूँ मेरी बात किनसे हो रही है?
2: मैं गांव डेर तहसील जिला पाटन गुजरात से धीरज जबारी बात कर रहा हूँ।
1: जी धीरज जी, कैसे हैं आप?
2: हम अच्छे, और आकाशवाणी वाराणसी परिवार सब सकुशल हो गए, इसलिए आप भी आ गए।
1: जी जी बिल्कुल, हम सभी जो है वो सकुशल है। क्या मौसम है?
2: सब थोड़े बादल है, थोड़ी धूप के लिए है, और हम आशा करते हैं बारिश आज या कल आ जाए।
1: बिल्कुल, बारिश का तो हम सभी इंतजार कर रहे हैं कि बारिश जल्द से जल्द अब आए।
2: और गर्मी को अगर कम करना है तो हमें पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि

0: ग्लोबल वार्मिंग है, प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचा है हमने, तो इस परिवर्तन को हम सकारात्मक तरह से लेकर अच्छे प्रण करें कि कोई भी जगह पर पर्यावरण को नुकसान करता चीजों से हम हटा देंगे और ऐसे कोई काम नहीं करेंगे जिसको पर्यावरण को नुकसान होगा।
1: जी बिल्कुल सर, हम यही कोशिश करते रहते हैं और आकाशवाणी अपने हर कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे संदेश हमेशा देती रहती है कि हम लोग जागरूक बने और इन सारी चीजों को लेके थोड़ा सा अवेयर हों और अपने लेवल से अगर हमारे छोटे से प्रयास से हमारे पर्यावरण को बचाने में हम सहयोग कर सकते हैं तो हम तो अपनी भागीदारी देंगे ही देंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और खुद से शुरुआत करनी है। आज की युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा हमारे पर है, आज से हम सब इस काम में लग जाए।
1: जी जी बिल्कुल। वैसे बात करें अगर आकाशवाणी रेडियो से जुड़ने की, तो आप कब से जुड़े हैं सर?
0: मैं देखा जाए तो 17 साल का था, 8 सालों से मैं जुड़ा हूँ और आकाशवाणी ने बहुत कुछ दिया है। पहले रेडियो ट्रांजिस्टर पर सुनते थे, अभी मोबाइल पर, और ज्यादातर जो युवावाणी कार्यक्रम होते हैं आकाशवाणी के हर केंद्र पर, उसमें आप जो भी युवा अनाउंसर होते हैं बहुत सकारात्मक बातें करते हैं और युवाओं को प्रेरित करते हैं अच्छे अच्छे कार्य के लिए।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम जैसे युवाओं को रेडियो से सुनते हैं और आप हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम और अपने जैसे युवाओं को आगे भी प्रेरित करते रहें।
0: बिल्कुल बिल्कुल शिवानी जी, आप लोगों का बहुत अच्छा कार्य होता है और मैं इसका प्रशंसक हूँ और युवाणी कार्यक्रम तो मैं वर्षों से सुनता हूँ।
1: अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमें सुनते हैं और हमें इतना सराहते हैं, तो आप लोग का मोटिवेशन ही है जो हम लोगों को कार्यक्रम करने के लिए प्रेरित करता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सर आप इतने दिन से रेडियो सुन रहे हैं, तो आज एक सवाल अगर करूं कि रेडियो का जो सबसे ज्यादा लगाव कहें तो वो गीतों से है, तो आप क्या कहेंगे कि आपके लिए पसंद कौन सा है, पुराने गाने या नए गाने, आपकी पसंद क्या है?
0: देखा जाए तो मेरे को पुराने गाने बहुत पसंद है क्योंकि उसमें जो संगीत है वो मन को सुकून पहुंचाता है।
1: जी, क्योंकि पुराने गानों का जो म्यूजिक कह लीजिए, शब्द कह लीजिए और जो सिंगर्स थे उनके गानों में ठहराव कह लीजिए, वो आज भी जो है मन को और दिल को सुकून ही देता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: नमस्कार, आपने यूथ जंक्शन में कॉल किया है और आपकी बात आरजे दिव्या से हो रही है।
3: हाँ, मेरा नाम कुलदीप सिन्हा है
2: जी। आप कहाँ से हैं?
3: हम तो बनारस से ही हैं।
2: तो जी कुलदीप जी, आप क्या करते हैं आप बता सकते हैं, और आप आकाशवाणी कब से सुन रहे हैं?
3: आकाशवाणी काफी दिनों से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन लगभग 3-4 साल से सुनते हैं। और जो आप लोगों का जो आकाशवाणी ने जो युवाओं के लिए जो जगह दी है वो काफी अच्छा लगता है
2: जी। अगर आपको आकाशवाणी आप 2-3 साल से ही सुन रहे हैं, तो आपको आकाशवाणी पे रेडियो पे, यानी कि आपको आकाशवाणी से कैसे गाने सुनने पसंद है, या आपको पुराने गाने सुनने पसंद है या फिर आपको नए गाने?
3: आज खासकर थोड़ा सा नया तो इस समय बहुत ज्यादा म्यूजिक आते हैं, लेकिन पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं और हर लोग परिवार में भी सुनना भी पसंद करता है।
2: जी आपने बिल्कुल सही कहा, पुराने गानों में जो राग रहते थे, जो गीतों का बोल रहता था, वो एक अलग ही सुकून देता था ना। आपका कोई ऐसा सिंगर जो इसको आप पसंद करते हो, जिनका आप गाना सुनना चाहे, कोई ऐसा बात?
3: ज्यादातर तो हम लता मंगेशकर को सुनना पसंद करते हैं।
2: जी बिल्कुल, लता मंगेशकर तो हमारे देश की एक जानी मानी सिंगर थी, जिन्होंने बहुत सारे गाने ऐसे दिए जो हमारे दिल को आज भी छूते हैं।
3: बिल्कुल
2: जी, आपके हिसाब से पुराना गाना कौन सा है जो कि आपके दिल के बहुत करीब है?
3: ऐसे गाना तो मैं सुनता जरूर हूँ, लेकिन याद नहीं आते हैं कि कौन से गाना हम कहें कि आप सुना सकें।
2: जो आपको पसंद हो या फिर आप जिसको सुन के बहुत सुकून पाते हो, जिसको सुन के आप बार बार उसे सुनना चाहें, कोई बात नहीं,
3: मर्जी से सुना दीजिएगा कोई अच्छा सा गाना।
2: बिल्कुल,

0: तो दोस्तों, कैसी रही बातें दोस्तों से फोन पर? और आपको पुराने गीत पसंद हैं या नए गीत, ये हम आप पे छोड़ते हैं। आपसे जिन लोगों से बातें नहीं हो पाई हमारी, तो आप अपनी चॉइस के सॉन्ग के साथ खुश रहिए और सुनिए उसे, और सुकून भरा दिन जो है वो बिताइए। खैर, अभी हमारे साथ बने रहिए कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं दोस्तों, कभी-कभी एक शब्द इतना छोटा होता है लेकिन उसका अर्थ हमारे डेली लाइफ से बहुत गहराई से जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल शिवानी, और ऐसे ही रोचक शब्दों को समझाने के लिए हम लेकर आते हैं युद्ध डायरी। तो चलिए जानते हैं आज के शब्द।
0: और दोस्तों, आज का हमारा हिंदी का शब्द है निरसन। निरसन का अर्थ होता है किसी नियम, निर्णय, प्रस्ताव या व्यवस्था को रद्द करना या समाप्त कर देना। यानी जब किसी बात को आधिकारिक रूप से वापस ले लिया जाए या उसका प्रभाव खत्म कर दिया जाए तो उसे निरसन कहा जाता है। और अगर आप इसके वाक्य प्रयोग की बात करें तो कुछ यूं कहा जा सकता है कि विद्यालय प्रशासन ने खराब मौसम के कारण पिकनिक के निर्णय का निरसन कर दिया। या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं कि गलत जानकारी मिलने पर उस आदेश का निरसन कर दिया गया।
1: तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं आज के अंग्रेजी शब्द की, जो है ब्लैटेंट।
0: जिसके स्पेलिंग है
1: BLATENT। ब्लैटेंट का अर्थ होता है स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला या फिर बहुत ही जाहिर होने वाला चीज, खासकर तब जब कोई गलती, अन्याय या गलत व्यवहार इतना साफ दिखाई दे कि उसे नजरअंदाज करना भी मुश्किल हो जाए। और अगर इसकी हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें तो इट वॉज अ ब्लैटेंट वायोलेशन ऑफ द रूल्स, और वी कैन से द स्टूडेंट्स वर कॉट इन ब्लैटेंट एक्ट ऑफ चीटिंग ड्यूरिंग द एग्जाम।
0: तो दोस्तों, आज के हमारे यू डायरी के शब्दों को नोट करिएगा और इसे समय आने पर इस्तेमाल भी करिएगा। वैसे दिव्या, तुम्हें पता है इतिहास केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं बल्कि अनुभवों और सीखों का खजाना है।
1: बिल्कुल शिवानी, तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि 27 जून यानी कि आज के दिन इतिहास के पन्नों में क्या-क्या महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज है।
0: दोस्तों, आपको बता दें कि 27 जून 1880 को प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता हेलेन केलर का जन्म हुआ था।
1: दोस्तों 27 जून 1954 को दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र सोवियत संघ के ओब्निस्क शहर में शुरू किया गया था। दोस्तों अगर हमें बता दें तो ये जो ओब्निस्क है, ये दुनिया में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बिजली ग्रिड में ऊर्जा भेजना शुरू किया था।

0: दोस्तों इसी के साथ ये भी जान लीजिए कि 27 जून 1991 को स्लोवेनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा के बाद अपने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कदम बढ़ाया, या यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी दोस्तों।
1: दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं हमारे कल के सवाल का सही जवाब और उनके विजेताओं के नाम।
0: दोस्तों हमने आपसे कल सवाल किया था कि
1: केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना CGHS लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा किस संगठन ने शुरू किया है, और जिसका सही जवाब है वित्तीय सेवा विभाग।
0: और जिन लोगों ने ये सही जवाब दिया है उनके नाम है ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। इसी के साथ है मुकेश प्रजापति सिग्रा वाराणसी से।

0: वर्मा। इसी के साथ हैं मुकेश प्रजापति सिग्रा वाराणसी से। इसी के साथ हैं ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वन्ना भावना, बिंदु गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से हैं प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा। रिंग रोड नर्मदानगर मध्य प्रदेश से हैं सूरज वर्मा, नीरज शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा। नेपा नगर मध्य प्रदेश से हैं प्रभुदयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा, बसंती बाई और गणेश शिवदे। संगीत की नगरी खंडवा से हैं श्यामा बाई रायकवार, छोटू और नारायण रायकवार। इसी के साथ हमारी आज की सवाल।
1: दोस्तों, हमारा आज का आपसे सवाल है कि दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां कोई भी नदी नहीं बहती है?
0: तो जाइए हमारी इंस्टा आईडी youthAIR वाराणसी पर, या फिर आप हमें अपना जवाब मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है youthAIRVNS@gmail.com।
1: शिवानी, आज मोबाइल फोन हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन कई बार यही जरूरत धीरे धीरे आदत और फिर लत का रूप ले लेती है।
0: कभी कभी हम सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा या एक घंटा कब निकल जाता है। तो दोस्तों, अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा संभल कर करिए और इसकी लत से बचिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। और आज के युवाणी कार्यक्रम में बस इतना ही। आज आप सुन रहे थे मुझे शिवानी
1: और मुझे दिव्या।
0: स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप गोरखपुर केंद्र से भोजपुरी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार। समाचार के साथ ही हम सुकीर्ति असाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में बरिस 2014 के बाद देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा एक मॉडल के रूप में दिखाई दिला। प्रधानमंत्री की अगुवाई में आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद की समस्या खत्म पहले हुए। श्री योगी आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के महानगर इकाई के प्रशिक्षण वर्ग के संबोधित करत रहे। वहां के कहले कि भाजपा के सरकार में देश का सीमा की सुरक्षा मजबूत भइल हवे।
4: 2014 के पहले दुश्मन देश हमारे सैनिकों के साथ क्रूरता करता था, चोरी छिपे हमारे सैनिकों पर अत्याचार कर लेता था। सरकारें बोलती थी कि बोलना नहीं है क्योंकि कहीं संबंध खराब न हो जाए, यानी देश की कीमत पर संबंध बनाने की चिंता थी। लेकिन 2014 के बाद दुश्मन की आंख से आंख मिलाने की सामर्थ्य, और अगर दुश्मन भारत की सीमा का आक्रमण करता है, भारत के जवानों पर चोरी छिपे और छद्म रूप से हमला करता है, तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से भी कोई रोक नहीं सकता है।
3: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भारतीय जनसंघ के लेके भारतीय जनता पार्टी का स्थापना और एक प्रगति यात्रा का उल्लेख करत कहले कि पार्टी के कार्यकर्ता लोग दल से पहले देश और मनई से पहले समाज का भावना से कार्य करेला। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन कई के करीब 200 लोगों की समस्या के सुनले। ये मौका पर वहाँ के अधिकारियों के निर्देश दिया कि जनता की समस्या का समाधान जुड़ते कर जाओ। मुख्यमंत्री लोगों के भरोसा दियावलें कि सरकार आवास का व्यवस्था कैले से लेके बीमारियों के इलाज में पुरहर सहायता देवे बदे संकल्पित हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर के जेवर और यमुना सिटी सेक्टर 10 में दुई को खास निवेश परियोजना का नई धैले। जेवर में आयोजित भइल अंबर इंटरप्राइजेज आ एक्सेंट के सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर
4: था। सरकारें बोलती थी कि बोलना नहीं है क्योंकि कहीं संबंध खराब न हो जाए, यानी देश की कीमत पर संबंध बनाने की चिंता थी। लेकिन 2014 के बाद दुश्मन की आंख से आंख मिलाने की सामर्थ्य, और अगर दुश्मन भारत की सीमा का आक्रमण करता है, भारत के जवानों पर चोरी छिपे और छद्म रूप से हमला करता है।

0: एमपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथा संस्करण का कर्टन रेजर सेरेमनियों में शामिल भइले। ये मौका पर वहां के 2479 करोड़ रुपया की लागत वाला 70 गो विकास परियोजना का लोकार्पण कैली आ नई धैली। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी और औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदियो मौजूद रहले। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहलावे कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के अगला 2 बरिस में देश भर के 500 शहरन और कस्बा में फैलावल जाये। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करत श्री शाह ये पहल के सरकारी क्षेत्र में एगो क्रांतिकारी कदम बतौले।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे साथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी अभी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: प्रदेश का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज अयोध्या के वशिष्ठ कुंड वार्ड में ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा के लगे नवका बनल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कैले। ये मौका पर वहां के काली के आंगनबाड़ी केंद्र लैकन के पोषण शिक्षा और महिला लोगों के मजबूत बनौले का खास जरिया हो। उद्घाटन के बाद वहां के केंद्र का निरीक्षण कैलेन और लैकन से बतिया के उनकर उत्साह बढ़ौलन। राज्यपाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगिन आशा बहुवन और स्थानीय महिला लोगिन से बातचीत कैलेन। मौसम विभाग के हिसाब से बयाने रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिला में मानसून दस्तक दे। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण, आइए आपको बता दें आज के शेष और कल यानी 28 जून रविवार 2026 को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनिएगा रात 10 बजे से, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों की महफिल सजेगी कार्यक्रम अंजुमन में रात 9:30 पर। रात 8 बजे सुगम संगीत की कलाकार होंगी आरजू बानो। स्वरबेला कार्यक्रम में शाम 7:31 पर सुनिएगा हरे राम मिश्रा का काव्य पाठ। कृष्ण जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनिएगा विनोद कुमार यादव से दिलीप यादव की बातचीत। बातचीत का विषय होगा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं। और इसी कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं प्रेम लाल भारती का गाया लोकगीत। फिल्म संगीत हम लेकर आएंगे अब से थोड़ी ही देर बाद, यानी शाम 6:10 पर। शाम 7:45 पर कार्यक्रम रसरंग में और रात 8:15 पर कार्यक्रम रसमाधुरी में। तो ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब एक नज़र कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुनिएगा दिन 11 बजे से। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण होगा शाम 6:30 पर। ये दोनों कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से संप्रसारित करेंगे। उर्दू कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा 9:30 पर। युवा दोस्तों की युवाणी सजेगी शाम 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात, युवाणी क्विज, हमारे प्रेरणा स्रोत, यूथ डायरी, विश्व घटना चक्र, रोज

0: कर सूचना और फिल्म संगीत। बाल गोपाल सुनेगा शाम 5 बजे से, जिसमें सुषमा शर्मा के वार्ता का विषय होगा मोबाइल की लत और बच्चों का भविष्य। आरोग्यम स्वास्थ्य संबंधी ये फोन इन कार्यक्रम सुनेगा दिन 2:30 पर, विषय होगा गठिया रोग सावधानियां और सही इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय, जिनसे बातचीत करेंगे शिखा श्रीवास्तव। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग होगा दिन 1:35 पर। पत्र के लिए धन्यवाद। आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम होगा दिन 1:15 पर। आपके ईमेल पत्रों के साथ होंगे अरुण पांडे और सना सलीम। हेलो फोन इन फरमाइश सुनिएगा दिन 12 बजे से, आपके फरमाइशों के साथ होंगे अरुण पांडे। सामुदायिक गान शिक्षा पाठ कन्नड़ सुनिएगा सुबह 10:10 से सुबह 9:50 पर। लोक संगीत के कलाकार होंगे बच्चा लाल यादव और साथी। मधुरिमा सुनिएगा सुबह 8:45 पर और गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7 बजे से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर सुनेगा उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का गायन। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुनेगा सुबह 6:40 पर। जन्मजात हृदय रोग कारण और बचाव के उपाय, इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर प्रतिभा राय। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:35 पर। विचार बिंदु सुनिएगा सुबह 6:30 पर। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना सुनिएगा सुबह 6:10 पर। सामयिक कृषिकार, इस विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह कार्यक्रम खेती की बातें में सुबह 6:05 पर। तो ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। आपकी सेवा में है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आइए सुने फिल्म संगीत, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: सबसे पहले आइए सुने निशान फिल्म का ये गाना।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गुलशन भावरा के बोल आप सुन रहे थे। राजेश रोशन का ये संगीत था, फिल्म निशान। कार्यक्रम का अगला और आखिरी गाना आपके रेडियो सेट पर। आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी की रचना, अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाजें। फिल्म का नाम आप जानते हैं, लाल दुपट्टा मलमल का।

0: अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल आप सुन रहे थे। संगीतकार थे आनंद मिलिंद और इस गीत को हमने लिया था फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का से। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत हम फिर लेकर आएंगे शाम 7 बजकर 45 मिनट पर कार्यक्रम रसरंग में और रात 8 बजकर 15 मिनट पर कार्यक्रम रसमाधुरी में। तो सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम रात 11 बजकर 10 मिनट तक। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6 बजकर 20 मिनट होने वाले हैं। आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिदिवसीय आधिकारिक प्रवासार्थं सेशेल्स देशस्य विक्टोरिया नगरे सम्प्राप्तः। तमिलनाडु राज्ये वाइको इत्यस्य नेतृत्वे एमडीएमके दलेन डीएमके दलेन सह स्वीय नववर्षीयं गठबंधनं समाप्तम्। प्रसिद्धः तमिल चलचित्र अभिनेता निदेशकश्च के भाग्यराजः अद्य चेन्नय्यां पञ्चत्वे विलीनः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः आकाशवाण्याः मन की बात इति जनप्रिय मासिक कार्यक्रमे देश विदेशस्य जनैः सह स्वीयं मनोगतं विनिमयीकरिष्यति। अमेरिका देशस्य विदेश मंत्री मार्को रूबियो अवदत् यत् ट्रंप प्रशासनं भारतं संयुक्त राज्य अमेरिकायाः अत्यन्तं निकटतमेषु रणनीतिक सहयोगिषु अन्यतमं मन्यते। अपि च क्रीडा वार्तासु फीफा विश्व कप स्पर्धा मालिकायां मिस्र देशः ईरान देशेन सह अंतिमे जी समूहस्य द्वन्द्वे 1-1 इत्यंकांतरालेन समतावाप्य प्रथमतया फीफा विश्व कप स्पर्धायाः नॉकआउट इत्येतस्मिन् चरणे प्रविष्टः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिदिवसीय प्रवासार्थं सेशेल्स देशस्य राजधान्यां विक्टोरिया नगरे सम्प्राप्तः। सामाजिक अन्तर्जालीय प्रेषिते संदेशे श्रीमोदिना विमानपत्तने सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन कृत भव्य स्वागतस्य भूरि भूरि प्रशंसा विहिता। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् सेशेल्स देशः हिंद महासागरे भारतस्य एकः सामुद्रिक सहयोगी दृढः मित्रदेशश्च वर्तते। मोदी अवोचत् यत् सः अस्याः यात्रायाः माध्यमेन उभयोर्देशयोः दीर्घकालीन सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं नागरिक कल्याणाय सहयोगं वर्धयितुं संवादं प्रति आशान्वितो विद्यते। अनेन सहैव तेन विमानपत्तने भारतीय प्रवासी जनसमूहाय अपि हार्दिकं स्वागतार्थं धन्यता वचांसि ज्ञापितानि। गदितं च यत् भारतीय प्रवासीभिः यथा स्वसंस्कृतिः संरक्षिता सा श्लाघनीया वर्तते। अवधेयास्पदं वर्तते यत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेशेल्स देशस्य ऐतिहासिक 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोहस्य मुख्य अतिथिः भविष्यति। तमिलनाडु राज्ये वाइको इत्यस्य नेतृत्वे एमडीएमके दलं डीएमके इत्यनेन सह नववर्षीयं गठबंधनं समापितवान्। दलस्य

0: तो पंचो राम राम
1: मीना भैया।
0: हाँ रमेश्वर भैया,
1: भैया देखा था कि साथे साथे झोला पोटरी में कुछ सौदो ले ले हवा, चल चल लावत हवा। भैया का हाल चाल है?
0: रमेश्वर भैया देखा बात एकदम सही कला हो। ये चवन खाम का समय चला था ना, अब गठरी में लटका के लेके आवत है आदमी, अब पेड़े का छाए ढूंढत है आदमी, कहीं ना कहीं पेड़े का छाव मिल जाए कि कम से कम आदमी ठहर ले, स्वस्थाई ले।
1: बिल्कुल भैया, समझत तो गुड़ महका था कितनो पुतरी में बदले है, तो का से ओकर जौन मिठास है, ओकर जौन सुगंध है ना, वो देखा आवत है बहरे तक। यह है कि एक भेली बचौले रहे हमहू के, जब कार्यक्रम समेटल जाये तो ओकरे बाद पानी पियल जाई। और बतावा खेत खरिहान का हाल चाल है?
0: रमेश्वर भैया देखा खेत खरिहान का तो इसमें दऊ बड़ा दिन से नहीं आवत हूँ।
1: जोहत है सब?
0: हाँ देखा भाई, सब मनई जौन है ना खेत में जोहत है कि कब दऊ आव, तो कम से कम खेत का कलर बदलना।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, बहुत से किसान भैया लोग अपन नर्सरी डाल भी चुकल हों, खेत का जौन भी अपन तैयारी कुछ का किसान भैया लोग क ले ले हों, जिनके यहाँ पानी का लहान बा, उनकर बिया पड़ गल है।
0: पड़ गल बा
1: आज जे भैया अभी दही के सहारे बा, या तनी लखत है कि ऐसा न हो कि तनी और देरी हो जाए तो जौन बिया पड़ जाए तो ओकरे फिर जियावे बदे ढेर मेहनत करे के हो। तो भैया देखा खेती लहान जुहान कहा, दही के भरोसे है दीना भैया। एमन तो देखा एक अंग्रेजी में कहल जाला ना रिस्क लेब, तो देखा हिंदी में ओके ठाठ में हमन बोली ला जा कि भैया करा जौन हो तो देखल जाई। तो देखा दही हम निराश करते नहीं, जौन कहनी भी कहल गल बा कि आगे का खेती आगे आगे, आ जौन बात का खेती होला वो भागे
0: भागे जो होला।
1: आल तो आयल नहीं भैया, समझला कि बहुत नुकसान उठावे के पड़ला। तो देखा जौन भी एक तरह समझा कि प्रगतिशील किसान हम या सकारात्मक सोच का किसान भी लोग हम, वो लोग देखा अपन पानी का लहान जहान जेकर बा ते अपन भैया नर्सरी डाल दिलस, अपन बिया डाल दिलस। बहुत से भैया लोग एकदम तैयारी पर हम, एकदम मेड़ा डाणे पर एकदम हये हम कि बस जो हत हम कि आजकल में दही चू जाए।

0: बिया पड़ जाए। अब
1: हाँ
0: कुछ किसान भैया लोगन का तो देखा भैया पानी का लहान नहीं हो, तनी तीरे बा खेत या वहाँ कोनो बोरिंग सोरिंग का जुगाड़ नहीं,
1: नहीं बा
0: तो जोन भी सरकारी सहायता के माध्यम से जहाँ नहर नलकूप बा वो सुविधा नहीं, तो देखें ऐसे किसान भैया लोगन के तो दही के भरोसे रह के पड़ाला। लेकिन दिन भैया हम बड़ा उम्मीद और विश्वास से कहत है कि दही चुई हैं, समय से चुई हैं, अब समय आ गल है।
1: रमेश्वर
0: बहुत
1: भैया।
0: सब प्रदेश में, महाराष्ट्र हो गल, दिल्ली हो गल, अपने आसपास के बहुत से प्रदेशन में मानसून आ गल है, अब बरखा बुन्नी चालू हो गल है। हमहनों का देखा एकदम नजिक्के बा मानसून, जहिया न हमन कर यहाँ बैठ
1: हाँ,
0: जाए।
1: दो चार दिन में।
0: लेकिन दिना भैया खेती के साथे साथे देखा
1: हाँ
0: हम आज
1: हाँ
0: बात करल चाहब बारी पर भी, कि देखें जौन भी किसान भैया लोग खेती या बारी दोनों का क्रम बनौले रहना, देखा उनके कभो राते के माथे पर पसीना नहीं आवत कि काल का होई, कैसे दो पैसा आई। कहले का मतलब ये
1: एकदम।
0: कि जौन धान गेहूं बेचात बा
1: हाँ
0: तो उन तो 4 महीना बाद ना ओकर पैदावार में मिल के पैसा आवत है।
1: हाँ
0: अब भैया जैसे जौन किसान भैया लोग गेहूं बेचले हुआ, समझ ला कि उनकर अब जब ही चाउर बेचाई तब ना फिर अगला पैसा उनका
1: तब ना
0: आई।
1: अगला पैसा आई।
0: आ ई कुल का समस्या दूर करे बदे बारी का जो काम है ओमन देखें कि आपका जो तर तरकारी है 50-60 दिना में तैयार हो जाला और आपका सौदा बाजारे जाए लगा। अगर रोज एक खांची दो खांची जात बा, एक पसेरी दो पसेरी सब्जी दात बा, तो आपके हमेशा 4 पैसा का आगम हो जाला।
1: एकदम नीमन
0: और
1: बात कहला रमेश्वर भैया।
0: हाँ
1: जब दो पैसा का देखा आगमन हो जाला ना,
0: हाँ हाँ
1: तो किसान भाई लोगन के चेहरा पर जौन मुस्कान आवला,
0: हाँ हाँ
1: बहुत अच्छी मुस्कान
0: वो
1: होला,
0: देखत बनाला। हाँ
1: देखत बनाला। भाई
0: हाँ
1: घर परिवार सब वही पे रोजी रोटी हमन का टिकल बा।
0: बिल्कुल। आप बाजारे में जोनी कुल सौदा जा था,
1: हाँ,
0: अब ओके गाहक भी चिन्ह चिन्ह के खरीदत
1: चीन
0: हवा।
1: चीन के एकदम
0: बात
1: सही
0: करत
1: कला।
0: है
1: हाँ
0: हम जैविक विधि से जोन खेती होता, ओकर जोन टमाटर बा, बैगन बा, भिंडी बा, कोहड़ा बा, नेनुआ बा, लौकी बा, जोन भी तर तरकारी है, वो अगर खाली खाली अगर धुआंधार अगर खाली रासायनिक खाद से द्वारा अगर वो पैदा कैल गल है, तो देखें ओकर असर अलगे बोला ला। बित्ता बित्ता भर का समझ ले कि मर्चा हो जाई, आ एक हाथ दू हाथ का जोन है समझ ले ककड़ी हो जाई, लौकी हो
1: लौकी
0: जाई।
1: हो
0: अब तो
1: जाइए।
0: नेनुआ ऐसा हो जात बा नई प्रजाति में कि जान ल कि वो समझ ल कि ओके चिन्हे में दिक्कत हो जाला कि नेनुआ है कि का है। कहे का मतलब कि देखें समय का मांग है, अपन प्रगतिशील किसान भैया लोग वह के खेती करत हुआ। लेकिन जौन स्वाद जैविक विधि से खेती कैले में है,
1: हाँ
0: जैसे जौन भी अपन जैविक खाद है, कंपोस्ट खाद है, और जौन मित्र कीट का जौन हम उनकर जौन खाद है, नीम आधारित जौन खाद तैयार होता है आजकल कीटनाशन का उपाय करे बदे, जौन भी कीड़ा हवा उनकर नाश करे बदे। तो कहले का मतलब कि वैज्ञानिक भैया लोग भी, कृषि विशेषज्ञ भैया लोग भी, और जौन एक तरीके से होशियार किसान भैया लोग हवा, वो लोग भी ये बात के बहुत स्वीकार करत हवा कि निश्चित अगर स्वास्थ्य का ख्याल रखे के है, अगर थरिया में पुष्टि बढ़ावे के है, आ बीमारी से दूर रहे के है, तो जैविक विधि का खेती अपनावे के चाहिए। एमन नीम आधारित जौन कीटनाशक दवा है या जौन भी हमान का फसल चक्र रहा
1: हाँ,
0: कि लगातार एक कै फसल मत लेत रहा, वहू से कुछ समस्या आवेले।
1: समय समय पे ओके बदलत रह के चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, जौन आप बात कहना हो ना जैविक खेती वाला रमेश्वर भैया, आजकल जौन रसायन के छिड़काव होत हो, जड़ में रसायन का प्रयोग होत हो, बहुत समस्या आवत हो। हालांकि पैदावार जौन हो ज़्यादा तो होत हो, लेकिन ग्राहक उसे परेशान हुवन, लोग
0: हाँ
1: परेशान हुवन, स्वास्थ्य पे जौन है बहुत बड़ा असर पड़ला।
0: बिल्कुल बिल्कुल। ये बात के हमेशा अपन वैज्ञानिक भैया लोग भी सहेजल करें ना कि भैया नीम आधारित अगर खाद का प्रयोग हो जाए, कंपोस्ट आधारित अगर खाद का प्रयोग हो जाए, गोबर खाद का प्रयोग हो जाए, तो ये कुल जौन भी जैविक विधि से अपन कीट रसायन का हमन प्रयोग करत है उनके नियंत्रण करे बदे, तो ऐसे का होला कि लागत भी कम गिराला। आज के ये आधुनिक युग में के कितना बढ़िया कमात है वो जहाँ तक हम समझत है प्रबंधन
1: हाँ
0: में
1: हाँ
0: ओके
1: हाँ
0: बढ़िया नहीं मानल जाला।
1: नहीं
0: आपका खर्चा और कमाई के बीच में आपका बचत कितना है, ये बहुत बहादुरी का काम
1: बहुत
0: होला।
1: मायने रखा
0: पता
1: भैया।
0: चलल कि अगर मान ल कुल अपन दर दवाई ले करके आप कोनो खेत में मान ल 1 बिसा भिंडी रोप

0: लेवा
1: हाँ
0: देना भी है।
1: हाँ
0: और मन दर दवाई छिड़क के करके मान लो अगर 2,000 अगर आपका लागत गई
1: हाँ
0: और आपका जो न बचत है वो 1,000 आयल, जो न सौदा बेचेले के बाद 3,000 कमाई भल, 2,000 लागत लग गल, तो आपका बचत 1,000
1: एक
0: भल।
1: हजार का
0: और
1: भाई।
0: वही कहीं अगर जैविक खाद का प्रयोग कैले, अपन गोबर खाद का प्रयोग
1: हाँ
0: कैले, 2 मुड़ 4 मुड़ गैया गोरू रखले हवा, तो उसे तेहरा फायदा होला। पहला ही फायदा कि अपन शुद्ध दूध दही अपने घरे मिल जाला।
1: मिल जाला।
0: दूसरा फायदा होला कि शेर दूसरे अगर बचत हा तो ओके नाप देला तो समझ ला कि
1: दो पैसा वहरो से
0: जौन
1: आई।
0: भी अपन खर्चा ऊपरी ऊ निकल जाला। आ तीसरा ई कि जौन ओकर गोबर का खाद होला वो अपने तर तरकारी में उपयोग हो जाला। तो जैसे मान ला अपन जैविक खाद का प्रयोग कैला तो खर्चा गिरल 1,000 रुपया 500 रुपया, आ बाजारे का सौदा आ गल 3,000 का बेच के, तो जौन 3,000 कमैला 5,000 लगौला तो यहाँ बचत आपका 2,500 का
1: दो
0: हो
1: ढाई
0: गल।
1: हजार रुपया हो गल भाई।
0: तो
1: देखा यही बचत से जो है रमेश्वर भी है ना,
0: हाँ
1: आदमी का अपन अपन खर्चा जो है ना पूर्ति हो
0: हाँ
1: जाले,
0: बिल्कुल। और जब बचत बढ़ाला तो मनोबल बढ़ाला, जब
1: मनोबल
0: मनोबल
1: बढ़ेला।
0: बढ़ाला तो काम करे का मन कराला। कौनो भी चाहे खेती का काम करा, बाड़ी का काम करा, पशुपालन का काम करा, चाहे जौन भी कृषि आधारित अपन व्यवसाय है जेके आप अपना सकल है, वो कैले में अगर आपके 2 पैसा मिलत है तो उसे और भी लोग भी देख के सीखन है। कहल भी गल है कि अगर आपका जो अनुभव है
1: हाँ
0: खेती में, जो अपन एक तरीके से कि प्रगतिशील किसान भैया लोग अपन अनुभव लेकर के प्रगति करत हुआ, दूसरे के सिखवले पर जहाँ एक तरफ बरकत मिलला,
1: हाँ
0: दूसर का आमदनी बढ़ी, तो जरूर है तो वो शाबाशी देही,
1: शाबाशी
0: आशीर्वाद
1: दे ही,
0: देही,
1: आशीर्वाद दे ही।
0: आ उसे आपके भी बहुत कुछ सीखे के मिली, आ मान सम्मान बढ़ी तो अलगे से बढ़ी।
1: रमेश्वर भैया बात तो बहुत देखा निमन कला है
0: हाँ
1: भाई। साथे साथे स्वास्थ्य का तो ख्याल रखे के पड़ी।
0: हाँ
1: जैविक
0: हाँ हाँ
1: विधि जोन खेती होला उसी ना रमेश्वर भैया, देखा खेत का जोन मट्टी है
0: हाँ हाँ
1: ओकर उर्वरा शक्ति जोन है
0: हाँ
1: बड़ा एकदम बढ़िया रही, स्वस्थ
0: बिल्कुल
1: रही, ताकि जवन भी फल अगर पैदा हो, सब्जी पैदा हो,
0: हाँ
1: उस शुद्ध हो एकदम।
0: बिल्कुल सही बात सहेजल है किसान भैया लोगन के। देखे माटी के जांच समय समय पे किसान भैया लोग करावन है, करावे के चाहिए यदि आपका उत्पादन घटत है तो। लेकिन जोन बात कहला है कि जितने बढ़िया खाद का प्रयोग हुई जैविक खेती में उतने माटी माई बीमार न हुई हैं,
1: बीमार ना हुई हो।
0: उनकर उर्वरा शक्ति बढ़ी, आपका पैदावार बढ़ी, आ लागत भी कम गिरी। तो जैविक विधि से खेती कैले पर बहुत सा फायदा है। आपका अगर आप बाजारे सौदा ले जात हवा तो आपका ग्राहक भी बढ़िया है।
1: ग्राहक भी
0: काहे से कि
1: बढ़िया।
0: हम तो ऐसन भी बाजार मंडी देखले हई जमन लोग खोजत हवा कि जन देसी ननुआ केहर मिली, देसी चौराई केहर मिली, देसी पालक केहर मिली, देसी टमाटर केहर मिली, तो ये जो देसी लौकी केहर मिली। अब जैसे हमन के लड़कैया में पहले जब लौकी का लौआ का कतरा खवा जो बेसन में छान के खाए लगा, वो देखें जितना नरम जितना छोट नुआ का रही लौकी का रही उतना बढ़िया। अभी तो ननुआ का कलौंजी का बात है,
1: हाँ
0: जितने देसी ननुआ लौकी रही ओकर कलौंजी उतना बढ़िया
1: बहुत
0: स्वादिष्ट आई।
1: बढ़िया स्वादिष्ट है ये। देखा रमेश्वर भैया
0: हाँ
1: एक चीज हम देखत हैं कि पहले के समय में अगर हमन खेती में जाए जा तो मार कछुआ देखा।
0: हाँ, मित्र
1: हाँ
0: कीट हुआ भैया,
1: मित्र कीट हुआ
0: वो
1: कि
0: हवा
1: किसानों
0: पानी
1: का,
0: खेते के अंदर पहुंचावल करन है।
1: किसान का मामा भी कहल जाला। अब का हो कि इतना ये रासायनिक उर्वरक डाल के ओके सब मुँह देत हुआ,
0: अब खोजले नहीं
1: खोजले
0: मिलते
1: ना
0: तो
1: मिलत हुआ।
0: बिल्कुल। लेकिन बहुत से पंच भैया लोग सजग हो गल हुआ, जागरूक हो गल हुआ। आ देखें जागरूकता में एक और काम करे के चाहिए कि बहुत से सरकारी योजना ऐसा है जो किसानी के आगे बढ़ावा दे,
1: हाँ
0: बहुत से किसान भैया लोगन के अनुदान देवे के तैयार हुआ। तो यही क्रम में आज हम जानल जाए कि सरकार द्वारा संचालित जो विभिन्न योजना है
1: हाँ
0: वो का कहा, अपन दिलीप कुमार यादव भैया बतियावत हूँ, विनोद कुमार यादव भैया से ये जोन बतकही है वो यह है, बड़ा पूर्ण जानकारी है कि कैसे सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जोन योजना है वो का हमन जानल जा, अवा एके सुनल जा,
1: तो
0: गुनल जा।
1: किसान सुनवाए दे।
2: किसान भाइयों नमस्कार। आज हमारे बीच स्टूडियो में खास मेहमान हैं जिला कृषि अधिकारी चंदौली श्री विनोद कुमार यादव जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी वाराणसी में।
3: धन्यवाद।
2: किसान भाइयों आज हम जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं आपके लिए जो लाभकारी योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसी क्रम में हम सबसे पहले सर आपसे जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो चल रही है, इससे हमारे बहुत से किसान फायदा ले चुके हैं।

0: अगर कोई किसान वंचित रह गया अभी भी, तो वो कैसे जुड़ सकता है इस योजना में?
1: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें एक कृषक परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रूपये दिया जाता है। अगर कोई किसान भाई इसमें इससे छूट गया है तो वो PM किसान.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करा करके तहसील स्तर पर सत्यापन होने के बाद इसका लाभ प्राप्त कर सकता
0: जी
1: है।
0: जी तो जो किसान भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से छूट गए, तो तहसील लेवल से संबंधित अधिकारी से मिलके और अपना नाम जुड़वा सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण योजना चल रही है, फार्मर रजिस्ट्री योजना है, इसमें किसान कैसे जुड़ते हैं और क्या उनको लाभ होता है?
1: फार्मर रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें किसानों को जो है उनका आधार नंबर चाहिए और खतौनी चाहिए और आधार से लिंक मोबाइल नंबर किसान का चाहिए, तो
0: जी
1: ये किसी भी जनसेवा केंद्र पे जा करके अपनी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। और इससे फायदा ये होता है कि उनको किसी भी कृषि सब्सिडी, कृषि से संबंधित कोई भी सब्सिडी इससे फार्मर आईडी से मिल जाएगी उसको, और अन्य दस्तावेज या खतौनी या कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं ले जाने की जरूरत
0: जी
1: नहीं है। उसकी सिर्फ आईडी नंबर होगी तो कहीं पे एक क्लिक पे आईडी क्लिक करेगा, उसका किसान का पूरा ब्यौरा सामने आ जाता है। इससे किसानों को ये KYC भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। KCC के माध्यम से अधिकतम 2 लाख तक का लोन भी मिल जाएगा किसान भाई को इसमें,
0: जी
1: और कृषि से संबंधित जो MSP खरीद किया है पंजीकरण में भी आसानी रहती है। ये
0: जी
1: बहुत ही अच्छी योजना है
0: जी तो किसान
1: और
0: भाई लोग
1: किसान
0: आप
1: भाइयों
0: इस
1: से मेरा
0: योजना से जुड़
1: आग्रह है कि वो अपनी फार्मर आईडी जरूर बनवाएं,
0: जी
1: और कहीं कोई समस्या है तो हमारे कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं, उनका त्वरित निदान किया जाएगा।
0: तो हमारे किसान भाई अगर आप चंदौली जनपद से हैं, तो हमारे साथ श्री विनोद यादव जी हैं, कृषि विकास अधिकारी। तो अगर किसी तरह की आपकी समस्या होती है फार्मर रजिस्ट्री योजना में भाग लिया जुड़ने के लिए, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनके कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और आगे इसी क्रम में हम बात करते हैं कि फसल अवशेष प्रबंधन जो एक बड़ी समस्या है, इसको कैसे निपटते हैं आप लोग?
1: फसल अवशेष प्रबंधन मतलब ये योजना ऐसी है, चूंकि हमारे यहाँ चंदौली जनपद में MTU 1729 की खेती बहुतायत मात्रा में होती है, जिसका ड्यूरेशन 160 से 165 दिन होता है, और गेहूं की बुआई के लिए समय बहुत कम बचता है, लेट होता है। तो इस बीच में बेहतर मैनेजमेंट करने के लिए, चूंकि मजदूरों की कमी होने से सारे किसान भाई कंबाइन से ही धान की फसल की कटाई कराते हैं, और उसमें बहुत सारा अवशेष बच जाता है जिसको वो लोग जला देते हैं। उस अवशेष का बेहतर उपयोग करने के लिए एक क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट योजना, जिसे हम फसल अवशेष योजना कह रहे हैं, लाई गई है कि उसका बेहतर मैनेजमेंट किया जा सके यंत्रों के माध्यम से, और उस पर किसान भाइयों को अनुदान भी दिया जाता है 50%। और इससे होता है कि फसल जब जलाते नहीं है तो हमारी उर्वरता भी मिट्टी की बची रहती है, बेहतर समय से 10-15 दिन का समय भी बच जाता है, जिससे किसान बुआई रबी की समय से गेहूं की बुआई कर लेते हैं।
0: और किसान भाई लोग इस योजना से अगर आप लोग जुड़ते हैं, तो जो पर्यावरण जो दूषित होता है, इससे भी आप बहुत हद तक बचा जा सकते
1: हाँ,
0: हैं।
1: पर चूंकि जब जलाते हैं तो उसका धुआं जो आसमान में जाता है जो पर्यावरण को प्रदूषण करता है, दूसरे मिट्टी में जो भी जीव जंतु होते हैं वो भी इसमें जल
0: नष्ट हो
1: करके
0: जाते हैं।
1: नष्ट हो जाते हैं, जो किसी भी तरीके से उचित नहीं है।
0: और एक महत्वपूर्ण योजना है खेत तालाब योजना, तो इसमें क्या है, इस योजना के बारे में हमें आप बताएं?
1: ये भूमि संरक्षण विभाग द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। इसकी कुल लागत 1,05,000 रूपये होती है, और ये 22×20×3 मीटर की गहराई, मतलब इसका 22 मीटर लंबा होता है, 20 मीटर चौड़ा होता है, 3 मीटर गहरा, किसान के व्यक्तिगत जमीन पे इसकी खुदाई कराई जाती है, और किसान को इसका 50% 52,500 रूपये कृषक अंश के रूप में अनुदान
0: तो
1: दिया
0: वो
1: जाता
0: तालाब
1: है।
0: बनवा सकता है, उसमें मछली
1: तालाब
0: पालन।
1: बना करके उसमें जल संचय कर सकता है। इसका मुख्य रूप है कि बारिश के पानी को जल संचय कर किया जाए और उस पानी को खेती के सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाए। इसके अलावा वो इसमें सिंघाड़े खेती या मछली पालन, बहुत सारी योजनाओं से मतलब लाभ ले सकते हैं।
0: इसी योजना में हम बात करते हैं सर आगे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो हेल्थ सॉयल कार्ड होता है, इसके बारे में बताइए किसानों के लिए कैसे लाभकारी है?
1: मृदा स्वास्थ्य कार्ड मतलब ये योजना ऐसी, चूंकि हमारे यहाँ मतलब जमीनों में क्या पोषक तत्व, मतलब कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्या है, कार्बन की मात्रा क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा क्या है, फास्फोरस की मात्रा क्या है, चाहे मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फर, जो मतलब जो भी पोषक तत्व तो जमीन में पाए जाते हैं वो हमारी जमीन कितना है, इससे जब वो अपना जांच करा लेते हैं तो उस जमीन में पता चल जाता है कि किस पोषक तत्व की मात्रा की कमी है, तो वो उसकी ही उतनी ही मात्रा का प्रयोग करके खेती की लागत भी कम कर सकते हैं, उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं, और मिट्टी की उर्वरता भी इससे बनी रहती है।
0: जी, इसको ना कराने से हमारे

0: किसान भाइयों का जो होता है, जैसे यूरिया डाई का जो उपयोग करते हैं अधिक मात्रा में करते हैं, किसी को जरूरत किसी चीज की रहती है, वो मात्रा अधिक दूसरे चीज की ओर करते हैं, तो उनको पूरा फसल पे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता
1: नहीं
0: है।
1: भी, चूंकि उसकी लागत बढ़ जाती है। हमें यूरिया की जितनी मात्रा, उससे दोनी मात्रा यूरिया का प्रयोग हो रही है, डीएपी की भी मात्रा प्रयोग हो रही है, जबकि उसकी जमीन में जरूरत की मात्रा कम है।
0: कम है
1: तो इससे एक तो लागत भी बढ़ जाती है, दूसरी हमारी जमीन भी अनुर्वर हो जाती है, मतलब उसकी उर्वरता भी उससे प्रभावित हो जाती है।
0: जी। बीच बीच में किसानों के कुछ समस्याएं भी होती हैं, जैसे किसी का फसल नष्ट हो जाता है या कोई आपदा आ जाती है तो फसल खराब हो जाती है, तो इसके लिए कोई अच्छी योजना हो हमारे किसान भाइयों के लिए तो बताएं।
1: इसके लिए एक फसल बीमा योजना है। अगर किसी किसान का, अगर उसने बीमा करा रखा है, तो 14,447 नंबर टोल फ्री नंबर है, इस पे वो फोन करके तुरंत बता सकता है या कृषि विभाग से संपर्क कर सकता है। 72 घंटे के अंदर कृषि विभाग या फसल बीमा का एजेंट जा करके उसका सर्वे करेगा। अगर वास्तविक लाभ हुआ होगा तो उसको फसल
0: तो
1: बीमा की
0: उसमें किसान
1: क्षतिपूर्ति।
0: को पॉलिसी पहले लेनी पड़ती है कि सबके लिए रहता
1: ना
0: है?
1: नहीं, उसको लेनी पड़ती है। उसको जैसे खरीफ फसल के लिए है, धान मक्का ज्वार बाजरा, 2% उसको टोटल प्रीमियम का देना पड़ेगा। रबी में 1.5% है गेहूं की फसल के लिए, और इसकी जो बीमा बीमित राशि वो बहुत कम है।
0: तो ये किसान भाई बीमा किससे, मतलब किसके थ्रू जुड़ सकते हैं? बीमा कंपनियों से उनको संपर्क करना पड़ेगा,
1: हाँ
0: तो जहां से उनका क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड बना है उसी बैंक
1: हाँ
0: से संपर्क कर
1: हाँ
0: सकते
1: बैंक
0: हैं
1: में,
0: और
1: हम
0: उसी योजना का भी लाभ ले
1: ले
0: सकते हैं।
1: सकते हैं।
0: जी। अभी हमारे जिले में, आसपास के जिलों में भी उर्वरक उपलब्धता के बारे में बताइए, क्या स्थिति है?
1: हमारे यहाँ जनपद चंदौली में पिछले खरीफ सीजन में उर्वरक की बहुत ही बेहतर व्यवस्था हमने करवाई थी। कहीं पे
0: जी।
1: कोई भीड़ की या कोई इस तरह की कोई नेगेटिव क्लिप मीडिया में नहीं आई।
0: क्योंकि पीक सीजन होता है तो किसानों के सामने थोड़ी ये समस्या रहती है।
1: हमने प्राइवेट और पीसीएफ दोनों का एक बेहतर समन्वय बनाया था, और दोनों जगह पर्याप्त मात्रा में हमने स्टॉक जो है हम बराबर उपलब्ध कराते थे। जिस किसान भाई को जितनी आवश्यकता थी उन्होंने उतने उर्वरक का लेकर के बेहतर प्रयोग किया, और हम आगे भी प्रयास करेंगे कि हमारे किसान भाइयों को कहीं कोई उर्वरक से संबंधित कोई भी दिक्कत न आए। और मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि चूंकि समय अब चल रहा है और चना मटर मसूर इन सब फसलों की बुआई की जा रही है, और मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि वो डीएपी की जगह एनपीएस 20-20-0-13, जिसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है, जो सरसों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि सल्फर से उसमें सरसों के तेल की मात्रा बढ़ जाती है और लागत भी कम आती है। इसके अलावा सिंगल सुपर फास्फेट का भी प्रयोग करेंगे डीएपी की जगह, जिसमें कैल्शियम की 21% मात्रा पाई जाती है, जो जमीन की संरचना को बेहतर करेंगे। तो मेरा किसान भाइयों से यही सुझाव है, आग्रह है कि वो इसमें डीएपी की जगह 20-20-0-13 या सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें।
0: जी। और किसान भाइयों के लिए डिजिटल फसल सर्वे भी कराया जा रहा है, तो इसमें इससे कैसे वो फायदा ले सकते हैं?
1: डिजिटल क्रॉप सर्वे मतलब ये ऐसी योजना है जिसमें हमारे कर्मचारी, कृषि विभाग के कर्मचारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी और पंचायत विभाग के कर्मचारी एक खेतों पे जाकर के मोबाइल के जियो फेंसिंग के तहत से फोटो लेते हैं, और उससे पूरे जनपद का ये आंकड़ा पता चल जाता है कि इस जनपद में किस फसल का कितना क्षेत्रफल है। तो जब धान की क्रय खरीद का केंद्र होता है तो उससे पता चल जाती है कि हाँ इस जनपद में इतने धान के क्षेत्रफल में खेती की गई है, और उससे उसको
0: तो उस
1: बेहतर
0: हिसाब
1: जो
0: से आप
1: है
0: प्लानिंग करते हो कि हमें इतना खरीदारी करना है
1: करना है।
0: किसानों के द्वारा, और इसके लिए जैसे हर जनपद के लिए एक है कि एक जिला एक उत्पाद, तो चंदौली जनपद के लिए क्या कोई विशेष उत्पादन कृषि क्षेत्र में?
1: ब्लॉक वार मतलब हम लोगों ने बनाया है कि हर ब्लॉक के लिए जो है एक एक उत्पाद जो है रखा जाए।
0: और जो डिजिटल ये बीज मिनी बीज किट उपलब्ध कराया जा रहा है इस समय जो सीजन चल रहा है मटर और चने के लिए, इससे कैसे जुड़ सकते हैं?
1: जैसे मिनी किट बीज ये होता है जो उन्नतशील प्रजातियां होती हैं, ये किसानों को जो है निःशुल्क बीज के रूप में दिया जाता है कि वो अपने खेतों पे जो है इसको उगा करके आसपास के किसानों को भी बेहतर तरीके से दिखा सके कि ये उन्नतशील प्रजाति, ताकि भविष्य में उसका उपयोग उस वैरायटी का अन्य किसान भी कर सकें। तो इसमें हमारे चंदौली में 1,000 पैकेट जो है 2-2 केजी का था, जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है, आया था, जो किसानों के मध्य ई लॉटरी के माध्यम से वितरण कराया गया। इसी तरह चना का 125 पैकेट था, मटर का था, मसूर का था, तोरिया का 250 पैकेट था, जो किसानों के मध्य निःशुल्क वितरण कराया गया, ताकि किसान इसके उन्नतशील प्रजातियों के बारे में बेहतर तरीके से जान
0: तो
1: सकें।
0: किसान भाइयों, आपके आसपास किसान भाई लोग इसको यूज किए होंगे जो किट है, तो आप लोग भी उनको देखें और फसलों के बारे में जानें। अगर अच्छी उत्पादकता मिलती है तो अगली बार से आप भी जुड़े और नई नई जो वैज्ञानिक हमारे फसलों में खोज कर रहे हैं उसका फायदा उठाएं। और

0: लास्ट में सर हम अपने जानना चाहते हैं कि हमारे जो चंदौली जनपद के किसान हैं या पूर्वांचल ये पूरे बेल्ट, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, खेती में कितना अवसर देखते हैं?
1: मैं सभी किसान भाइयों से ये आग्रह करूंगा कि परंपरागत खेती छोड़ करके हमें दलहनी और तिलहनी फसलों पर भी बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हम लोग पूर्वांचल में गेहूं और चावल दो ही मुख्य फसल है, जबकि हम अभी दलहन और तिलहन पे उतने फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की भी मंशा है कि अब प्रत्येक जनपद में दलहन और तिलहन को बढ़ावा दिया जाए और इसपे भी हम लोग आत्मनिर्भर हो सके। और आप इधर देखे होंगे कि पूर्वांचल में सरसों का रकबा बड़ा तेजी से बढ़ा है
0: जी जी,
1: और अब हम लोगों से यही प्रयास है कि चना मटर मसूर का भी रकबा बढ़े।
0: और जैविक खेती के लिए कुछ आप लोग कर रहे हैं?
1: नमाम गंगे है, PKVY है, इसके अंतर्गत गंगा जी के किनारे 5-7 किलोमीटर के अंदर के दायरे में सिर्फ जैविक खेती की जाती है, वहां पे रासायनिक फर्टिलाइजर या कीटनाशकों का प्रयोग नहीं की जाती है। ऐसा योजना चलाई जा रही है ताकि वहां पे अधिक से अधिक जैविक खेती हो गया और गंगा जी के पानी को या किसी को प्रदूषित होने से बचाया जा सके और जमीन की उर्वरता भी बढ़ाई जा सके।
0: तो आप हमारे स्टूडियो में आए, किसानों को ढेर सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रमेश सर भैया,
3: हाँ दीना भैया,
2: सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं कौन कौन हो?
3: ये
2: पे विनोद कुमार यादव से देखा, दिलीप यादव भैया का बात कही भल एकदम
3: बिल्कुल फरहर जानकारी या पढ़हर जानकारी निश्चित रूप से जो ना बतौना है विनोद कुमार यादव भैया की, आपके जैविक खेती का सरकार भी कैसे अब योजना बना था कि अधिक से अधिक कुल हो, खास करके गंगा जी के किनारे, ताकि पानी भी शुद्ध रहे और स्वास्थ्य भी शुद्ध रहे। इतना बढ़िया जानकारी झूरे झूर नहीं आवा मन मनसान हो
2: समझे थे क्या कह चाहते
3: प्रेमलाल भारती भैया के साथ आवा सुनल जा किसानी गीत
2: सुनवाए भैया।

0: निना भैया,
1: भैया देखा
0: धन
1: ही।
0: धन भारत का हमें किसान एमन कौनो दुराय नहीं बा, लेकिन चरितार्थ कहना अपन गीत गौनई के माध्यम से प्रेमलाल भारती भैया का कहल चाहत हो।
1: देखा भैया, गीत गो नहीं हो जाला ना तो हमारे
0: हाँ, मन
1: किसान
0: फरहर हो जा
1: मन
0: रहा
1: एकदम फरहर हो जाले
0: तो काल
1: किसान।
0: का होई यो सुने का मन कराला।
1: देखा भैया, कल 6:05 पे खेती की बातें में सामयिक कृषि कार्य पे जानकारी दिए दिनेश कुमार सिंह भैया।
0: कल संध्या के यही कार्यक्रम में जेकर नाम है कृषि जगत सबकर पसंदीदा कार्यक्रम, शाम 6:30 बजे काल हमन बात कही हमन जानल जाए पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के बारे में जानकारी दी है डॉक्टर राम अवतार सिंह यादव भैया। बात बत कही कहले हम अपन सतीश कुमार यादव भैया। घड़ी का सूर्य इशारा करा कहा था कि चला चले के
1: कई झोला टांगा।
0: तो टांगल जा, सब पढ़े सब बढ़े, लड़ा मत लड़ावा मत, देश के आगे बढ़ावा भैया। पंचो राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे सिकंदर भारती की ये रचना। कुमार सानू और आशा भोसले की आवाजें थीं। बेखुदी फिल्म का गाना था। इस गीत से पहले आप सुन रहे थे छोटा सा घर फिल्म का गाना कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। गीतकार थे इंदिवर और संगीतकार थे राजेश रोशन। कार्यक्रम का आखिरी गाना आपके रेडियो सेट पर। आपकी सेवा में है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। शाम की 7:10:04। ये कार्यक्रम का आखिरी गाना फिल्म का नाम दिलबर। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आइए सुनते हैं।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में दिलवर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना अनुसार काशी प्रसाद गुप्त पुत्र स्वर्गीय छेदीलाल गुप्त निवासी ग्राम गुदरी इमामबाड़ा थाना कोतवाली जिला मिर्जापुर कहीं लापता हो गए हैं। काशी प्रसाद के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 40 वर्ष, ऊंचाई 5 फीट 5 इंच, इकहरा बदन और रंग सांवला है। वह खुशबू पुत्री स्वर्गीय रमाशंकर निवासनी ग्राम बड़ी बरैनी थाना कछुआ जिला मिर्जापुर कहीं गुम हो गई हैं। खुशबू के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 20 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग गोरा और चेहरा गोल है। इन दोनों खोए हुए व्यक्ति काशी प्रसाद गुप्त और खुशबू के बारे में यदि कोई जानकारी हो तो इस पते पर दें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर या अपने निकटतम थाने को भी सूचित कर सकते हैं। पता एक बार पुनः सुन लें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला मिर्जापुर या अपने निकटतम थाने को भी सूचित कर सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 7:18 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप लखनऊ केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतमबुद्ध नगर में दो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला। 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री एमएसएमई दिवस पर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो में सम्मिलित हुए, कहा विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में एमएसएमई उद्यमों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दो दिवसीय दौरे पर पहुंची अयोध्या। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन। अवध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौतमबुद्ध नगर में 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सेक्टर 96 में बने नोएडा प्राधिकरण के नए मुख्य प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में दो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला भी रखी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय रेल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में आज प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब बन रहा है। ये निवेश रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।
1: सेमीकंडक्टर यानी यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का केंद्र बिंदु या क्षेत्र बने और आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए जो चीज दुनिया से हम आयात करते हैं वह हमारे यहां बने।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीसीबी सर्किट के बारे में विस्तार से समझाते हुए कहा कि पहले इसे भारत आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी जिन्होंने एक ऐसा विजन दिया कि प्रधानमंत्री जी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को आज उत्तर प्रदेश में जेवर में ले आए, तो अब सेमीकंडक्टर के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा सेंटर जेवर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। लखनऊ से जेवर तक का सफर 1 घंटा 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में अपने संबोधन में भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स

0: और सेमीकंडक्टर उद्योग की इकाइयां लगने से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे। एमएसएमई दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों और उद्यमियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आज नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ग्रेट ट्रेड शो के चौथे संस्करण के कर्टन रेजर सेरेमनी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिसमें 3 करोड़ से अधिक लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकाई मजबूत होगी।
1: कोई भी बड़ा उद्योग का आधार बनता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। बड़ा उद्यम तभी सफल हो सकता है जब हमारे पास आधार होगी, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। विकसित भारत की संकल्पना तब पूरी होगी जब खुशहाल किसान भी होगा, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें।
0: कार्यक्रम को प्रदेश औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी संबोधित किए कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मूल्यों आदर्शों की राजनीति अपनाकर शून्य से शिखर तक की यात्रा की है। सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की यात्रा सत्ता प्राप्त की यात्रा नहीं है, बल्कि सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और समन्वय की बेहतरीन यात्रा है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा आज सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास का प्रतीक बनी है।
2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रखकर के बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य, आदर्श, ये संस्कार समाहित हो सके, इसको ध्यान में रखकर के इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंची। राज्यपाल ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत अयोध्या धाम क्षेत्र में ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे के निकट नवनिर्मित 2 आंगनबाड़ी केंद्रों और स्मार्ट क्लास रूम का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने इस दौरान बच्चों के साथ संवाद भी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बच्चों के समुचित शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रारंभिक अवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संतुलित पोषण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चे की प्रथम शिक्षिका उसकी मां होती है, उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र व्यक्तित्व निर्माण की महत्वपूर्ण आधारशिला बनते हैं। इसके बाद उन्होंने डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पहुंचकर विकास कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कल से होगी। प्रदेश के सभी जनपदों में कल बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी क्रम में आज उन्नाव में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जिला अस्पताल से जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से अभिभावकों से आग्रह किया गया कि वे अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। अमरोहा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रमाकांत सागर ने 4 प्रचार वाहनों को रवाना किया। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी के सघन चेकिंग जारी हैं। इसी क्रम में अलीगढ़ नगर निगम ने पूरे शहर में 100 नए फायर हाइड्रेट प्वाइंट्स लगाने का फैसला

0: फैसला लिया है। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रोजेक्ट के तहत सभी हाइड्रेट प्वाइंट्स नगर निगम की मुख्य पानी की सप्लाई लाइन से जोड़े जाएंगे। जरूरत पड़ने पर दमकल के वाहन इनसे पाइप जोड़कर सीधे पानी ले सकेंगे, जिससे रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कल प्रयागराज में ऊर्जा विभाग, नगर विकास विभाग एवं विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़े सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने बिजली से संबंधित किसी भी समस्या अथवा शिकायत का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा है कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाकर उन्हें तय समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कर लिया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि वर्षा काल को देखते हुए सभी नालों के समयबद्ध सफाई कर जल भराव की समस्या से नागरिकों को राहत दिलाई जाए। जौनपुर के प्रगतिशील किसान सूर्यभान यादव को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी डॉ सीमा सिंह राणा ने बताया कि सूर्यभान यादव ने 1 हेक्टेयर भूमि में आम की 140 प्रजातियों का मॉडल बाग विकसित किया है। इस बाग से प्रतिवर्ष 200 क्विंटल आम का उत्पादन होता है, जिससे उन्हें करीब 4 लाख रुपए का वार्षिक लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 3, 4 और 5 जुलाई में आयोजित होने वाले आम महोत्सव में श्री यादव को यह सम्मान दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतमबुद्ध नगर में 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला। 2,478 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री एमएसएमई दिवस पर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो में हुए सम्मिलित, कहा विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में एमएसएमई उद्यमों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची अयोध्या। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन। अवध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
2: हम आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्वरबेला कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हरिराम मिश्रा से काव्य पाठ।
3: मैं हरिराम मिश्र आकाश पिता पर लिखे अपनी एक रचना आपके सामने रख रहा हूँ। आज फिर सारी अकड़ ढीली हो गई, आज फिर सारी अकड़ ढीली हो गई, स्वयं पे जो रखे थे पकड़ ढीली हो गई। जब तुमने मुझे 4 बिस्किट दिए, वो जो रखे थे तुमने तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें खाली पेट नहीं रहना था, क्योंकि तुम्हें खाली पेट नहीं रहना था। मैंने सुना था यह तुम्हारे डॉक्टर का कहना था, पर मेरी खराब तबीयत और मेरी भूख को तुमने जान लिया, स्वयं को बिल्कुल ही स्वस्थ मान लिया। अपने बड़े होने का अभिमान आज फिर उतरने लगा, मैं अपने होठों को आज फिर कुतरने लगा। रोका है मैंने उद्वेलित आंसुओं को बाहर आने में, दूर नहीं हो तुम यह स्वयं को समझाने में। हाँ, तुम फिर आज मेरे स्वप्न में आए, बिस्कुट देकर तुमने पिता होने के अर्थ समझाए। तुमने समझाया कि पिता मर कर भी मरता नहीं, दिल उसका अपनी संतान से कभी भरता नहीं, नहीं ढूंढता है वह अपने पुत्र में समर्पण, नहीं सोचता कि उसे देगा वो पितृपक्ष में तर्पण। पिता पुत्र में अपने बस अच्छे संस्कार भरता है, उजाले जीवन में भरता है, नहीं अंधकार भरता है। वह दूर रहकर भी उसके साथ होता है, बच्चे मुश्किल में हों तो उसका मन रोता है, पास किसी न किसी रूप में वह आता है, हर मुश्किल अपने बच्चे की वह सुलझाता है। मुझे पता है तुम

आज से हो और रहोगे, तुम भले ही अपने मुंह से यह नहीं कहोगे, लेकिन मैं जानता हूँ, पूरे मन से यह मानता हूँ, तुम्हारे आशीर्वाद से है मेरी ख्याति, मेरी प्रसिद्धि, तुम्हारे ही कारण मेरे यश कीर्ति में है निरंतर वृद्धि। मुझे लिखनी थी कविता एक पिता पर, लिखना था मुझे उसकी अस्मिता पर, स्वप्न के बहाने तुमने मेरी समस्या हल कर दी, तुम्हारे चार बिस्किट ने मेरी आंखें सजल कर दी। आज बच्चे अपने पिता को वृद्धाश्रम की ओर भेज रहे हैं, इस पर एक गीत गजल मैं रख रहा हूँ आपके सामने।

था कब तुम्हें जिंदगी में आना था, जिस पे झूमे थे बज्म कल सारे, जिस पे झूमे थे बज्म कल सारे, जिस पे झूमे थे बज्म।

का फसाना था, तुमसे करते भी तो गिला कैसे, तुमसे करते भी तो गिला कैसे, तुमसे करते भी तो गिला कैसे।

से पुराना था जो तुम्हारे सहारे बैठे हैं, जो तुम्हारे सहारे बैठे हैं, जो तुम्हारे सहारे बैठे हैं, कभी उनका भी एक जमाना था, कभी उनका भी एक जमाना था। ख्वाब आँखों ने उनका फिर देखा, ख्वाब आँखों ने उनका फिर देखा, ख्वाब आँखों ने उनका फिर देखा, दिल ने चाहा जिसे

वो सजर कट क्या गिरा देखो, वो सजर कट क्या गिरा देखो।

था वो जो हारा था उम्र भर तुमसे।

है उसका मकसद तुम्हें जिताना था, उसका मकसद तुम्हें जिताना था, कुछ तो आकाश का भरम रखते, कुछ तो आकाश का भरम रखते, कुछ तो आकाश का भरम रखते, उसको दिल में तुम्हें बसाना था, उसको दिल में तुम्हें बसाना था। और अब बात प्रेम की करते हैं, तो प्रेम और आस्था दोनों में ही समर्पण बहुत जरूरी होता है। रख रहा हूं आपके सामने एक समर्पण गीत।

तक है तुमसे ही रोशन, दिले कहकशां तक मैं क्यों अब ये पूछूं चलोगे कहाँ तक। किसे मैं ये कहता जहां में है मेरा, किसे मैं ये कहता जहां में है मेरा। तुम ही से मिला है मुझे।

आकाश जाने जमी भी है जाने ये आकाश जाने नहीं तुम हो मेरे।

स्वरबेला कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हरे राम मिश्रा से काव्य पाठ। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 7:45 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग।

रवि के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी की रचना। ये आवाज थी महेंद्र कपूर की और फिल्म थी गुमराह। दूसरा आदमी, आइए इस फिल्म का गीत सुने, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें।

0: बहुत प्यारा संगीत आप सुन रहे थे दूसरा आदमी फिल्म से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी, गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे राजेश रोशन। आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम का आखिरी गाना आपके रेडियो सेट पर, बहुत प्यारा संगीत जिसे हमने लिया है फिल्म मन की आंखें से। मोहम्मद रफी की आवाज में गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आकाशवाणी वाराणसी आपके साथ। ये आवाज मोहम्मद रफी की।
1: दिल कहे रुक जा रे रुक जा।

इस गीत के साथ ही रसरंग का सफर बस यहीं तक। मन की आंखें फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुने आरजू बानो की आवाज में ये गजल।

आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। अभी आपने सुना आरज़ू बानो की आवाज़ में आरज़ू बानो की ये गज़ल। आइए कार्यक्रम के आखिर में सुने अशहर भागलपुरी का ये कलाम, आवाज़ आरज़ू बानो की।

का शहर भागलपुरी का ये कलाम आप सुन रहे थे आरज़ू बानो की आवाज़ में। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। ढलती रात के साए में आप हैं आकाशवाणी वाराणसी के संग, तो ही रहिए हमारे संग और सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी।

तो आइए सुने आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में लावारिस फिल्म का ये गाना। गीतकार अनजान और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

लावारिस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार थे अनजान और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। कार्यक्रम का अगला गाना आपके रेडियो सेट पर। आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे अनजान की रचना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गाना था। आइए एक बार फिर सुने कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में अनजान की रचना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें। फिल्म का नाम डॉन। रात्रि के 8:26 और 59 सेकेंड्स।

जानी दुश्मन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। गीतकार थे वर्मा मलिक और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मोहम्मद रफी की आवाज, आशा फिल्म का गाना।

रात्रि के 8:39 और 21 सेकंड्स कार्यक्रम का आखिरी गाना आपके रेडियो सेट पर। दिल तुझको दिया, ये है फिल्म का नाम। ये आवाज लता मंगेशकर की।

0: लता मंगेशकर की आवाज थी फिल्म थी दिल तुझको दिया। रसमाधुरी का सफर बस यही तक। आज इस कार्यक्रम को हमने सजाया इन फिल्मों के गीतों से। लावारिस, मुकद्दर का सिकंदर, डॉन, जानी दुश्मन, आशा, दिल तुझको दिया। तो हर रोज रात 8:15 पर सुनिए कार्यक्रम रसमाधुरी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से सुनते हैं समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11:00 आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार

0: स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पेगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पेगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्रों से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी

0: पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और जेसाई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और ABC मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर

0: See Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 50वें यौम आजादी की तकरीबात में मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत के लिए वहां पहुंच गए हैं। भारत ने सेशेल्स की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए उसे तेज रफ्तार गश्ती जहाज, एम्बुलेंसेस, दीगर कामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां और लेजर रेडियल कश्तियां तोहफे में दी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अतियात में खुर्द बुर्द से मुतालिक मामले के बाद अखलाकी बुनियाद पर इस्तीफे दे दिए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों के बाद जंगबंदी दबाव का शिकार है। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल मुकाबलों में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 3 रोजा दौरे पर आज दोपहर विक्टोरिया पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जना मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशेल्स के सदर की जानिब से गर्मजोशी से खैर मकदम किए जाने की सताइश की। वजीर आजम ने कहा कि सेशेल्स बहरे हिंद में एक अहम बहरी शराकत दार और एक करीबी दोस्त है। जना मोदी ने कहा कि वो एक सूदमंद दौरे के मुंतजर हैं जिसका मकसद भारत सेशेल्स देरीना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना और दोनों मुल्कों के अवाम के मफाद में इश्तराक में इजाफा करना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी बोटानिकल गार्डन भी गए और वहाँ पौधा लगाने की तकरीब में शामिल हुए। तकरीब के दौरान जनाब मोदी ने सेशेल्स के सदर की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। वजारत खारजा के मुताबिक पौधा लगाने की यह तकरीब एक पेड़ माँ के नाम पहल का एक हिस्सा थी और इससे पायदारी और माहौलियात की खातिर भारत सेशेल्स के दरमियान मुश्तरक अज़्म की अक्कासी होती है। वो बोटानिकल गार्डन में जॉइंट टॉर्टोइज एनक्लोजर भी गए। इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वहां आबाद भारतीय बिरादरी से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय बिरादरी ने दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा एक मुतहरिक पुल का काम किया है, इससे अवाम के दरमियान रबते मुस्तहकम हुए हैं। खैर मगालिया के खसूसी कदम के तहत वजीर आजम मोदी ने सेशल्स के सदर को भारत में तैयार करदा गश्त के लिए तेज रफ्तार बहरी जहाज सुपुर्द किया। उन्होंने उन्हें 6 एम्बुलेंस, 10 यूटिलिटी गाड़ियां और 5 लेजर रेडियल कश्तियां भी सौंपी जो सेशल्स की तरक्की और सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाएंगी। वजीर आजम मोदी सेशल्स के तारीखी यौम आजादी की तकरीबात में मेहमान एजाजी होंगे। वो सेशल्स की कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम हैं। दिल्ली से अक्षत की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: भारतीय बहरिया का अंदरून मुल्क तैयार करदा निगरानी से मुतालिक बहरी जहाज INS इक्षक जनूबी मगरबी बहरे हिंद खित्ते में इसकी तैनाती के हिस्से के तौर पर सेशेल्स में विक्टोरिया बंदरगाह पहुंच गया है। वजारत दिफा ने कहा है कि सेशेल्स के 50वें कौमी दिन के मौके पर यह बहरी जहाज वहां पहुंचा है। इसने मजीद कहा है कि इससे भारत और सेशेल्स के दरमियान बढ़ती बहरी शराकतदारी और देरीना दोस्ती का इजहार होता है। इस दौरान INS इक्षक कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करेगा और सेशेल्स की दिफाई अफवाज के साथ सिलसिलेवार पेशावराना रबते कायम करेगा जिनका मकसद बहरी इश्तराक और एक दूसरे के तरीक़ेकार से वाकफियत में इजाफा करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 135वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, وزیراعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا. ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام

0: शाम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गांधीनगर में नायब वजीर आला हर्ष सिंघवी की मौजूदगी में जिला तरक्याती तालमेल और निगरानी कमेटी की सदारत की। वजीर मौसूफ ने मरकज की कई अहम स्कीमों पर अमल आवरी का जायजा लिया। किसानों को माली एतबार से बाख्तियार बनाने की गरज से जनाब शाह ने एक तेज रफ्तार सर्वे कराए जाने की बात कही ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जमीन रखने वाले हर किसान को कम अज कम दो मवेशी मुहैया कराए जाए। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि दुनिया भर में किसी भी मईशत की मजबूती बहुत छोटे छोटे और मुतवस्सित कारोबारी इदारों के इसके शोबे के इश्तराक पर मबनी होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई के दिन 2026 उद्यमी भारत की एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में एमएसएमई का शोबा पहले सिलसिले के एंटरप्रेन्योर्स के हौसले और कारोबारी जज्बे की अक्कासी करता है। नायब सदर ने कहा कि यह शोबा मुसलसल आला मियारात को बरकरार रखते हुए मुल्क की कुल बरामदात में तकरीबन 50% का तआवुन कर रहा है। जनाब राधाकृष्णन ने मजीद कहा कि एमएसएमई का शोबा 2047 तक विकसित भारत की जानिब मुल्क के सफर में एक मजबूत सुतून की हैसियत रखता है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इज्तिमा से खिताब करते हुए एमएसएमई के मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने कहा कि मरकजी बजट से एमएसएमई के शोबे के लिए हुकूमत की तरजीह और अज्म का इजहार होता है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत एक ऐसे इको निजाम की तश्कील के लिए अहदबंद है जहां हर कारोबारी को इख्तरा तरक्की और मुल्क की तामीर में तआवुन करने के बराबर के मौके मयसर हों।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: वज़ीरे आज़म के म्यूजियम और लाइब्रेरी पीएमएमएल में आज आंजहानी वज़ीरे आज़म पीवी नरसिम्हा राव के 105वें यौम पैदाइश के मौके पर उनकी हयात और विरासत के तई वक्फ एक नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश का इफ्तिताह पीएमएमएल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदरनशीं नृपेंद्र मिश्रा ने किया और प्रधानमंत्री संग्रहालय में लगी इस नुमाइश को देखने वालों के लिए खोल दिया। इस नुमाइश में ऐसी नायाब तस्वीर, सरकारी दस्तावेजात, तकारीर, खतों मुरासले और आर्काइव से मुतालिक साजो सामान रखा गया है जिससे अवामी जिंदगी में नरसिम्हा राव के काबिल कद्र सफर का इल्म होता है। वजारत दिफा ने आज कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ऐसी पोस्ट्स गर्दिश कर रही हैं जिनकी रूह से वजीर दिफा राजनाथ सिंह के पिछले बरस 28 जुलाई को पार्लियामेंट के ऐवान में दिए गए खिताब की गलत तर्जुमानी की जा रही है। वजारत ने कहा है कि इन पोस्ट्स में उनकी तकरीर के कुछ हिस्सों को अलग करके इस तरह दिखाया जा रहा है जैसे ये झूठा गुमान गुजरता है कि जनाब सिंह ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भारतीय फौजी की जान तलफ नहीं हुई है। वजीर दिफा के बयान के तनाजुर की वजाहत पेश करते हुए वजारत ने कहा है कि जनाब सिंह के खिताब के वक्त मीडिया के कुछ हिस्सों और सोशल मीडिया पर एक मखसूस मुस्तकिल और पुर असर बयानिया उभरा जिसमें दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय पायलट्स की जानें तल्फ हुई हैं। वजारत ने कहा है कि ये बयान कतई गलत था, इसके बावजूद इसे बहुत शिद्दत के साथ तूल दिया जा रहा था जिसमें वाजे तौर पर ऑपरेशन की कामयाबी को कम करने और अवामी जज्बात को मजरूह करने की नीयत कार फरमा थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बाकायदा इस बात का एतराफ किया है कि जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। इस सिलसिले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खजांची ने आज एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि अगली मीटिंग में इन इस्तीफों पर गौर खोज किया जाएगा इसमें इस बात की भी यकीन दहानी कराई गई है कि अकीदतमंदों की जानिब से दान में दी गई चांदी की ईंटें और जेवरात वगैरह का हिसाब किताब लिया जाएगा ट्रस्ट ने अपने खत में कहा है कि अयोध्या राम मंदिर में पेश

मिर्ज़ा गालिब की ये गज़ल आप सुन रहे थे पलाश चंद्र विश्वास की आवाज़ में। बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में आइए सुनी फैज़ अनवर की ये गज़ल।

गुलाम अली की आवाज़ में अनवर मिर्ज़ापुरी की ये गज़ल आप सुन रहे थे। आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंजुमन। कतल शिपाही की ये गज़ल आवाज़ जगजीत सिंह की।

गैर फिल्मी गीत एवं गजलों पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 10 बजने वाले

बातचीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की, इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य

0: आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद सावरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनिशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur. He was initiated by Sri Dulal Roy. He took Talim from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santur from Pandit Torun Bhattacharya and Padmasri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्री से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला। विलंबित रचना झपताल और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय बिगिंस हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री। ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झपताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: यह था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was राग रागेश्री performed by प्रभात मुखोपाध्याय। He concludes his recital with a पहाड़ी धुन।

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by मुस्तफा हुसैन। With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: जी आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रेडियो एक प्रभावशाली माध्यम है, रेडियो का प्रयोग करें। रेडियो पर विज्ञापन सर्वोत्तम और सस्ता है, रेडियो पर विज्ञापन देकर अपनी आय बढ़ाएं। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्र के 11 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका

परम जोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमीनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की।

0: यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमीनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a